मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

0: उत्तर प्रदेश आज वैश्विक निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।
1: इसी का सुखद परिणाम है उत्तर प्रदेश और जापान की साझेदारी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जापान यात्रा से ये संबंध और सुदृढ़ हुए।
0: यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिजिटल इंफ्रा और पर्यटन के क्षेत्र में खुलेंगे निवेश के नए द्वार। साथ ही हजारों रोजगार का मिलेगा सशक्त आधार। यीड़ा में 500 एकड़ की जापानी सिटी से यूपी जापान औद्योगिक साझेदारी को मिलेगी नई ऊंचाई।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
1: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
0: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
1: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
0: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।

0: मैं चुप होकर भी हर बात हूँ, मैं दिन होकर भी अंधे।
1: अब समाचार विस्तार से। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई और 133 भारतीय नागरिकों सहित 750 से अधिक लोग लापता है। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया, महत्वपूर्ण पुलों को बहा ली गई और कई पनबिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद को बताया कि तिब्बत क्षेत्र में सुबह स्थानीय समय के अनुसार 8:37 पर आए भूकंप के 3 मिनट बाद भीषण बाढ़ शुरू हो गई। माना जा रहा है कि भूकंप के झटकों के कारण ग्लेशियर फट जाने से यह आपदा आई। नेपाल के राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि नेपाल तिब्बत सीमा पर हिंदी नदी में भूस्खलन और जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ रसुवा जिले के तिमोरे शहर में भोटे कोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में प्रवेश कर गई। इसके बाद बाढ़ ने नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहू और नवलपरासी पूर्वी जैसे अन्य जिलों को चपेट में ले लिया और बाढ़ का पानी राजधानी काठमांडू से लगभग 200 किलोमीटर तक फैल गया। चीन के सरकारी चैनल ने बताया कि चीन की सीमा पर 3 लोगों की मौत हो गई है और 265 लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इनमें से 30 लोगों का काठमांडू के त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल में इलाज चल रहा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। भारत ने मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री के साथ साथ आवश्यक दवाओं की 10 टन सामग्री नेपाल को भेजती है, जिसमें अस्थायी आश्रय, कंबल, स्वच्छता किट और सौर लैंप शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इस आपदा में नेपाल और उसके लोगों के साथ है। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है 977-98-51-31-68-07 और 977-97-09-10-7500। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने लापता लोगों की तलाश और बचाव के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। पेचिंग में भारतीय दूतावास ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 00-86-18-51-42-84-905। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के 50 भारतीय तीर्थयात्री भी लापता लोगों में शामिल हैं। अब तक विनाशकारी बाढ़ के बाद कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों से 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। विश्व बैंक ने प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण के लिए नेपाल को आपात वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। वहीं नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार सरकार ने नेपाल में भयावह बाढ़ और गंडक नदी के जलस्तर में संभावित वृद्धि को देखते हुए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली सहित गंडक नदी के किनारे बसे जिलों के लोगों को सतर्क रहने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज में नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। आज सुबह बैराज से करीब 80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जो कल रात दर्ज किए गए 1,50,000 क्यूसेक डिस्चार्ज का लगभग आधा है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। हालांकि एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने निचले इलाकों में रह रहे 5,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। बिहार सरकार ने लोगों से सतर्क रहने, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। सविता पारी का आकाशवाणी समाचार पटना।
1: राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हाई अलर्ट को देखते हुए एक उच्च स्तरीय टीम भी गठित की गई है।
4: हाई लेवल टीम गठन कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी डीजीपी इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और तुरंत मैं भी इसको बैठक कर रहा हूं। जरूरत पड़ा तो मैं स्वयं भी वाल्मीकि नगर जाऊंगा।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन

0: नंबर 1070 शुरू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित परिवार इस हेल्पलाइन के माध्यम से तुरंत जानकारी साझा कर सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार अगर राज्य का कोई भी नागरिक नेपाल में फंसा है या उसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत है तो उनके परिवार वाले तुरंत 1070 पर संपर्क कर सकते हैं। राज्य सरकार ने नागरिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने और उन्हें तुरंत मदद पहुंचाने के लिए दूतावास स्तर पर संपर्क शुरू कर दिया है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों महाराजगंज और कुशीनगर में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। गंडक और नारायणी नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअल माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले के 2 कॉलेजों में युवाओं की भागीदारी के साथ आयोजित किया जाएगा।
2: यह संवाद युवाओं को देश की खेल संबंधी महत्वाकांक्षाओं से जुड़ने का सीधा माध्यम प्रदान करेगा, साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि उनके विचार और दृष्टिकोण भारत के युवा और खेल पारिस्थितिकी तंत्र पर चल रही चर्चा का हिस्सा बने। इसकी प्रमुख विशेषता युवाओं और अग्रणी भारतीय एथलीटों और पदक विजेताओं के बीच सीधा संवाद है। कार्यक्रम का एक केंद्रीय पहलू युवा संवाद होगा। इसमें युवा प्रतिभागियों को अपने विचार, दृष्टिकोण और आकांक्षाओं को व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यह संवाद 5 विषयों पर आधारित होगा, जिनमें खेल, ओलंपिक आकांक्षाएं, युवा नेतृत्व, विकसित भारत और नशा मुक्त युवा शामिल हैं। खेलो इंडिया संवाद का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, अनुशासित और खेल प्रिय राष्ट्र निर्माण के दृष्टिकोण के अनुरूप किया जा रहा है। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया है कि प्याज को 35 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि आगामी महीनों में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है, क्योंकि 2025-26 के लिए प्याज का अनुमानित उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। मंत्रालय ने बताया कि उत्पादन की अनुकूल संभावना को देखते हुए सरकार ने 2026-27 के दौरान मूल्य स्थिरीकरण कोष बफर के लिए रबी प्याज की 2 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। खरीद प्रक्रिया 15 मई से शुरू हुई और बफर के लिए लगभग 1,21,000 मीट्रिक टन प्याज की खरीद की जा चुकी है। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस नासिक से रवाना हो चुकी है। आनंद और सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: अमरीकी प्रशासन ने दुनिया भर के सभी अप्रवासी वीजा आवेदनों पर रोक लगा दी है। ये कदम अमरीकी विदेश विभाग द्वारा उन आवेदकों पर प्रतिबंध कड़ा करने और उनकी पहुंच सीमित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो योग्य अमरीकियों के लिए आरक्षित सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने 18 अरब अमरीकी डॉलर का भुगतान करने और अपने फेसबुक तथा इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर बच्चों की सुरक्षा के लिए और भी कड़े उपाय करने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
4: अदालत की मंजूरी मिलने पर यह समझौता मेटा के खिलाफ राज्यों की ओर से दायर मुकदमों को रोक देगा। मेटा ने कहा है कि किशोरों को अपने प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और उपयोगी अनुभव प्रदान करना कंपनी के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटा ने प्रतिद्वंदी टिकटॉक और यूट्यूब से भी इसी तरह के सुरक्षा उपाय अपनाने का आग्रह किया। यह समझौता कैलिफोर्निया, कोलोराडो, केंटकी और न्यू जर्सी से जुड़े एक अदालती मामले का निपटारा करेगा, जो 2023 में मेटा पर मुकदमा दर्ज करने वाले 29 राज्यों में शामिल थे। मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि मेटा ने बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म की लत लगाने वाले फीचर्स जानबूझकर डिजाइन किए और इसके बारे में लोगों से जानकारी छिपाई, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य के विकार पैदा हुए। मामले में यह भी आरोप लगाया गया कि मेटा ने माता पिता की सहमति के बिना 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डेटा नियमित रूप से एकत्रित करके संघीय कानूनों का उल्लंघन किया। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को पहली पारी में कम स्कोर पर ऑल आउट करके और फॉलो ऑन देकर दूसरे और अंतिम टेस्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। कल चौथे दिन खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने 6 विकेट पर 229 रन बनाए थे। श्रीलंका के पासेंदु सूर्या बंदारा ने 92 रन बनाए। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद प्रियंका। नेपाल में जल प्रलय से मची तबाही को आज जनसत्ता और हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, नेपाल में केदारनाथ जैसी त्रासदी, ग्लेशियर से 2000 फीट का टुकड़ा गिरने से झील बनी, टूटते ही सैलाब। अमर उजाला की सुर्खी है, दो नए सैन्य संपर्क बनाएंगे भारत और चीन। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग की भारत यात्रा से पहले विशेष प्रतिनिधियों के बीच दो हॉटलाइन पर बनी सहमति, 8 बिंदुओं से सुलझाएंगे सीमा विवाद। दहेज मामलों में अब तारीख पर तारीख नहीं। नवभारत टाइम्स ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज के मामले प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए। सरकार की सख्ती के बाद गिरने लगे चीनी के भाव। दैनिक जागरण ने लिखा है, सप्ताह भर में चीनी के मूल्य में 12 से 15 रुपए की कमी, कुछ दिनों में और गिरावट का अनुमान। दैनिक भास्कर की ये खबर ध्यान खींचती है, फोर्ब्स एशिया 100 टू वॉच सूची में सबसे ज्यादा 19 स्टार्टअप के साथ भारत शीर्ष पर। स्वदेशी पावर चिप से लेकर सीधे कैंसर सेल्स तक दवा पहुंचाने के इनोवेशन कर रही ये कंपनियां। राजस्थान पत्रिका ने ध्वनि प्रदूषण शीर्षक से लिखा है, ट्रैफिक की कर्कश आवाज तले दबी पक्षियों की मीठी चहचहाट, इंसानों को अब पूरा नहीं मिल पा रहा तनाव मिटाने वाला नेचुरल टॉनिक।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल में भीषण बाढ़ से करीब 160 लोगों की मौत, 133 भारतीयों सहित 750 से अधिक लोग लापता। नेपाल में बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट, भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करेंगे। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू की। अमेरिका ने विश्व स्तर पर वीजा आवेदनों पर अस्थायी रूप से रोक लगाई। सोशल मीडिया कंपनी मेटा अपने प्लेटफॉर्मों पर बच्चों को नुकसान पहुंचाने के दावों के निपटारे के लिए 18 अरब डॉलर तक का भुगतान करेगी। और क्रिकेट में भारतीय टीम कोलंबो में श्रीलंका के साथ टेस्ट श्रृंखला जीतने की ओर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग,
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
5: कहा मेरी कसम?
4: मिस कर दिया तो रीलोड।
6: चाय चाय चाय
7: बिंदास मॉर्निंग।
4: सुनिए बिंदास मॉर्निंग RJ आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

सुप्रभात, नमस्कारम, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? आई होप सब अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और सब बढ़िया होंगे। और आज की सुबह भी बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो आज का मौसम बहुत अच्छा है, इतना अच्छा मौसम है कि सुबह सुबह जैसे मैं सोकर उठा देखोगे झमाझम बारिश हो चुकी थी। मतलब मौसम जब ऐसा हो जाता है ना, और सुबह सुबह आप सोकर उठो और आपको देखने को मिले कि चारों तरफ मतलब ग्रीनरी ग्रीनरी, मौसम इतना औसम, बारिश हो रही है, मतलब मन अलग ही खुश हो जाता है जी। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो है वाइब्स आने लगती है सुबह सुबह। नमस्कारम जी, आप सभी का वेलकम बैक है। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरी आपकी बात हो रही है। मुझे भी नहीं पता कितने दिन के बाद हम मिल रहे हैं, लेकिन अब हम मिल रहे हैं तो अच्छे से मिलना चाहिए ना। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी के बहुत सारे मैसेज आए हैं। लेकिन देखिए, आपने रीना जी के लिए मैसेज कर दी है। फिलहाल आज रीना तो स्टूडियो में नहीं है, लेकिन ये मेरी चेयर जो मॉर्निंग की होती है वो मैं अभी संभालने आ गया हूँ। ठीक है, अभी रीना शायद घर गई है छुट्टी पे, क्योंकि भाई रक्षाबंधन भी आने वाला है, इस पे बात करेंगे थोड़ी देर में। लेकिन अभी फिलहाल बात करते हैं आज के एक प्यारे से विचार के बारे में। दोस्तों, कहते हैं जिंदगी में कुछ दिन ना, लाइफ में कुछ टाइम और कुछ पल ऐसे होते हैं जब इंसान बहुत कुछ कहना चाहता है, उसके पास बहुत कुछ कहने को होता है, लेकिन कभी कभी ना समय उसका साथ नहीं देता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसके शब्द थोड़े से कम पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि भैया आपकी सुबह की शुरुआत एक अच्छी हो, बढ़िया हो, एक स्माइल के साथ आपके दिन की शुरुआत हो, एक पॉजिटिविटी के साथ आपके दिन की शुरुआत हो। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं ना, लेकिन जिंदगी को अच्छे से जीना, लाइफ को अच्छे से इंजॉय करना ये किसके हाथ में? हमारे हाथ में है ना। तो बस आज के दिन की शुरुआत कुछ ऐसी कीजिए मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ। बाकी आपकी सुबह को और अच्छा बनाने के लिए मैं स्टूडियो में हूं आपके साथ आनंद। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं आज की सुबह। व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें आप 9837896896 पर। फिलहाल आप क्या कर रहे हैं आज की सुबह? आपके पास कोई अच्छा विचार है तो आप उसको जो है हम तक जरूर पहुंचाइएगा मैसेज के जरिए 9837896896 पर, है ना। हम इंतजार है आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेज का। और फिलहाल एक अच्छे से गाने से करते हैं आज के सफर की शुरुआत। दिन आज कौन सा है आपको पता है ना? अरे बाबा, मुझे तो पता है, आपको भी तो पता होना चाहिए। अच्छा, क्या कह रहे हो आनंद जी? हमें आज दिन तारीख याद नहीं आ रही सुबह सुबह, आप ही बता दो हमें। अच्छा जी, चलिए आपको बता देता हूँ। आज थर्सडे है, बहुत प्यारी सुबह है और आज तारीख है 27 अगस्त। और आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ, अब आपके लिए अच्छा सा गाना। और इस गाने के बाद जब वापस आएंगे तो आपसे और भी ढेर सारी बातचीत करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं इमीडिएटली 9837896896 पर।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है

0: जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।

0: એટલે અરે એટલે એટલે
1: सही बात है भाई। देखो जिंदगी एक सफर है सुहाना, और यहाँ कल क्या हो किसी ने नहीं जाना, किसी को नहीं पता कि अगले पल कौन सी क्या चीज हो जाती है। और ये गाने सुबह सुबह अच्छे इसलिए भी लगते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन देते हैं, और बहुत जरूरी है ऐसे गाने सुन के। अगर अच्छी शुरुआत हो रही है तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे आरजे आनंद को। यह है आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो, बातें होती हैं दिल से दिल तक वाली। और अभी वक्त हुआ है 8:33। आगे बढ़ते हैं, आज दिन गुरुवार का है। ढेर सारे संदेश आपके पहुंचे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एक मैसेज हमारे पास पहुंचा है यहाँ, इन्होंने लिखा है, आनंद जी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, आप कैसे हैं? आपके बिना मॉर्निंग गुड नहीं लगती, और जब आप आते हैं तो मॉर्निंग बिंदास हो जाती है। जी शुक्रिया इतने प्यारी बात के लिए, लेकिन आपने अपना नाम नहीं लिखा है। नंबर की 4 डिजिट है 9927। अगर आप सुन रहे हैं तो अपना नाम जरूर पहुंचाएं। एक संदेश और पहुंचा है हमारे पास, नमस्कार, कैसे हालचाल है? गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए हालचाल तो बहुत बढ़िया है, और इनका नाम सलीम इन्होंने बताया है, और लिखते हैं, सुबह सुबह आनंद जी आपको रेडियो पर सुनकर मन खुश हो गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, गुड मॉर्निंग सर, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपको रेडियो में सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, और गाने आप कसम से बहुत अच्छे बजाते हैं। अरे वाह क्या कहने, बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैसेज और पहुंचा है हमारे पास, ये अनवर नाम इन्होंने पहुंचाया है, और ये मैसेज है हमारे पास मुरादाबाद से ही इन्होंने मैसेज किया है, इन्होंने एरिया का नाम नहीं लिखा है। लिखते हैं, सुबह की शुरुआत अगर आनंद जी पॉजिटिविटी के साथ हो तो पूरा दिन आनंदमय हो जाता है। ये तो मैं भी एग्री करता हूँ साहब, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक संदेश और हमारे पास पहुँच रहा है, गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? ये हमारे पास मैसेज आ रहा है यहाँ पर, आसगिरी बेगमपुर मुजफ्फरपुर बिहार से इनका संदेश आया है, और जरा इनके संदेश को फटाफट चेक कर लेते हैं। इन्होंने अपना नाम बताया है, मुमताज आलम, साथ में राकेश वर्मा जी और चंद्रिका प्रसाद यादव, ये लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ इस कार्यक्रम में। एक और मैसेज गुड मॉर्निंग का पहुंच गया है मेरे पास, आनंद जी आप कैसे हैं? मैं बहुत ही बढ़िया हूं, और सुबह सुबह रेडियो में आपने कमबैक किया है, बहुत अच्छा लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब दोस्तों ऐसे ही अच्छे अच्छे गाने और बातें होती रहेंगी, आप भी अपने विचार और अपनी प्यारी बातें हम तक पहुँचा सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर आप मैसेज कर सकते हैं, और अगर आपके मन में भी कोई विचार है तो उसे अपने मन में मत रखिए, उसे हम तक पहुँचाइए, शायद ये आपके थॉट पहुँच जाए उन तमाम लोगों तक जिनकी सुबह हो जाए और भी अच्छी, है ना? तो आप जरा पहुंचाइए फटाफट से अपने प्यारे प्यारे संदेश 9837896896 पर। और अभी आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गीत आपके लिए प्ले करेंगे, अभी वापस आएंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे आज के दिन के बारे में। आज 27 अगस्त क्यों खास है, कल राखी का पर्व है, इस पे भी बात होगी, आपसे सवाल जवाब होंगे, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। अभी फिलहाल एक अच्छा ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाला है, किशोरदा की आवाज में ये गाना है, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। तो जिंदगी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं हार रहे हैं या कहीं आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो ये गाना सुनते हुए आगे बढ़िए ना कुछ मोटिवेशन तो जरूर मिलेगा। बस अपनी होप को मत छोड़िए, अपने अंदर की जो उम्मीद है ना उसको जिंदा रखिए, क्योंकि उम्मीद से बढ़ के कुछ नहीं है इस दुनिया में। अगर आप ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी कोई खोई हुई चीज वापस मिल सकती है, या कोई भी चीज जो आपको लगता है ये वापस हो सकती है, तो बस उस पर प्रयास करते रहिए, 100% एफर्ट्स कीजिए, डेफिनेटली वो आप तक जरूर पहुंचेगी, है ना? और हम भी प्रेयर करते हैं आप जिस भी सिचुएशन में, जल्द से जल्द उससे बाहर निकले और अपने दिन की शुरुआत आरजे आनंद के साथ ऐसे ही मुस्कुराते हुए करें। फिलहाल ये गाना बहुत कुछ सिखाएगा आज की सुबह, चलिए वॉल्यूम बढ़ाइए और मेरे साथ एंजॉय कीजिए।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती है दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
0: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
4: मॉर्निंग। यार, सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
6: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: चलो भाई, जितना अच्छा गाना था उतनी बढ़िया फिल्म भी थी, नो डाउट, और पहले की फिल्मों की बात ही अलग होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप आनंद के साथ हैं। हाँ जी भैया, आप आनंद को ही सुन रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है और ये लाइव है। अगर आपको ये बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आपको चलो टाइम बताता हूँ, 8:48 8:48 हो रहे हैं और आज 27 अगस्त की सुबह है। देखिए सब कुछ लाइव चल रहा है ना, तो इसीलिए अब आप ये मत बोलो कि कई लोगों को लग रहा है ये रिकॉर्डिंग है, लाइव है, तो भाई ये लाइव चल रहा है, इट्स नॉट रिकॉर्डिंग। मेरी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, मैं जब भी करता हूँ लाइव ही करता हूँ।
1: आप सुन रहे हैं
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
3: अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और आज 27 अगस्त की बात कर लेते हैं। तो 27 अगस्त का दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। बहुत कुछ खास है आज के दिन और क्या कुछ खास रहा है चलिए आपको बता देते हैं फटाफट से। हाँ जी, तो आपको बता दें सन 1604 में आज ही के दिन 27 अगस्त को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में जो है भाई साहब आदि गुरु ग्रंथ साहब की पहली बार उनकी प्रतिष्ठा की गई थी श्रोताओं आज ही के दिन। एंड आपको बताते चलें एक और

फास्टीज जो आज के दिन को और भी स्पेशल बना देती है. आपको बताते चलें, आज ही के दिन मंगल ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब लगभग काफी एक लंबे अरसे के बाद वापस आया था सन 2003 में आज ही के दिन. और इसके अलावा आज के दिन एक और खास चीज हुई जिसने और ज्यादा चीजों को स्पेशल बना दिया, वो क्या है जरूर बताऊंगा. उससे पहले बताता चलूं, सन 1870 में आज के दिन भारत के पहले मजदूर संगठन के रूप में श्रमजीवी संघ की स्थापना हुई थी. श्रोताओं, आज के दिन ऐसे तमाम सारी चीजें हैं जो आज के दिन को कुछ स्पेशल भी बनाती हैं, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो हमारे मन को बहुत परेशान भी कर देती हैं कि ये चीज आज के दिन हुई. और अगर हम उस फ्लैशबैक में जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो चीज हमें थोड़ा सा उस तरफ ले जाती है. लेकिन अभी आज की सुबह हम आपको सिर्फ यहाँ पर हैप्पीनेस देने के लिए आए हैं, आपके साथ ढेर सारी बात करने आए हैं, आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट का डोज देने आए हैं, है ना. तो अभी ये जिम्मेदारी किसकी, मेरी है भाई. आप रेडियो सुन रहे हैं आज की सुबह, और क्या स्पेशल है मैं डेफिनेटली बताऊंगा. आप जहां भी अपनी गाड़ी में बैठ के निकल रहे हैं, सबसे पहले तो ऑल द वे बेस्ट आप जहां भी जा रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स मौसम बहुत ऑसम है. आप मुझे जरूर व्हाट्सएप करके बताइएगा कि बाहर बारिश हो रही है या सिर्फ काले काले बादल छाए हुए हैं, क्योंकि ये मेरे से बेहतर आप बता सकते हैं. क्योंकि यार मेरे स्टूडियो में कोई विंडो नहीं है जहां से मैं देख पाऊं, तो ये चीज तो आप ही मुझे बता सकते हैं आज की मॉर्निंग. आपको बता दें, सोनाली जो है सन 1999 में सोनाली बनर्जी भारत की प्रथम महिला जो है मैरियन इंजीनियर बनी थी. श्रोताओं, आज के दिन. और इसके अलावा आज के दिन और भी तमाम सारी चीजें हैं जो इतिहास को और भी स्पेशल बना देती हैं. फिलहाल बात करते हैं आज के दिन जन्मे कुछ खास कलाकारों की. तो आज के दिन जो है सी भवानी देवी, जो भारत की महिला तलवारबाज है, उनका जन्म हुआ था सन 1993 में 27 अगस्त को आज के दिन. एनवी रमन जो भारत के 48वें मुख्यमंत्री न्यायाधीश रहे, एंड साथ ही साथ इनका जो था वो जन्म आज के दिन हुआ था 1957 में. मुख्य न्यायाधीश रहे, आज के दिन था इनका जन्म हुआ. एंड इसके अलावा और किन की बात कर लेता हूं मैं आज के दिन, एक और एक खास नाम है जिसको याद करना आज के दिन डेफिनेटली बनता है. थोड़ी देर में याद करेंगे. 27 अगस्त इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा जो है मनाया जाता है इस वीक, और इस पे भी हम थोड़ी सी बात जरूर करेंगे. आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके तमाम सारे संदेश पहुंच रहे हैं. बात करेंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है. देखिए रक्षाबंधन है, ऐसे में जो है हमारे मुख्यमंत्री साहब ने भी एक बहुत ही अच्छी सौगात दी है अपने उत्तर प्रदेश को, उस पर तो जरूर चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर में जब लौट कर आएंगे. तो स्पेशली हमारी महिला के लिए, हमारी जो बहनें हैं, जो सिस्टर्स हैं, जो मदर्स हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है शुरू हो चुकी हैं हमारे आसपास. तो डेफिनेटली इस पे हम अभी बात करेंगे आपके साथ जब लौट कर आएंगे. तो लेकिन अभी एक और खूबसूरत गाना है जो आपका इंतजार कर रहा है, मेरे रेडियो सेट से बाहर निकल रहा है आपके लिए. आप कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9837896896 पे. ये वो स्टूडियो का मैजिकल नंबर है जिसके जरिए आप मेरे साथ मुखातिब हो सकते हैं. अगर आप कुछ भी शेयर करना चाहते हैं या कोई अपडेट आप देना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है, जुड़ जाइए हमारे साथ. व्हाट्सएप नंबर आपको पता है, रिपीट कर देता हूं, 9837896896. इस नंबर के जरिए आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं आज की सुबह. चलिए एक प्यारा सा गाना, इसको सुनते हुए आगे बढ़ते हैं और जल्दी से लौट कर आएंगे क्योंकि 9 बजने को है. अब जब 9 बजे जाएंगे तो भाई आपके लिए फिर कुछ और अच्छी चीजें होंगी, है ना. तो आप जुड़े रहिए, फिलहाल ये गाना जो आपके लिए रेडियो सेट पे निकल गया है.

मौसम इतना औसम है उसी को देखते हुए अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज सुबह सुबह ही गाना आपके रेडियो सेट पे निकल गया है, इसको सुनते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी मोटिवेशन वाली बातें फील कर रहे हैं तो बताओ मुझे 9837896896 पे व्हाट्सएप करके। और सुन रहे हैं आप आनंद को, वेरी गुड मॉर्निंग, ये है एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे। ऐसे ही सुनते जाइए, जुड़े रहिए, कीप लिसनिंग एंड सुप्रभात।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: हाँ मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: कोई मिल गया,
5: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
6: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
7: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
8: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
9: स्किन एलर्जी मस से नाखून बालों की समस्या टैटू हटाना कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद 7983153386।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
10: भैया घड़ी उठा के देखो, सुबह के 9:01 हो गए। हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। 9 बज चुके हैं भाई साहब, मैं यही आपको बता रहा हूँ। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम सारे मैसेज आ गए। कल है राखी, राखी का फेस्टिवल जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, आप सभी को पता है। इनफैक्ट ये अब इंडिया में नहीं, बाहर जो लोग रहते हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं, जो अपने इंडियंस इंडिया से बाहर है ऑफकोर्स वो तो मनाते ही है, लेकिन आजकल जो है डिजिटल सोशल मीडिया पे लोग इतने एक्टिव है, इतनी सारी रील्स वीडियोज देख के हर किसी का मन करता है यार ये फेस्टिवल तो हमें भी मनाना चाहिए। और बहुत ही खूबसूरत पर्व है राखी का, और कल रक्षाबंधन है 28 को, फाइनली बहुत ही प्यारा दिन, भाई बहन के लिए तो बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है राखी, और बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं भाई बहन इस फेस्टिवल का। स्पेशली सिस्टर्स को बहुत वेट होता है, उन्हें अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं बहुत टाइम के बाद जो है, अगर कोई सिस्टर बहुत दूर भी है तो अपने घर ब्रदर के लिए आती ही है। तो राखी यू नो दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट सेलिब्रेशन है ना, बहुत ही यूनिक है ये फेस्टिवल भाई बहन का। एंड आप बाजारों में निकलो, पूरी रौनकें जो है बाजारों में आपको देखने को मिलेंगी, सुबह से ही भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है। सिस्टर्स जो है सुबह ही शॉपिंग के लिए निकल गई, बहुत सारी जैसे मैं कल देख रहा था मार्केट में, मैंने देखा खूब अच्छे से जो है धूमधाम से जो है राखी की फेस्टिवल की तैयारियां हो रही हैं बाजारों में। वैसे आपने की है एनी शॉपिंग डेफिनेटली बताना आप, एंड आप मुझे एक और चीज डेफिनेटली बताइएगा इस राखी पे, मैं आपसे एक सवाल डेफिनेटली पूछूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद एक सवाल करूंगा आपसे मजेदार, बहुत मजा आएगा उस पर बातचीत करके। और आगे बढ़ते हैं, फिलहाल इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो है रक्षाबंधन को लेकर बहुत अच्छी चीज जो है शुरू की गई है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से, इस पे मैं अभी आपको उनकी स्पेशल वाइट सुनवाने वाला हूँ यहीं पे। उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया है सभी लेडीज के लिए, ये तो आपको पता है कि 3 दिन जो है फ्री रहने वाली है बस सर्विस, ये आप जानते हैं, आज से सेवाएं शुरू हो रही है 27, 28, 29 तक जो है फ्री, ऑफकोर्स जो है जितनी भी लेडीज है वो ट्रैवल कर सकती हैं अपने उत्तर प्रदेश में, अगर वो अपने घर जाना चाहती हैं राखी पे, अपने भाई को राखी बांधना चाहती हैं तो बिल्कुल वो फ्री में जा सकती हैं और उनको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और ये इस साल ही नहीं, पिछले साल भी ये जो है ही फैसिलिटीज हमारी महिलाओं के लिए कि वो रक्षाबंधन पे अपने भाई को बिल्कुल आराम के साथ राखी बांधने जाए।

जिस दिन रक्षा मतलब 29 की दिन की मैं बात कर रहा हूँ, इस पे अभी हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी अपडेट है जो आपको बताता हूँ, मुरादाबाद से जुड़ी भी कुछ खबरें हैं, अभी बात करेंगे उस पर भी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, अच्छा सा गाना सुनने का समय हो गया है और इस गाने के बाद कुछ अच्छी चीजें और सुनने को मिलेंगी आपको। फिर मैं लौट कर आऊंगा वापस, फिर हम आपसे और ढेर सारी बातचीत करेंगे। अगर आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं कोई अच्छी बात तो बिल्कुल करिए ना, 9837896896 पे। ढेर सारे लोग मेरा हालचाल पूछ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया यार, मेरे हालचाल बहुत ही बढ़िया है एंड ऑफकोर्स आप भी अच्छे होंगे। जितना मिस आपने मुझे किया है मैंने भी आपको उतना ही मिस किया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये आपका प्यार है और हमारा भी प्यार है, जो हम एक दूसरे के प्रति इतना ज्यादा जब हम एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे के लिए इतनी केयर करते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए फिलहाल एक गाना, बातें बहुत सारी हो गई, लौट कर आता हूँ थोड़ी देर में, फिर आपसे और बात करेंगे।

क्या बात है, देखो राधा का ये गाना मतलब सुन के मुझे मजा आ गया, राधा वाला गाना। एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इस गाने को मैंने सुना, जब ये नया नया आया था भाई, क्या क्रेज मजा आया था इस गाने ने, इतना बढ़िया था। जितनी बढ़िया फिल्म थी ना उतना बढ़िया गाना था, और आलिया भट्ट क्या एकदम लग रही थी यार, गजब का गाना। सुबह सुबह आप सुन रहे थे आनंद के साथ, अभी आप सभी का स्वागत करते हैं वंस अगेन, वेलकम बैक। 9:13 का समय हो गया है और ढेर सारे लोग व्हाट्सएप करने लगे हैं, मुझे बड़े सारे मैसेज आ गए हैं। चलिए आपके मैसेज की तरफ मैं रुख करूंगा, थोड़ा सा इधर भी भाई साहब मूव ऑन करना जरूरी है। देखो बहुत सारे पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, ऐसे नहीं होता यार, ऐसे थोड़ी होगा। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बस अच्छे अच्छे से चीजें बताता रहूं, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा अच्छा फील कराओ यार, है ना। तो जो चीज आप पूछ रहे हो उसका आंसर मैं डेफिनेटली अपने इंस्टाग्राम पे देने वाला हूं, सो प्लीज वहां जाके आप मुझे फॉलो कर लो, नहीं किया तो रेडियो वाला आनंद के नाम से मिलता हूं। फटाफट जाओ, यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट, दिस इज माय इंस्टा हैंडल, दिस इज वेरी वेरी इजी यार, फटाफट से चेक इट आउट करो। और अभी आज के लिए चल क्या रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा, मार्केट के अंदर क्या चीजें हो रही है, एकदम से ना तहलका मचा हुआ है यार, बहुत सारी चीजें एक साथ आ गई है, फेस्टिविटी एक साथ आ गई है, ऊपर से मुझे यू नो ये जो चीजें अभी आई है ना इस पे भी हम बात करेंगे। मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ आप नहीं जानते, तो मैं डेफिनेटली आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, कल रक्षाबंधन है, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं राखी कल टुमारो, एंड दिस इज वेरी अमेजिंग। इसी बात पे एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप मुझे मैसेज करके बताओ कि रक्षाबंधन पे अपनी बहनों को हम सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हैं, अपनी सिस्टर को सबसे प्यारा गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं, जो उन्हें पसंद भी आए और उन्हें अच्छा भी लगे और हमें भी अच्छा फील हो, है ना। क्योंकि आपको पता है ना थोड़े से भाई गिफ्ट देने में होते हैं थोड़ा, समझ रहे हो, बट बहनों को चाहिए होता है यार, रक्षाबंधन पे उनका प्राइज उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। आप व्हाट्सएप करके बताना कि कौन सा गिफ्ट अच्छा होता है, क्या लगता है, हो सकता है किसी को हेल्प हो जाए, आपको क्या लगता है रक्षाबंधन पे हम अपनी सिस्टर्स को अपनी बहनों को क्या अच्छा गिफ्ट दे सकते हैं, आप जरा बताइएगा जरूर मुझे मैसेज करके, है ना। 9837896896 पर रक्षाबंधन का जो फेस्टिवल है वो हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं, राखी बांधना मतलब रक्षा सूत्र जो है वो बांधा जाता है भाई को, है ना, कि हम रक्षा करेंगे रक्षाबंधन पे, जो है ये हम निर्णय लेंगे कि हम अपनी बहन कहती है ना कि हम रक्षाबंधन पे राखी इसलिए बांध रहे हैं कि भाई हमें हमारी जो रक्षा करें, हमें जो है प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन जो है उन्हें एक प्रॉपर मिले, राइट। तो रक्षाबंधन का तो बहुत सारी चीजों को मैसेज देता है, एंड हर चीज में जो है ना कहीं एक जो भी फेस्टिवल है उसमें एक मैसेज छुपा होता है। वेल बैक टू पॉइंट, आई वांट टू आस्क यू दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन आज की सुबह, आप मुझे बताओ इस रक्षाबंधन पे सबसे अच्छा गिफ्ट हम क्या दे सकते हैं अपनी सिस्टर्स को, आप डेफिनेटली बताइएगा मुझे मैसेज करके 9837896896 पे। और भाई साहब मार्केट में काफी तहलका मचा हुआ है, भाई साहब चीनी महंगी हो गई यार रक्षाबंधन पे, अगर आपकी सिस्टर कोई ऐसी मिठाई ले आए जिसमें आपको फील आए मीठी वाइब नहीं आ रही है ना,

0: प्रॉब्लम तो हुई है यार, है ना, इस टाइम पे जो है ना काजू कतली अगर आप प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि भाई रेट्स तो ऑफकोर्स बढ़ गए हैं मिठाइयों के। डेफिनेटली मार्केट में क्या चल रहा है अभी बताता हूँ, लौट कर आता हूँ। फिलहाल एक गाना सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आपने ढेर सारे मैसेज किए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी जल्दी वापस आऊंगा तो आपके मैसेज पढ़ूंगा, और अभी वापस आके आपको बताऊंगा हमारे मुख्यमंत्री साहब जो है उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने क्या स्पेशल किया है वुमेन्स के लिए। 3 दिन बस की सर्विस फ्री रहने वाली है, ऑफकोर्स आपको बताया। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी सौगात दी है हमारी महिलाओं के लिए हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, क्या सौगात दी है जानना चाहते हो? बस थोड़ा सा इंतजार, अभी आई विल बी राइट बैक। गाना आ गया है, 9:16 हो रहे हैं, लेकिन अभी घड़ी कह रही है यार प्लीज थोड़ा सा ना एड ब्रेक की तरफ भी ध्यान दो। तो ये छोटू सा एड ब्रेक, बहुत बहुत जरा सा एड ब्रेक, इसके बाद वापस आते हैं।
1: Hey, you're tuned into FM Moradabad 89.6 FM। सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07052।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
5: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: मैंने कहा था ना छोटू सा ब्रेक है, उसके बाद ये अच्छा गाना आ रहा है, चलो इसको सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं जरूर मुझे बताइए, कहीं ट्रैफिक वगैरह तो नहीं लगा हुआ है ये भी आप बता सकते हो, क्योंकि ऑफ कोर्स यार फेस्टिविटी है तो ऐसे में थोड़ी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। जिस भी चौराहे पर जाओ थोड़ी बहुत भसड़ मिल जाती है। सुबह सुबह आप कहीं भी जा रहे हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, कुछ कहना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप 9837896896। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी पूछा है मैंने, कल हम राखी सेलिब्रेट करेंगे उसी से रिलेटेड मेरा सवाल है, अगर आपने नहीं सुना है तो लौट कर आते हैं उसके बाद बताएंगे। फिलहाल ही गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: भाई साहब, प्रकाश नगर चौराहा, मझोला चौराहा और ये इधर दिल्ली रोड की तरफ आप आगे जाएंगे तो मतलब हर तरफ आपको अलग ही वाइब देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ टाउन हॉल की तरफ यानी कि बुद्ध बाजार की तरफ, तो उधर तो भाई मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ, राखी की जो रौनक है ना वो देखने को अलग ही लेवल पे मिल रही है। वेलकम बैक है वंस अगेन, आप आनंद के साथ हैं। आज का दिन बहुत खास है और ये जो बातें हम यहाँ पर कर रहे हैं ना, इसमें आपका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपका सबसे बड़ा योगदान है। इतनी अच्छी बातें जो मैं करता हूँ ना, उसमें आपका बहुत ज्यादा रोल होता है। थैंक यू सो मच। 9:26 हो गए, 27 की सुबह यानी 27 अगस्त है, आजकल 28 अगस्त है जब हम राखी सेलिब्रेट करेंगे। मैं आपसे कह रहा था आप मुझे जरा व्हाट्सएप करके बताओ आपके हिसाब से बहनों को हम सबसे अच्छा गिफ्ट क्या दे सकते हैं। एंड इतने सारे मैसेज आपने किए हैं, बहुत मजा आ रहा है। और सबसे यूनिक जो मेरे को मैसेज अभी मिल रहे हैं ना, मैं आपको क्या ही बताऊं यार, मेरे को एक मैसेज बहुत अच्छा है, इन्होंने लिखा आनंद जी अभी आपने वो चीनी वाला गाना प्ले किया था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आजकल चीनी महंगी है तो हम अपनी बहनों को गिफ्ट में चीनी तो दे ही सकते हैं। मतलब ये थोड़ा सा यूनिक था भाई, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मतलब ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, मतलब बहुत ही अलग लेवल पे पहुंचा है इन्होंने आंसर, लेकिन आपके लिए जोरदार था। सबने बहुत प्यारे प्यारे मैसेज किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यार ऐसा मत करना कि आप गिफ्ट में चीनी लेके पहुंच जाओ, पता चल रहा है मतलब ये एक अलग ही सिनारियो बन गया बॉस आजकल, कब क्या वायरल हो जाए कुछ नहीं पता है ना। एक मैसेज मेरे पास आया है, हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी। देखिए ये किसी मैम का मैसेज आया है, इन्होंने नाम तो नहीं लिखा है, लिखते हैं आनंद जी देखिए क्या होता है ना, हम लड़कियों को, हम बहनों को भाई से कुछ नहीं चाहिए होता है, बस उनका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे और वो हमेशा अपनी जिंदगी में तरक्की करें, हमें तो यही तोहफा चाहिए होता है। अच्छा जी, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। जब कल राखी पे जाओगे तो आप प्लीज़ ये चीज़ तो डेफिनेटली करोगी ही, लेकिन एक गिफ्ट जो होता है वो प्यार को और ज़्यादा मजबूत बनाता है और स्ट्रांग बनाता है। एक मैसेज आया है, मुझे ये मैसेज किसने किया, इनका नाम पढ़ लेता हूँ मैं। हाय गुड मॉर्निंग, शुभम नाम है और ये लिखते हैं आनंद जी मेरी सिस्टर को पिज्जा बहुत पसंद है, तो मैंने तो प्लान कर लिया है कि मैं अपनी बहन को रक्षाबंधन पे पिज्जा गिफ्ट करने वाला हूं, क्योंकि जब वो पिज्जा खाएगी तो डेफिनेटली वो खुश हो जाएगी। अरे वाह, ये अच्छा था यार, वेरी यूनिक। एक मैसेज और आया, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हालचाल है, आपसे लॉन्ग टाइम आपको सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब बढ़िया है ना। हाँ जी, एवरीथिंग इज ओके यार, सब बढ़िया है लाइफ में। और लाइफ में कभी कभी ना कुछ चीज़ें इसलिए भी आती हैं कि ताकि आपको ना वो चीज़ें समझ आ सकें जो एक्चुअली आपको समझ नहीं आती। अभी अभी क्या होता है ना कि हम जैसे दुनिया को देखते हैं, जैसे हम लोगों को देखते हैं ना, हमें लगता है सब कुछ वैसा ही है जैसे हम हैं ना, लेकिन उसके पार भी दुनिया होती है जहाँ आपको पता लगता है कि जैसा आप सोचते हो ना वैसी चीज़ें होती नहीं है, जैसे आप लोगों को समझते हो ना वैसे लोग होते नहीं है। तो हर किसी का अलग अलग फंडा है लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ को देखने का, लोगों के साथ बॉन्ड क्रिएट करने का। बट सी लाइफ में जो है ना, आप बस इतना ही कहना चाहता हूँ, स्ट्रांग रहो, कुछ भी करो अपने दम पे करो, जो भी आपने करना है ना, जो भी कुछ आप बड़ा उखाड़ना चाहते हो अपने दम पे करो यार, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। हम अक्सर लोगों के पीछे भागते रहते हैं कि यार हमें ये कॉम्प्लीमेंट दे देगा, हमें वो हमारे बारे में कुछ अच्छा बोल देगा तो हम अच्छा करेंगे। बट मुझे लगता है कि जब तक आपको खुद से अंदर से वाइब ना आए ना, अंदर से फील ना आए, तब तक आप, मुझे लगता है कि अनकम्प्लीट हो यार। जब तक आपको अंदर से वो यू नो एक कहते हैं ना पावर ना आपको मिले, जब आपको अंदर से पावर मिलती है ना, जब आपको अंदर से एक करंट आता है कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, ये चीज़ मुझे करके ही दिखानी है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। फिर उसमें आना आपको किसी कॉम्प्लीमेंट की जरूरत भी नहीं है ना। तो अपने अंदर के विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, जो आप करना चाहते हो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और आप किस सिचुएशन में हो ना वो भी लोगों को नहीं पता होता है, बट आप जिस भी सिचुएशन में हो, आपकी लाइफ में जो भी फेस है, आप बस उसको जो है ना फेस करते चलो, अपनी कोशिशें लगातार जारी रखो जो भी जिंदगी में चल रहा है। बाकी सब कुछ ना ऊपर वाले पे भी छोड़ देना चाहिए, कुछ कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, ऊपर वाले के हाथ में होती है, और जो वो करते हैं अच्छा ही करते हैं। जब हमें यकीन है ऊपर वाले पे तो फिर टेंशन किस बात की है। 9:30 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आगे बढ़ते हुए अभी आपको एक खास खबर बता देता हूँ फटाफट से, जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, लेकिन अभी एक एड ब्रेक के बाद जल्दी से लौट कर आता हूँ।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहाँ हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहाँ बनती है ड्रीमी वेडिंग विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
0: बस आ गए हैं और अभी बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री साहब के बारे में कि उन्होंने क्या खास जो है अपडेट दी है, ये जरा सुनते हैं।
3: सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निशुल्क यात्रा कर ली गई।
0: चलिए मैं काम करता हूँ, दोबारा से इनको सुनाता हूँ।
3: से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निशुल्क यात्रा कर लीगी।
0: ये आपको पता लग गया। और एक और खास चीज है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जो 60 प्लस लेडीज हैं वो जो है अब बस में ट्रैवल कर सकेंगे मुफ्त में, अपना अपना आधार कार्ड दिखा करके, मतलब अपना जो उनका वोटर आईडी है उसको दिखा करके, वो जो है अब जिनकी एज 60 प्लस है वो मुफ्त में ट्रैवल कर सकेंगे, उनको कोई शुल्क नहीं देना होगा। ये भी एक सौगात इस रक्षाबंधन दी गई है हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, जो कि बहुत ही अच्छी है और बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें चल रही हैं। और बाकी तीन दिन तो आप ऑफकोर्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा ले सकती हैं और बिना किसी चार्ज के अपने भाई के घर पहुंच सकती हैं। चलो 9:32 हो गए हैं इसी बात पे। अब जो आप कह रहे हो ना चीनी चीनी लेकर जाएंगे, भाई ये मत करना, दिक्कत आने वाला गाना। हाँ जी बिल्कुल, अगर मिठाइयों में चीनी कम लगे तो समझ जाना यार, बहन भी समझदार हो गई आपकी। अब हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। और आप बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो भाई, अभी बताता हूँ आपके सारे मैसेज को पढ़ूंगा, टेंशन मत लो। आप कुछ कहना चाहते हो, आपको क्या लगता है इस रक्षाबंधन आप अपनी बहन को क्या स्पेशल गिफ्ट दे रहे हो, या क्या देना चाहिए एक भाई को अपने सिस्टर को गिफ्ट, ये भी आप मुझे बता सकते हो व्हाट्सएप के जरिए 9837896896 पर।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: गाइज थैंक यू यार इतने प्यारे मैसेज करने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और आगे बढ़ते हैं, और आपने जो संदेश पहुंचाए हैं उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी फटाफट से लौट कर आ रहा हूं, फिर बात करते हैं हमारे लोकल में और क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं, बात करते हैं। लेकिन आजकल चीनी महंगी हो रही है, इस पे सबको पता है, बात कर रहा है हर इंसान, बात कर रहा है। मैं आपसे पूछ भी रहा था,
1: चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझे,
0: मुझे चीनी से ये गाना याद आ गया। मैंने सोचा सुबह सुबह सोने में सुहागा इसी गाने को प्ले करते हैं बॉस। कभी डीजल पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी गैस सिलेंडर महंगे हो जाते हैं, कभी चीनी महंगी हो जाती है, समझ नहीं आ रहा भाई चल क्या रहा है ये। फिलहाल जो भी चल रहा है एंजॉय करते रहो यार, लाइफ में यही तो चीजें हैं। कब क्या हो जाए आई डोंट नो, लाइफ ना बड़ी अलग सी चीज है, हमेशा एक अलग ही सरप्राइज देती है, आप सोच भी नहीं सकते अगले पल क्या हो जाए, अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं, इसलिए ज्यादा सोचना ही बेकार है। कुछ चीजें बस छोड़ दो, लाइफ को सेलिब्रेट करते चलो।

0: साहब प्रॉब्लम होनी तो बनती है यार, है ना। एक तो फेस्टिवल, ऊपर से ये इतनी सारी चीजें एक साथ आ जाना, मतलब कभी भी ऐसा लगता है भाई साहब ये चल क्या रहा है, मतलब अलग ही सीन बन जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत प्यारे मैसेज सुबह सुबह करके मेरा दिन बनाया है। 9:42 हो गए स्टेशन में और अभी भसल एकदम से ना मच जाती है दिमाग में, क्योंकि जब बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है ना एक साथ दिमाग में, तो फिर समझ नहीं आता यार कि कौन सी चीज़ को शॉर्टलिस्ट करें, कौन सी चीज़ बेटर है, कौन सी चीज़ अच्छी है, किसको लें किसको ना लें, जब एक साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला जो है वो सेगमेंट आ ही जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें, देखिए रक्षाबंधन को लेकर ना बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि भैया कल जो है इस टाइम तक मुहूर्त रहने वाला है, इस टाइम तक जो है ये शुभ रहने वाला है, तो करके बहुत सारी चीजें आ रही है। बट मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज के लिए ना, स्पेशली जो एक पावन पर्व होता है, तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा किसी खास और शुभ मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। वैसे कुछ कुछ चीजें अब जो बना दी गई हैं उसको तो फॉलो करना ही है, जो रिचुअल्स बनाए गए हैं उनको तो फॉलो करना ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज के लिए, स्पेशली इतने पावरफुल दिन के लिए भी अगर हम किसी शुभ मुहूर्त का वेट करें तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज सही होगी। बट ठीक है, जो लोग फॉलो करते हैं उन्हें करना चाहिए। रक्षाबंधन पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए भाई साहब बहुत सारी जो है ट्रेन स्पेशल जो है वो चलाई जा रही हैं, ताकि जो भाई बहन हैं वो अपने त्यौहार को बहुत आसानी से मना सकें। और ये मैंने बहुत अच्छे से देखा है, बहुत भसड़ भी मची हुई थी, मैं रिसेंटली बाहर था 2 दिन पहले, बहुत भयंकर भीड़ है और इतनी ज़्यादा भयंकर भीड़ है कि आप अगर टिकट लेने की लाइन में भी लग रहे हो ना, बहुत से अगर आपने बुकिंग नहीं कराई फिर तो भाई साहब दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनों में जो है इस समय हालत खराब हो रखी है, लेकिन फिर भी जो लोग पहुंच रहे हैं अपने अपने घरों को, भाई वेरी वेरी केयरफुल, आराम से पहुंचो, बहुत ज़रूरी है घर पहुंचना। और त्योहारों के टाइम पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ देखने को मिलती है, क्योंकि हर किसी को घर जाना होता है ना, तो ऐसे में जो है रेलवे की तरफ से भी कुछ स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। और आपको कहाँ जाना है, आपको किधर जाना है, अपनी उस स्पेशल ट्रेन के बारे में पूरी रिसर्च कर लें, उसके बाद ही आप निकलें। और अगर अभी तक आपने अपनी टिकट नहीं कराई थी तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अब, लेकिन अगर आप घर जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप पहुँचिए और ज़रा संभल कर पहुँचिए। अभी एक और खबर यह आई है कि भैया भारत में त्योहारों के मुख्य सीजन से पहले ही, आपको पता है चीनी में थोड़ी सी जो है महंगाई आ गई, चीनी का जो है रेट एकदम से अलग लेवल पे पहुंच गया है। अब ऐसे में जो है बताया ये जा रहा है कि इसी कमी को देखते हुए, मतलब ये जो चीनी की इस समय शॉर्टेज पड़ रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी पड़ रही हैं, कुछ लोग भाई साहब कह रहे हैं कि 3 से 5 किलो तक चीनी ही आप खरीद सकते हैं। कुछ रिटेलर्स ने ऐसा कहा है कि अगर आपको चीनी खरीदनी है तो आप 3 से 5 किलो के बीच ही ये चीनी मतलब खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। और भाई समझ में नहीं आ रहा, स्पेशली बताया जा रहा है कि जो अभी फेस्टिवल है उसके बाद भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि अभी चीनी थोड़ी ज़्यादा महंगी हो गई है। अच्छा यार एक चीज़ मैंने नोटिस की, मतलब जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ का ना अपना एक टाइम आता है, मतलब एक टाइम आता है हर चीज़ का। आप कभी भी देखना हर चीज़ के रेट जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है उसकी डिमांड बढ़ रही है, और समय समय पर ना पता नहीं किस किस चीज़ों की, कभी नहीं एक्सपेक्ट किया होगा आपने कि गैस कभी महंगी होगी, कभी सोचा नहीं होगा कि वैसे चलो पेट्रोल डीजल का तो समझ में आता है, लेकिन चीनी इतनी महंगी हो जाएगी, भाई मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार। तो वही है ना कि हर कहते हैं ना हर चीज़ का अपना एक टाइम फिक्स है भाई, हर बंदे का अपना एक टाइम आता है जब वो अपने स्वैग में होता है, जैसे कि अभी चीनी का अपना टाइम आ गया है बॉस। अच्छा व्हाट्सएप को लेकर भी अभी एक नई अपडेट आई है कि जो लोग व्हाट्सएप यूज़र हैं, बताया गया है कि भैया व्हाट्सएप ने अब अकाउंट सिक्योरिटी के नियमों में थोड़ा चेंज कर दिया है। यस, आपका जो 6 डिजिट का पिन होता है, अगर आप वो पुराना हो गया तो उसे आप चेंज ज़रूर करें, और बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके व्हाट्सएप में कोई भी लिंक आता है अनजान नंबर से, या कोई भी आपको OTP के लिए मैसेज आता है, तो आप प्लीज़ इससे अलर्ट रहें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फ्रॉड एंड फेक कॉल्स आते रहते हैं, है ना। तो आपको सावधान रहना है, और आपको कोई भी चीज़ अपनी बिना किसी मतलब जान पहचान के, बिना वेरिफिकेशन के आपको इधर उधर नहीं शेयर करनी है। आजकल बहुत सारा स्कैम मार्केट में आ गया, बहुत सारे नए नए फ्रॉड्स आ गए, तो आपको प्लीज ध्यान रखना है। रक्षाबंधन पर UPI से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो भाई साहब आप ठगी का शिकार हो सकते हैं, कैसे ये बताता हूँ अभी आपको। लेकिन अभी एक छोटे से एडब्रेक का टाइम हो रहा है और कुछ अच्छे गाने भी आपका इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं जल्दी से वापस लौट कर आता हूँ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है ZIG प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। ZIG करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681। पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
3: बजाइए ना।
4: चल

0: क्या बात है यार, बहुत ही जबरदस्त गाना। चलो इसी गाने के साथ जरा टाइम मिला लो भाई, 10:02 हो गए हैं, बाहर झमाझम बारिश हो रही है। मैं अभी देखकर आया हूँ, बाहर का मौसम तो हो ही रहा है मौसम, और जब बारिश आती है तो मजा आ जाता है। बारिश में ना मन खुश हो जाता है, लेकिन जब अंदर से खुशी मिलती है ना, मजा तभी आता है बॉस।
1: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
2: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
3: क्या मेरी कसम?
2: मिस कर दिया तो रीलोड।
4: चाय चाय चाय।
5: बिंदास मॉर्निंग।
2: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।

0: गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
1: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग।
2: फेस्टिवल आता है ना तो बहुत सारे ऑफर्स आ जाते हैं, ये ऑफर आया वो ऑफर आया, यहाँ पे भैया ये पाओ वो पाओ। इस चक्कर में ना बहुत सारे ऑफर्स जैसे हमारे व्हाट्सएप पे भी लिंक आ जाते हैं कि भैया इस पे क्लिक करोगे तो आपको ये ऑफर वाला डिस्काउंट मिलेगा, यहाँ पर करोगे तो ये गिफ्ट आपको बोनस में मिलेगा। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं और हम ना इतने एक्साइटेड होते हैं फेस्टिविटी में, इतना ज्यादा खो जाते हैं, हमें समझ ही नहीं आता भैया कौन सी चीज गलत है और कौन सी सही है ना। तो यूपीआई के बारे में थोड़ा सा अपडेट आपको देता हूँ। रक्षाबंधन पर यूपीआई पेमेंट ना करें, मतलब अगर आप कर रहे हैं यूपीआई का पेमेंट तो भैया ये गलती बिल्कुल ना करें। किस चीज के वे में बोलूं जरा, पहले वो पूरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। देखो आजकल ना फर्जी यू नो कोरियर मैसेज बहुत ज्यादा आ रहे हैं एंड कई बार ना लोगों के पास ऐसे मैसेज भी आएंगे कि राखी या गिफ्ट रिसीव करने के नाम पे आपको बहुत सारे अनजान लिंक्स आपके व्हाट्सएप पे आ सकते हैं, फर्जी आपको क्यूआर कोड भी मिल सकते हैं, बहुत सारे फर्जी लिंक आपके पास पहुंच सकते हैं, इससे ठगी का खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसे में आपको सावधान रहना है। अगर आपके व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम के रील्स में कोई ऐसा मैसेज आपको दिख रहा है या कोई ऐसा वीडियो की अभी लिंक पे क्लिक करो, राखी आप इतनी अच्छी वाली इतने कम रेट पे मंगा सकते हो, या आप उसके साथ में ये धमाकेदार ऑफर ये डिस्काउंट पा सकते हो, या फ्री में कुरियर करने का ऑप्शन आपको मिल रहा है, मतलब तरह तरह की चीजें जो स्कैमर जो मार्केट में बैठे हैं जो स्कैम करते हैं वो नई नई चीजें लेकर आते हैं भैया, ताकि लोग उनका शिकार बन सके, है ना, तभी वो नई नई फंडों को फॉलो करते हैं। तो ऐसे में जो है अनजान क्यूआर कोड पे बिल्कुल भी आप पेमेंट ना करें, पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम डेफिनेटली चेक करें, अनजान नंबर से आए क्यूआर कोड से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको लगता है कोई भी रॉन्ग नंबर से आपको क्यूआर कोड आता है तो उससे बिल्कुल भी आप स्कैन ना करें, जब तक आप रिसीवर का नाम चेक ना करें तब तक तो बिल्कुल आगे ना बढ़ें, फ्री ऑफर के लालच में बिल्कुल ना आए, अनजान लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक ना करें, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर मिलने वाले कूपन डिस्काउंट लिंक्स जो आते हैं ना गिफ्ट्स वाले, इनसे बिल्कुल अलर्ट रहें, केयरफुल रहें और किसी भी लिंक पर बिना सोचे समझे प्लीज क्लिक ना करें। पैसे पाने के लिए जो है ना लोग बहुत सारी चीजें आपसे जो है पूछेंगे, जो फ्रॉड होंगे जो स्कैमर होंगे वो तमाम तरीके अपनाते हैं, तो आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है ना। और जब भी आप पैसे रिसीव करते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी यूपीआई पिन नहीं देना पड़ता है, या बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं तब आपको यूपीआई पिन का इस्तेमाल करना होता है, लेकिन अगर आपको कोई पैसे भेज रहा है आपके पास आ रहे हैं तो उस सिचुएशन में आपको पिन का इस्तेमाल नहीं करना होता है, ये आप जानते हैं। तो भैया इस शगुन के मौके पे, इस हैप्पीनेस के मौके पे जो है आप इन चीज़ों से बचे रहें, डिजिटल ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो ऐसे में जितनी फैसिलिटीज़ हमें मिलती हैं उसके लोग बहुत सारे फ़ायदे भी उठाते हैं, तो इन चीज़ों का शिकार ना बने, सतर्क रहें, सावधान रहें, बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप इन पे डेफिनेटली काम करोगे तो आप अलर्ट रहोगे, आप सेफ रहोगे, तो आपका फेस्टिवल भी अच्छे से जाएगा, राइट। तो भैया आगे बढ़ते हैं, मैंने एक सवाल आपसे पूछा है फिर मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मेरा जाने का टाइम हो गया है, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है। आज का सवाल बहुत सिंपल मैंने पूछा है, कल रक्षाबंधन है, राखी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करेंगे, तो इसी से रिलेटेड आज का सवाल है। मैं आपको तीन जोड़ियाँ बता रहा हूँ, एक जोड़ी ऐसी जो रियल में सिस्टर ब्रदर की जोड़ी नहीं है, मतलब ब्रदर सिस्टर की जोड़ी नहीं है रियल लाइफ में, वो इनमें से कौन सी जोड़ी है? ऑप्शन ए साकिब सलीम उमा कुरैशी, ऑप्शन बी रणवीर कपूर करीना कपूर, या ऑप्शन सी सैफ अली खान एंड सोहा अली खान। इन तीनों में से कौन सी जोड़ी है जो रियल लाइफ के ब्रदर सिस्टर नहीं है, मतलब रियल लाइफ में सगे भाई बहन नहीं है, इन तीनों में से कौन है? ऑप्शन ए साकिब सलीम उमा कुरैशी, ऑप्शन बी रणवीर कपूर करीना कपूर, या ऑप्शन सी सैफ अली खान सोहा अली खान। इन तीनों में से कौन है जो रियल लाइफ में भाई बहन नहीं है? अगर आपको पता है तो आप मुझे इमीडिएटली मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह 9837896896938968968968 पे व्हाट्सएप करके आप बता सकते हैं। फिलहाल एक काम करते हैं, अच्छा सा गाना सुनते हैं और गाने के बाद वापस आते हैं, फिर आपसे और ढेर सारी बात करूंगा, ठीक है। वैसे बात करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचा है क्योंकि टाइम बहुत कम है, कोई बात नहीं, जितना टाइम है उसको अच्छे से एंजॉय करेंगे आपके साथ। फिलहाल ये गाना सुनते हैं और इसको आगे बढ़ते हैं सुनते हुए, आप मैसेज करते रहिए, इंतजार आपके मैसेज का हमें रहेगा, ठीक है जी। चलो बहुत प्यारा गाना निकाला है मैंने, इसको सुनते हैं और ऐसे एंजॉय करते हैं साथ में।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

भैया काजू कतली लेके चलो या कुछ भी लेके चलो, मिठाई तो देखो थोड़ी सी महंगी हो रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम कंजूसी करें। 10:15 हो गए, मेरा जाने का समय हो गया है। फिलहाल अब लेता हूँ आपसे जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आपसे मैंने एक सवाल पूछा था, बड़ा छोटा सा, उसका जवाब आपने मेरे को देना था। मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे कल, रक्षाबंधन है उसी से रिलेटेड आज का सवाल था। सबने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं, मतलब माइंड ब्लोइंग आंसर्स, जोरदार तालियां। लेकिन मैं आपको बता दूं जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी। एग्जैक्टली, मैंने आपसे कहा था ना 3 ऑप्शन दे रहा हूं जो रियल लाइफ ब्रदर सिस्टर नहीं है, इनमें से वो कौन से जोड़ी। देखिए, जो सोहा अली खान है, सैफ अली खान है, वो रियल सिस्टर है ना, रियल भाई बहन है। एंड उमा कुरैशी के जो भाई हैं वो बिल्कुल जो फर्स्ट वाला था वो भी रियल भाई बहन है। अभी जो रणवीर कपूर एंड करीना कपूर हैं ये रियल वाले भाई बहन नहीं है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, तो आप सभी के लिए जोरदार ताली। मेरे पास भक्ति का सही जवाब आया है, इन्होंने मेरे को लाइन पार से सही जवाब दिया है। भक्ति जी कंग्रेचुलेशन, बिल्कुल राइट आंसर दिया आपने और ये एकदम करेक्ट जवाब है कि ऑप्शन बी बिल्कुल भी रियल वाले ब्रदर सिस्टर नहीं है, वो कजन है बट रियल वाले नहीं है। एग्जैक्टली, चलिए गाइस थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी 10:16 हो गए, खुशी ऑफिस में आ गई है, आप खुशी के साथ ढेर सारी बातें करना और अच्छे अच्छे गाने भी सुनना। एंड हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, सी यू टुमारो मॉर्निंग। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, मुस्कुराते हुए आगे बढ़िए। लाइफ में जो चल रहा है चलने दीजिए, कुछ चीजें ऊपर वाले पे छोड़िए यार, क्योंकि हर चीज आप नहीं कर सकते। अलका वर्मा मेरे साथ जुड़ चुकी हैं यहाँ पर। हाय, गुड मॉर्निंग राधे राधे आनंद जी, बुद्धि विहार से राधे राधे आपको। हेलो आनंद जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। ललिता कश्यप नवीन नगर से मेरे साथ जुड़ी थी, आनी लिख रही, हमने बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज रेडियो पे सुनी है और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था, थैंक यू सो मच। ये शमशाद अली साहब मेरे साथ जुड़े थे आज की सुबह, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। गौरव टेलर जी नवीन नगर से जुड़े हैं, लिखते हैं आनंद भाई कैसे हालचाल हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, इनको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। लिखते हैं जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कोई कष्ट ना पहुंचे। हमारे साथ डॉक्टर सुरेश जुड़े थे इस वक्त, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। ऑप्शन 3 सर, ये तो था ही सही जवाब, मतलब वो तो रियल लाइफ में भाई बहन है ही, लेकिन जो नहीं थे वो मैं पूछ रहा था, है ना, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल हैं। हेलो नमस्ते, रे रिजवान खान साहब जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह। आरजी आनंद जी गुड मॉर्निंग कैसे हालचाल है। हरपाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं गंगा मंदिर से, गुड मॉर्निंग जी। अनुज शर्मा नवीन नगर से जुड़ रहे थे, इनका भी सही जवाब था। साथ ही साथ मेरे पास मैसेज पहुंचा था, गुड मॉर्निंग सर कैसे हालचाल हैं, कैसे हैं आप। निखत फातिमा जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। नासिर हुसैन साहब जुड़े हैं, लिखते हैं हेलो हाय गुड मॉर्निंग ब्रदर, आप कैसे हैं। मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। एंड ये बिलारी जा रहे हैं, इनको गाने अच्छे लग रहे हैं, बारिश हो रही है, मौसम बहुत अच्छा है। साथ में एक थॉट शेयर करते हैं कि इंसान की जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए और उसे कभी भी अपनी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। वक्त कितना भी कठिन हो अगर हौसला कायम रहता है तो परेशानियों का रास्ता निकल ही जाता है। बिल्कुल जी। आरजी आनंद जी गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, मैं बढ़िया हूँ जी। आनंद जी कैसे हैं आप। नमस्ते, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ सर। ये बबली अनजान, उसके साथ ही साथ हमारे साथ लक्ष्मी जी जुड़ी हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाती हैं। गुड मॉर्निंग, थैंक यू, कैसे हाल चाल हैं आपके। बहुत ही बढ़िया है मेरे हाल चाल, आप लोग बहुत सारे मैसेज कर रहे हैं। अफरोज फातिमा जी मेरे साथ जुड़ी हैं, साथ ही साथ दुर्गेश सैनी हमारे साथ जुड़े हैं। मुरादाबाद से रणवीर सिंह जेठालाल जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं। साथ ही साथ एक और मैसेज आ गया है अमित जी का, लिखते हैं बिंदास मॉर्निंग, आपके बिना अधूरी थी, आज मॉर्निंग बिंदास हो गई, थैंक यू। अमरपाल ठाकुर जी जुड़े हैं मेरे साथ आज की सुबह। एंड साथ में ये असगिरी बेगम मुजफ्फरपुर बिहार से जुड़ी हैं आज की सुबह। विक्की सागर लिखते हैं गुड मॉर्निंग आनंद जी कैसे हैं आप, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। चलिए गाइस कल होगी मेरी आपकी मुलाकात, रक्षाबंधन है, आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मुजफ्फरनगर से सुभाष सैनी साहब जुड़े हैं, हाय आनंद जी गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं, गुड मॉर्निंग। नेहा स्वाति जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, मुस्कान का मैसेज पहुंचा है, थैंक यू गाइस। चलो अभी मैं यहाँ पर अपनी बातों को विराम देता हूँ, ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं, अभी छोड़ के जा रहा हूँ, जिन लोगों का नाम शामिल नहीं कर पाए उसके लिए माफी चाहता हूँ, कल सुबह बात करेंगे ना, ढेर सारी, बाय बाय।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: Koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: बुलाया था?
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 0552।
3: अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
6: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
7: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
6: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
7: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
6: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
8: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।
9: म्यूजिक, मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

गुड मॉर्निंग माय डियर लिसनर्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और देखिए ना दोस्तों, बाहर का मौसम कितना ही खूबसूरत है ना, हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश हो रही है और हल्की हल्की हवाएं भी चल रही हैं, है ना। सुबह का इतना सुहाना सा मौसम है और दिन भी बहुत ही खूबसूरत सा है। थर्सडे का 27 अगस्त की तारीख है और समय हुआ है 10:30। और खुशी हाजिर है आपका अपना फेवरेट शो लेकर, मॉर्निंग मसाला। और दोस्तों, थर्सडे मॉर्निंग थॉट बहुत ही ब्यूटीफुल है कि जितनी दूर तक सोचोगे उतनी दूर तक पहुंचोगे, जितनी दूर तक सोचोगे ना उतनी दूर तक पहुंचोगे। सपनों की कोई सीमा नहीं होती, सीमा केवल हमारी सोच, हमारी जो थिंकिंग है वो तय करती है। तो मैं कहती हूँ आपसे दोस्तों, अगर सोचना ही है ना तो कुछ बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, और हाँ, सोचने के साथ साथ मेहनत भी करो, वो बहुत जरूरी है। And be positive, be happy. और एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक आज की सुबह मैं आप सभी को यहाँ पर डेडिकेट करती हूँ। एंड आप भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए आज की मॉर्निंग। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और आज क्या कुछ अपने इंडिया में, अपने वर्ल्ड में चल रहा है एंड अपने मुरादाबाद सिटी में, सब आपको अपडेट यहाँ पर मिलने वाली है। तो बस बने रहिए खुशी के साथ और मुस्कुराते रहिए।

गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी का वेलकम है फिर मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी है आपके साथ और मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी कि ऑल इज वेल। एंड देखिए, किसी को नहीं पता होता है कि लाइफ में क्या होने वाला है ना, और हम व्यर्थ की चिंता करते रहते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, कैसे होगा। एंड मेरा ये मानना है कि हमारा आज अगर अच्छा है ना, तो कल ऑटोमेटिकली खूबसूरत होगा। इसीलिए कल की चिंता ना करें, एंड जो समय आपके पास है, जो पल आपके पास है, तो उसे अच्छे से एंजॉय करें, अपनों के साथ रहें, जो भी आप कर रहे हैं काम, एंड आपका कोई भी ड्रीम है, आप उसको अचीव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो बस शिद्दत के साथ मेहनत कीजिएगा। और ये मत सोचिए कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बस आप मेहनत करते रहिए और फल की चिंता मत कीजिए, क्योंकि वो तो ऊपर वाले का काम है। मेहनत करना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, तो वो कीजिए और व्यर्थ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है? सब कुछ अच्छा होगा। और दोस्तों देखिए, रक्षाबंधन का त्यौहार अब बिल्कुल करीब है, एंड और बाजार में रंग बिरंगी राखियों से गुलजार नजर आ रहे हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए पसंदीदा राखी और गिफ्ट खरीदने में जुटी हुई हैं। किसी की शॉपिंग पूरी हो चुकी है तो कोई भाई के घर जाने की तैयारी में व्यस्त है, बैग पैक कर रहे हैं। और जो बहनें अपने भाई से दूर रहती हैं, वो भी पीछे नहीं है, ऑनलाइन राखियां भेज रही हैं, भेजकर प्यार और बहन भाई की रिश्ते की डोर और मजबूत कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए, दूरी चाहे कितनी भी हो, राखी का प्यार दिल को हमेशा करीब रखता है। और कल मैं भी शॉपिंग करने के लिए गई थी मार्केट, तो मैंने देखा प्रकाश नगर में इतना रश, इतना लोग, मतलब थे ना कि आधा घंटे तक हम पैदल थे तो भी हम ट्रैफिक में फंसे रहे, मतलब इतना जाम था ना, गाड़ियां इतनी ज्यादा थी कि पैदल निकलने वालों को भी रास्ता नहीं मिल पा रहा था, इतनी भीड़ एंड इवनिंग समय में, शाम के वक्त। तो मैंने कहा, रीना एंड रीना और मैं दोनों शॉपिंग करने के लिए गए थे, हमने कहा आज तो हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। और जहाँ भी हम देख रहे हैं, चारों तरफ हमारी नजरें जा रही हैं, तो राखी की स्टॉल एंड कलरफुल ब्यूटीफुल राखियाँ मिल रही थी। कभी दिल करता है कि ये राखी खरीदें, तो कभी मन करता है कि नहीं दूसरी खरीदें, मतलब इतना कंफ्यूज होते हैं हम लोग। आखिर ब्रदर और सिस्टर का जो प्यार होता है बहुत स्पेशल होता है ना, और हर बहन चाहती है कि अपने भाई को सबसे डिफरेंट राखी बांधे। वैसे आप लोगों ने राखी खरीद ली है ना अपने ब्रदर्स के लिए? अरे वाह, फुल तैयारी करके बैठी है मैडम जी। हाँ चलिए, अच्छी बात है। एंड इस खूबसूरत पर्व को अपनों के साथ अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा। और यहाँ पर खूबसूरत संदेश भी आ रहे हैं आपके लगातार, मैं उनको भी शामिल करूंगी। दोस्तों मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ब्यूटीफुल शो में, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896 और हमारे पास यहाँ पर खूबसूरत मैसेज भी आ गए हैं, तो शुरू करते हैं ये सिलसिला एंड जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कहाँ से और किन का संदेश आया है। और हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हमें मैसेज पहुँचाते हैं ग्राम सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एंड शिवांश वर्मा जी। नमस्कार आरजे जी, आपको भी नमस्कार सर। और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है, चंदा रे मेरे भैया से कहना बहना याद करे। बिल्कुल सुनवाएंगे सर आपको, थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। अगला संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी जी का। एंड आरजी जी आपको आदाब, आपको भी आदाब सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है ताज मोहम्मद अंसारी जी का, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से अपना मैसेज पहुंचाते हैं। और एक मैसेज हमें और मिला है यहाँ पर, आरजे जी आपको आदाब, आपको भी आदाब। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से, मोहम्मद यासीन अनजान जी अपने पूरे परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं।
और भी हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे संदेश आ रहे हैं, तो आकर हम शामिल करेंगे एंड कुछ अपडेट भी हैं जो आप तक पहुँचाने हैं। बस आप बने रहिए खुशी के साथ। और आप भी मुझे बताएं कि आपने भी अपने भाइयों के लिए शॉपिंग कर ली है, नहीं की अभी तक? हाँ,

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

देखिए दोस्तों, खुशी तो कोशिश पूरी करती है कि जब खुशी आए तो ढेर सारी खुशियां अपने श्रोताओं के चेहरे पर लेकर, एंड जब आप सब मुस्कुराते हैं तो खुशी को भी बहुत खुशी होती है। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रक्षाबंधन से श्रेया घोषाल और साथ में अरिजीत सिंह जी की खूबसूरत सी आवाज, म्यूजिक डायरेक्टर थे हिमेश रेशमिया जी और लिरिक्स थे इरशाद कामिल जी की। और सच में दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता ऐसा ही होता है, वो कितना भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर ले लेकिन एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, कुछ टाइम के बाद फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों जब पास होते हैं ना तो रिश्ते इतने, मतलब हम उनको लाइट नहीं लेते हैं, है ना, इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते हम दूर हो जाते हैं, कहीं बाहर रहते हैं स्टडी की वजह से, जॉब की वजह से, या फिर शादी हो जाती है, तो वो बीता हुआ एक एक पल बहुत याद आता है। और जब याद आता है तो आंखों से आंसू भी आ जाते हैं, है ना, इमोशनल हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपनी यादों को ऐसा बनाइए, जब आप इस पल को याद करें तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, समझे आप। और देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत सी अपडेट यहाँ पर देने वाली हूँ, स्पेशली हमारी यूपी की बेटियों के लिए है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार की योजना के तहत ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही 50,000 छात्राओं को आगामी अक्टूबर या फिर नवंबर में मुफ्त स्कूटी दी जाएगी। यानी बेटियां अब सिर्फ सपने नहीं देखेंगी बल्कि आत्मनिर्भर बनकर अपने सपनों की उड़ान भरेंगी। सच में बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए ऐसे कदम एक मजबूत और आत्मनिर्भर यूपी की तस्वीर दिखाते हैं। तो यूपी की बेटियों के लिए ये खबर वाकई चेहरे पर मुस्कान लाने वाली है। जो हमारी गर्ल्स हमें यूपी की सुन रही है ना, जो ग्रेजुएशन कर रही हैं, हाँ जी, अक्टूबर और नवंबर में मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी, ताकि आप अच्छे से और स्टडी कर सकें एंड आपको आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये हमारी यूपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है। एंड अभी आपके मैसेज भी शामिल कर लेते हैं, वक्त हुआ है 10:55 और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, खुशी जी जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। गौरव नीरज जी नवीन नगर मुरादाबाद से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह, एंड हमारे हालचाल जानना चाहते हैं तो बता देते हैं, हम सब बहुत अच्छे हैं, आपकी दुआएं हैं। एंड ये कहते हैं कि मुरादाबाद सुनने वाले सभी दोस्तों को और एफएम मुरादाबाद के सभी प्रेजेंटर को एडवांस में रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सेम टू यू सर। एंड इन्होंने आज की सुबह एक थॉट भी शेयर किया है कि जिनके जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कोई कष्ट ना पहुंचे। एग्जैक्टली राइट सर। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है जनकपुरी सहारनपुर से जून रोजी परवलीज जी का, और ये हमें गुड मॉर्निंग पहुँचाते हैं आज की सुबह, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी सर। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है, जय माता दी, राधे राधे, खुशी जी आपको भी राधे राधे। अजीत कसाना जी साथ में माया देवी जी हैं, ऋतिक हैं और आदित्य कसाना जी हैं कांट रोड लदावली से अपना मैसेज पहुँचाते हैं आज की सुबह। अगला मैसेज हमारे पास आया है, जय श्री राम, खुशी जी गुड मॉर्निंग, दुर्गी सैनी जी का मुरादाबाद से। उसके अलावा एक और मैसेज हमारे पास आया है, बबली अंजान जी का, गीता कश्यप जी का, और ये गुड मॉर्निंग विश करते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं फ्रॉम द मूवी करण अर्जुन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, तो इस बेहतरीन ट्रैक को सुनते हैं और उसके बाद हम लौट कर आते हैं। तब तक आप कहीं मचाइएगा, यूं ही मुस्कुराइए और अपने संदेश मुझे पहुंचाइए।

और चलिए सुनते हैं एक खूबसूरत सा ट्रैक। इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी है गौरव टेलर जी ने नवीन नगर मुरादाबाद से। आप भी कोई ट्रैक सुनना चाहते हैं, कोई स्पेशल सा गाना जो अपने फैमिली मेंबर्स को डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने भाई को या फिर बहन को राखी स्पेशल, तो जल्दी से पहुंचा दीजिएगा, हम आप तक पहुंचाते हैं एक बेहतरीन ट्रैक।

0: स्टॉप इट रागिनी, मुझे अकेला रहने दो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें काश मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

और इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी अमित कुमार गुप्ता जी ने मिलन बिहार मंझूला डेली रोड मुरादाबाद से। एंड हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है खुश मैम गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। बस उन्होंने गुड मॉर्निंग विश किया है नाम नहीं लिखा अपना ऐसा मत किया करो एवरीवन। अगला मैसेज हमारे पास आया हेलो गुड मॉर्निंग मैम मुरादाबाद चौराहा गोविंदपुर खुर्द से रजा हुसैन जी अपना मैसेज पहुंचाते हैं। नेक्स्ट मैसेज आया है रानी नांगल से रिहाना जी का और ये भी गुड मॉर्निंग विश करती हैं वेरी गुड मॉर्निंग आपको डियर। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है गुड मॉर्निंग खुशी जी वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। और ये मैसेज हमें पहुंचाती हैं कनिका ज्योति अक्षरा। नेक्स्ट मैसेज हमें मिला है गुड मॉर्निंग मैम कैसे हैं आप सना तुर्क एंड नाजिया तुर्क का मैसेज यहाँ पर हमारे पास आया है और ये एक हरियाणवी ट्रैक सुनना चाहती हैं आज की मॉर्निंग बिल्कुल सुनवाएंगे। और दोस्तों अपने मुरादाबाद में क्या चल रहा है ये भी आपको खुशी बताने वाली है तो बस आप बने रहिए मेरे साथ और यूं ही मुस्कुराते रहिए।

और एक बहुत ही शानदार सा ट्रैक यहाँ पर सुनना चाहती हैं दीपांशी फ्रॉम द मूवी वीर ज़ारा से ये ट्रैक है एंड लता मंगेशकर जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ में गाना सुनते हैं।

देखिए दोस्तों, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिल्म मुरादाबाद 89.6 आरजे खुशी के साथ। शुक नाम है मॉर्निंग मसाला। और समय हुआ है 11:18।

और दोस्तों आगरा में इन दिनों एक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। मिस टीन इंटरनेशनल 2026 में हिस्सा लेने पहुंची 30 से ज्यादा देशों की खूबसूरत प्रतिभागियों ने ऐतिहासिक ताजमहल का दीदार किया और यहां की खूबसूरती को अपने कैमरे में कैद किया। 22 से 30 अगस्त तक चल रही इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले जयपुर राजस्थान में होगा, जहां पिछले साल की विजेता नई विजेता को ताज पहनाएंगी। तो ताज की खूबसूरती और दुनिया भर की खूबसूरती खूबसूरत प्रतिभाओं का ये संगम वाकई देखने लायक है एवरीवन। और यहाँ पर आपकी खूबसूरत मैसेज ओहो हमारे शो में चार चांद लगा देते हैं। और हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी का। आज की मॉर्निंग कहती हैं गुड मॉर्निंग खुशी जी, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। आज मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है। बाहर का मौसम बहुत ही औसम है एंड जब मैं आ रही थी ऑफिस तो हल्की हल्की रिमझिम सी बौछार हो रही थी। और आप मुझे बताइए कि अभी भी बारिश हो रही है या फिर बंद हो चुकी है। एंड हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट मैसेज आया है गुलाम जलानी पाशा जी का और ये ट्रैक सुनना चाहते हैं मेरी जिंदगी है तू। सुनवाएंगे सर। अगला मैसेज आया है खुशी जी गुड मॉर्निंग, ये अपने पूरे परिवार के साथ हमें सुन रहे हैं शंकर लाल यादव, रितु यादव, अमित यादव एंड नरेश यादव जी, निरांशी यादव लाइन पर मुरादाबाद से। और ये एडवांस पे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं पहुंचाती है। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं खुशी मैम गुड मॉर्निंग, आपका प्रोग्राम और मौसम दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं आज। अरे वाह क्या बात है। और सर ने एक ट्राई की रिक्वेस्ट भेजी है भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है। अरे वाह अच्छा ही लगेगा ना सर इस सुहाने मौसम में। और ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं अमित कुमार वर्मा जी हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं शमशाद अली जी ग्राम खीर खाता जिला मुरादाबाद से। और अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर अच्छा बारिश हो रही है रुक गई है ओके। ललिता जी कहती हैं कि मैम अब बारिश रुक गई है। तो चलिए ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं ललिता जी की रिक्वेस्ट पर और मैं लौट कर आने वाली हूँ वापस एक मजेदार क्वेश्चन के साथ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाली हूँ आज की सुबह, आप सब तैयार हो जाइएगा। तब तक गाने एंजॉय करो। और हाँ अगर इस समय राइट नाउ क्या कर रहे हैं आप, कुकिंग कर रहे हैं या फिर बस आराम से बैठे हैं, इस सुहाने से मौसम में क्या कर रहे हैं जरा बताइए हमें।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर, मुरादाबाद।

म्यूजिक मस्ती और एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आती है आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे, जहां गाने तो बजते हैं लेकिन पसंद होती है आपकी। यस, अगर आप भी कोई गाना सुनना चाहते हैं, अपनी पसंद का ही किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं, तो मुरादाबादीज अब बनाइए अपनी मॉर्निंग को और भी मसालेदार विद आरजे खुशी मंडे टू सैटरडे हर रोज सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए, क्योंकि जब ये आती है तो हर कोई दिल से गाता है।

0: गुड मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6 और मैं आपके साथ आपकी खुशी। अभी आपने ये प्यारा सा ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी सत्यमेव जयते 2 से एंड जुबिन नौटियाल जी की बहुत ही खूबसूरत आवाज, साथ में नीति मोहन जी दे रही थी साथ। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं आज की मॉर्निंग, एंड उससे पहले यहाँ पर हमारे पास कुछ मैसेज आए हैं, उनको भी हम जल्दी से शामिल कर लेते हैं। एंड एक वॉइस नोट भी आया है, क्या पहुँचाया है हमारे लिसनर ने, सुन लेते हैं उनकी आवाज।
1: गुड मॉर्निंग खुशी दी, कैसे हो आप? मैं आपकी दोस्त अफरोज फातिमा कुछ लाइनें लेकर आई हूँ। नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है, नई सुबह नई उम्मीद का पैगाम लाई है। हवाओं ने भी आज खुशियों की खुशबू सजाई है। मुस्कुराकर शुरू करो आज का दिन, मुस्कुराकर शुरू करो आज का दिन, क्योंकि जिंदगी ने एक और खूबसूरत सुबह दिखाई है, क्योंकि जिंदगी ने एक और खूबसूरत सुबह दिखाई है। ये मुझे एक सॉन्ग सुनना है, ये दोस्ती तेरे दम से है, साथ में मेरी बेस्टी लाइबा, मेरी सिस्टर नजमा, दरक्सा, राबिया, रुकैया, आसिया, रामपुर से है सबनम भी दी। आपको और सभी दोस्तों को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू डियर, मैं अफरोज फातिमा।
0: मोस्ट वेलकम, आई एम गुड एंड थैंक यू सो मच। आपने एडवांस में सभी को रक्षाबंधन विश किया उसके लिए। और हमारे पास यहाँ पर और मैसेज आए हैं, मैं उनको भी शामिल करती हूँ। एंड हमारे पास यहाँ पर मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग खुशी जी, आपको फिर से प्रोग्राम में सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपकी आवाज़ और प्रेजेंटेशन हमारी अच्छा, ये कहते हैं कि हमेशा की तरह हमारे दिल को छू जाती है और आज का शो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। थैंक यू सो मच। ये मैसेज हमें पहुंचाते हैं इटली से आसिफ जी, और इन्होंने एक प्यारे से गाने की रिक्वेस्ट भी हमें भेजी है। फूल में भेजू दिल ये करता है पर तेरा पता मालूम नहीं, ये ट्रैक सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास आया जिला अमरोहा नई बस्ती पते खालसा से बहारुल हसन सिद्दीकी जी का, नेक्स्ट मैसेज हमारे पास आए हरे कृष्णा राम गोपाल गुप्ता जी का बुद्धि बिहार से, आपको भी हरे कृष्णा सर। एंड अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठलाल जी का, आपको जय श्री कृष्णा राधे राधे, आपको भी राधे राधे। प्रेम रोग मूवी का एक ट्रैक सुनना चाहते हैं सर, बिल्कुल सुनवाएंगे आपको। और हाँ दोस्तों, आज की सुबह मैं एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, बहुत ही सिंपल सा है और मुझे पता है कि आप भी सबरी से इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपसे मालूम कर ही लेते हैं। दोस्तों सपने भी बड़े और कमाई के मौके भी बड़े, बताइए दोस्तों भारत में सपनों और पैसों की नगरी किसे, किस शहर को कहा जाता है? जी हाँ, सपने भी बड़े और कमाई के मौके भी बड़े, है ना? तो बताइए दोस्तों भारत में सपनों और पैसों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? जल्दी से अपने जवाब हमें पहुंचाएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। जब तक आप अपने संदेश हमें पहुंचाते हैं तब तक हम आप तक पहुंचाते हैं एक शानदार सा गाना जो इंतजार कर रहा है।

0: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
0: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। और दोस्तों, मुश्किल की घड़ी में पड़ोसी का साथ, यही तो इंसानियत होती है ना। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बाद राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत ने मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी है। एंड भारतीय वायुसेना का C-130J विमान करीब 10 टन जरूरत राहत सामग्री और आवश्यक दवाइयां लेकर नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच चुकी है। इस मुश्किल वक्त में भारत ने नेपाल के लोगों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, क्योंकि पड़ोसी सिर्फ सीमा से नहीं मुश्किल वक्त के साथ खड़े होने से भी पहचाना जाता है।

तभी तो हम गर्व से कहते हैं ना कि हम इंडियन हैं। और दोस्तों बस हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी को हिम्मत दें और सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। और सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत, उसके बाद मैं लौट कर आती हूँ। तब तक आप कहीं मत जाइए, यूं ही मुस्कुराइए।

0: आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम आपको बताते हैं ना, हमारा एड्रेस है फिर मुरादाबाद 89.6, यही हमारा, यू नो, आप आएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा एफ एम मुरादाबाद, एंड आप किसी से भी कंफर्म करेंगे तो सीधा आप हमारे स्टूडियो पहुंच सकते हैं। वक्त हुआ है 11:55 और आज की मॉर्निंग मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था आपसे, याद है आपको या भूल गए आप? बहुत सारे श्रोता तो बोल रहे हैं कि मैम हमें तो याद है और हम सही जवाब के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन कुछ लिसनर अभी भी कंफ्यूज हैं। मैं एक बार फिर से बताती हूँ आपको, देखिए दोस्तों, सपने भी बड़े और कमाई के मौके भी बड़े, है ना? बताइए दोस्तों, भारत में सपनों और पैसों की नगरी किस शहर को कहा जाता है, कौन सा वो सिटी है? जल्दी जल्दी से बताइए। और आज मुरादाबाद के मौसम की अगर बात करें ना एवरीवन, तो आज आसमान में बादलों का डेरा है और बारिश के भी आसार बने हुए हैं। तापमान रहेगा सुहाना सुभावना, लेकिन मौसम को देखते हुए घर से निकले ना तो छाता साथ रखना ना भूले, यानी आज मौसम का मूड है कभी बादल तो कभी बौछार। ओके, और आज के हमारे शो के लकी विनर कौन बने हैं जरा हम बता देते हैं आपको, लेकिन उससे पहले जोरदार तालियां भी तो हो जाएं। तो ये जोरदार तालियां हैं आज के हमारे जो लकी सुपरस्टार बने हैं, और उनका नाम भी हम अनाउंस कर देते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमें सही जवाब पहुंचाया है नवीन नगर मुरादाबाद से ललिता कश्यप जी ने, और ये कहती है कि मैम जिस सिटी के बारे में आपने बात की है उस सिटी का नाम है मुंबई। एग्जैक्टली राइट आंसर मुंबई है। ये जोरदार तालियां आपके लिए ललिता मैम, एंड बहुत बहुत बधाइयां आपको। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से रिशाद हुसैन अंसारी जी का, एंड साथ में शहीद शारिक अली जी हैं, महराज अंसारी जी हैं, बाबू अंसारी जी हैं। गुड मॉर्निंग खुशी जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। और ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं, राइट आंसर है मुंबई। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर अफरोज फातिमा जी का आया है, और ये भी कहते हैं कि पैसों की नगरी और सपनों की नगरी मुंबई को कहा जाता है। रुकैया भी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेक्स्ट मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है रणवीर सिंह जी का मुरादाबाद से, ये भी सही जवाब के साथ जुड़े हैं। अगला मैसेज हमारे पास यहाँ पर आया है बबली अंजान जी का, और ये भी सही जवाब के साथ जुड़ी हैं, मुंबई राइट आंसर। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाइयां आज के आपके हमारे शो के बने लकी स्टार तो बनी है भैया ललिता जी, लेकिन हाँ आप सबने भी मेहनत की है, दिमाग खर्च किया है इतना, तो आपके लिए भी जोरदार तालियां हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सबने आज की मॉर्निंग पार्टिसिपेट किया। और अभी मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति, मैं मुलाकात करूंगी आपसे सी यू सून 3 से 5। वैसे जाने का मन तो नहीं करता है हमारा, लेकिन जाना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन हाँ दोस्तों, वक्त भले ही गुजर जाए लेकिन आपकी मोहब्बत और ये खूबसूरत साथ हमेशा दिल के करीब रहेगा। इसी मुस्कान के साथ आज की, मतलब अभी के लिए दीजिएगा मुझे जाने की अनुमति। आपकी अपनी आरजी खुशी, और याद रखिए जहाँ खुशियाँ बांटने वाले दिल हो वहाँ हर दिन और खूबसूरत होता है। फिर मुलाकात होगी, फिर बातें होंगी, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: उत्तर प्रदेश अब निवेश प्रदेश के रूप में बना रहा है अपनी पहचान।
4: चौथे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से बढ़ेगा प्रदेश का मान।
3: इस महामंच पर 80 से अधिक देशों के 550 अंतर्राष्ट्रीय खरीदार होंगे शामिल।
4: ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर इन मार्ट में 25 से 29 सितंबर तक होने वाले इस आयोजन में व्यापार के साथ दिखेगी यूपी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। तो आइए, जुड़िए और बनिए यूपी की सक्सेस स्टोरी का हिस्सा।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: खांसी हो लगातार, मत करना इंतजार, समय पे जांच करवाओ, टीवी को दूर भगाओ, सेहत सही लाभ कई। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी। साथियों, अगर आप हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद कि हम पहले भी
1: तब भी गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें लगा कि अब नौकरी नहीं रही इसलिए शरीर सुस्त रहता है। परिवार वालों ने भी यही सोचा कि उम्र का असर है। ऐसे करते करते लगभग 2 महीने निकल गए। फिर एक दिन उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कुछ जांचें लिखी, एक्सरे हुए, बलगम की जांच हुई, फिर रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर पता चला कि सरला देवी को टीबी है। जब उन्होंने यह सुना तो सबसे पहले यही कहा, काश मैंने पहले जांच करवा ली होती।
0: सच कहूं टीकन भाभी, ये कहानी सुनकर लगता है कि सरला देवी अकेली नहीं है। हमारे आसपास ऐसे बहुत लोग होंगे जो लगातार कमजोरी, वजन घटना, बुखार या खांसी को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद यही वजह है कि बीमारी बढ़ जाती है। लेकिन अब एक बुनियादी सवाल पूछना जरूरी है। हम बार बार टीबी का नाम ले रहे हैं, लेकिन आखिर टीबी है क्या?
1: देखिए खुशी, टीबी एक संक्रमण बीमारी है जो माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस के नाम के जीवाणु से होती है। यह आमतौर पर फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन हड्डियों, लिम्फ नोड्स, किडनी और दिमाग जैसे अन्य अंगों में भी हो सकती है। इसीलिए टीबी को सिर्फ खांसी की बीमारी समझना सही नहीं है।
0: लेकिन भाभी, लोग तो टीबी का नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्या हर बार टीबी मरीज दूसरों में बीमारी फैलाते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी 2 तरह की हो सकती है। एक लेटेस्ट टीबी, जिसमें शरीर में कीटाणु होते हैं लेकिन वो सक्रिय नहीं होते, ऐसे व्यक्ति को कोई लक्षण नहीं होते, वह बीमारी नहीं फैलाता। दूसरी एक्टिव टीबी, जिसमें कीटाणु सक्रिय होकर बीमारी पैदा करते हैं। फेफड़ों को एक्टिव टीबी दूसरों तक फैल सकती है।
0: तो ये फैलती कैसे है?
1: जब फेफड़ों की टीबी वाला व्यक्ति खांसता, छींकता, बोलता या गाता है तो हवा में बहुत छोटे छोटे कण फैलते हैं। इसे सांस के साथ अंदर लेने पर संक्रमण हो सकता है।
0: साझा करने से टीबी फैल जाती है?
1: यह पूरी तरह गलतफहमी है। टीबी हाथ मिलाने, साथ खाना खाने, बर्तन साझा करने, गले मिलने या सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करने से नहीं फैलती। इसीलिए मरीज से दूरी नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है।
0: इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
1: अगर 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहे, बार बार बुखार आए, रात में पसीना आए, वजन घटे, भूख कम लगे, कमजोरी महसूस हो, सीने में दर्द हो या बलगम में खून आए तो तुरंत टीबी की जाँच करानी चाहिए।
0: क्या भारत में आज भी टीबी बड़ी समस्या है?
1: भारत ने अच्छी प्रगति की है। 2015 से 2024 के बीच नए टीबी मामलों में लगभग 21% और टीबी से होने वाली मौतों में लगभग 28% की कमी आई है। लेकिन आज भी कई लोग देर से जांच करवाते हैं, इसीलिए जागरूकता और समय पर जांच बेहतर जरूरी है।
0: क्या कुछ लोगों में टीबी का खतरा ज्यादा होता है?
1: जी हाँ, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, HIV और डायबिटीज से प्रभावित लोग, कुपोषित व्यक्तियों, भीड़ भाड़ वाले घरों में रहने वालों और टीबी मरीज के करीबी संपर्क में रहने वालों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। और याद रखिए, अगर घर में एक व्यक्ति को टीबी है तो पूरे परिवार की जांच जरूरी है।
0: यानी अगर परिवार में किसी को टीबी है तो ये सोचकर नहीं बैठ जाना चाहिए कि बाकी सब ठीक, पूरा परिवार सतर्क रहे, यही समझदारी है। लेकिन अब आते हैं आज के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को लगातार खांसी, बुखार या वजन कम होने जैसे लक्षण हैं, तो डॉक्टर आखिर कैसे पता लगाते हैं कि उसे सचमुच टीबी है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। कई लोग आज भी सोचते हैं कि डॉक्टर सिर्फ लक्षण देखकर कह देते हैं कि टीबी है या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। टीबी की पुष्टि नियुक्ति हमेशा जांच के आधार पर की जाती है। यही कारण है कि स्वास्थ्य विभाग बार बार कहता है लक्षण हो तो जांच करवाइए। और अच्छी बात यह है कि राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTIP के तहत सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में TB की जाँच पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है।
0: तो सबसे पहले कौन सी जाँच की जाती है?
1: सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जांच बलगम की जांच। जब किसी व्यक्ति को लगातार खांसी होती है तो उसके बलगम का नमूना लिया जाता है, फिर प्रयोगशाला में माइक्रोस्कोप की मदद से देखा जाता है कि उसमें टीबी की जीवाणु मौजूद है या नहीं। यह जांच वर्षों से टीबी पहचानने में मदद करती है और आज भी महत्वपूर्ण है।
0: CBN, AAT और TuneIn जैसे नाम भी दें, कई श्रोताओं को शायद समझ नहीं आता कि ये क्या होता है।
1: बिल्कुल, ये आधुनिक तकनीक पर आधारित है, मॉलिक्यूलर टेस्ट है। इसकी खासियत यही है कि ये काफी जल्दी परिणाम दे सकते हैं और केवल यह नहीं बताते कि टीबी है या नहीं, बल्कि कई मामलों में यह भी पता लगा सकते हैं कि कई बीमारी सामान्य दवाओं के प्रति प्रतिरोधी यानी

0: ड्रग रजिस्ट्रेट तो नहीं, यही जानकारी डॉक्टरों को सही इलाज चुनने में मदद करती है। आज देश भर में ऐसी जांच सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि लोगों को समय पर सही निदान मिल सके।
1: और एक्स-रे की क्या भूमिका होती है? क्यों जब भी लोग लंबे समय तक खांसते हैं, डॉक्टर अक्सर छाती का एक्स-रे लिख देते हैं?
0: बिल्कुल सही, छाती का एक्स-रे टीबी की जांच में बहुत उपयोगी है। कई बार स्क्रीनिंग के दौरान एक्स-रे में ऐसी बदलाव दिखाई देती है जैसे टीबी की ओर संकेत करते हैं। फिर डॉक्टर आगे की पुष्टि के लिए अन्य जांच करवाते हैं। यानी एक्स-रे बीमारी की ओर इशारा करने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। और अगर डॉक्टर को संदेह हो कि मरीज को दवा प्रतिरोधी टीबी हो सकती है, तब और भी विशेष जांच की जरूरत होती है, जैसे कल्चर और दवा संवेदनशीलता का टेस्ट। इसमें यह पता चलता है कि कौन सी दवाएं मरीज पर प्रभावित होगी और इलाज किस तरह से आगे बढ़ाया जाए।
1: साथियों, बात बिल्कुल साफ है, अनुमान नहीं, जांच जरूरी है। खांसी तो घरेलू नुस्खों में महीनों ना उलझें, बल्कि सही समय पर जांच करवाएं। 2 हफ्तों की खांसी हो जाए, जांच बिना मत समय गवाएं। टीबी का इलाज है तैयार, समय पर जांच है सबसे बड़ा हथियार। टीकन भाभी, एक और बात जानना चाहूंगी, क्या सरकार सिर्फ उन लोगों की जांच करवाती है जो खुद अस्पताल पहुंचते हैं?
0: नहीं आरजे खुशी, अब टीबी नियंत्रण का तरीका काफी आगे बढ़ चुका है। पहले ज्यादातर मामलों में लोग खुद स्वास्थ्य केंद्र आते थे, लक्षण बताते थे और फिर उनकी जांच होती थी। इसमें हम पेसिव केस फाइंडिंग कहते हैं, लेकिन आज केवल इसी पर निर्भर नहीं रहा जाता, अब एक्टिव केस फाइंडिंग पर भी बहुत जोर दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य कर्मी खुद समुदाय तक पहुँचते हैं, गाँव बस्तियों दूर दराज क्षेत्रों और जोखिम वाले समूहों में जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाती है, ताकि जो लोग किसी कारण से अस्पताल नहीं पहुंच पाते, उनकी बीमारी भी समय रहते पकड़ी जा सके।
1: यानी अब स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ लोगों के आने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि खुद लोगों तक पहुंच रही है।
0: बिल्कुल, इसी सोच के साथ टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत करोड़ों संवेदनशील और जोखिम वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है, लाखों नए मरीजों की पहचान हुई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि बीमारी जल्दी पकड़ी जा रही है और मरीजों को जल्दी इलाज मिल रहा है।
1: टीकन भाभी, मान लीजिए घर में किसी एक सदस्य को टीबी हो गई, तब परिवार को क्या करना चाहिए? क्यों अक्सर लोग सोचते हैं कि इलाज तो मरीज करा रहा है, बाकी लोगों को ही क्या जरूरत है?
0: यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति को टीबी है, तो बाकी सदस्यों को भी जांच करवाना बेहतर जरूरी है। इससे संपर्क जांच या कॉन्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग कहा जाता है, क्योंकि जो लोग मरीज के साथ रहते हैं, खाते पीते हैं, दिन रात एक ही घर में समय बिताते हैं, उनके संपर्क में टीबी के जीवाणु आने की संभावना अधिक होती है। खासकर छोटे बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोग की जांच जरूरी होनी चाहिए। मैं तो हमेशा एक बात कहती हूँ, घर में एक व्यक्ति को टीबी हो तो पूरे परिवार की जांच जरूरी। यह छोटा सा कदम बीमारी को फैलने से रोक सकता है और कई लोगों की जान बचा सकता है।
1: लेकिन टीकन भाभी, मुझे लगता है कि टीबी की लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा आज भी डर है और शर्म। कई लोग बीमारी छिपाते हैं, जांच नहीं करवाते और दूसरों को भी बताते नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, टीबी का जीवाणु जितना खतरनाक नहीं है, कई बार उससे ज्यादा खतरनाक उससे जुड़ा सामाजिक डर बन जाता है। लोग सोचते हैं कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या कहेंगे, लोग दूरी बना लेंगे, रिश्ते पर असर पड़ेगा। लेकिन सच यह है कि टीबी कोई शर्म की बात नहीं, यह कोई पाप नहीं, यह कोई चरित्र की कमी नहीं, यह एक सामान्य चिकित्सकीय बीमारी है जिसका इलाज उपलब्ध है और लाखों लोग हर साल पूरी तरह ठीक भी होते हैं। इसीलिए बीमारी छिपाने की बजाय उसका सामना करना ज्यादा जरूरी है। समय पर जांच न करवाने का नुकसान सिर्फ मरीज को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समुदाय को भी हो सकता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। तो साथियों, आज की पूरी चर्चा से हम क्या सीख लेकर जा सकते हैं?
0: मैं चाहूंगी कि हमारे श्रोता, छह बातें हमेशा याद रखें। पहली, अगर खांसी दो

0: हफ्ते से ज्यादा रहे तो जांच जरूर करवाए। दूसरी बात, टीबी हवा से फैलती है, हाथ मिलाने या साथ खाना खाने से नहीं। तीसरी, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में टीबी की जांच और इलाज मुफ्त उपलब्ध है। चौथा, अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी है तो परिवार के बाकी सदस्यों की भी जांच करवाइए। और पांचवी, टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करे, उसका मनोबल बढ़ाए, क्योंकि इलाज में परिवार और समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है।
1: और मैं इनमें से एक छठी बात जोड़ना चाहूँगी। शुरुआत में आपने सरला देवी की कहानी सुनाई थी, उनकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? यही कि उन्होंने अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज किया। उन्होंने सोचा कि खांसी अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन बीमारी बढ़ती चली गई। इसीलिए अगर आपका शरीर बार बार कोई संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा मत कीजिए, समय पर जांच करवाइए, यही सबसे बड़ा बचाव है। तो आइए, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले हम सब लेते हैं मिलकर सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
0: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
1: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे, दूसरों को भी जागरूक करेंगे,
0: साफ सफाई स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके,
1: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे,
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे,
1: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
0: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
1: सेहत सही तो लाभ कई,
0: खांसी रहे दो हफ्ते से पार, जांच करवाना है समझदार, टीबी हारेगी हम जीतेंगे, इलाज पूरा करा के ही रुकेंगे।
1: श्रोताओं, मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। FM मुरादाबाद 89.6 सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
3: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6। मैं हूं आपका दोस्त RJ आनंद। और ऑफ कोर्स जब आप मुरादाबाद रेडियो सुनते हो तो यहाँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ होती है ढेर सारी जानकारी। और आज का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही स्पेशल है। आप सुन रहे हैं किसान भाइयों आपका फेवरेट प्रोग्राम खेती किसानी, और आज इस प्रोग्राम में एक खास विषय पे चर्चा करने वाले हैं।
4: और आज के किसान ज्ञान वार्ता के ताजा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में श्री अनिल कुमार सिंह जी। आप वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञ हैं, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में वरिष्ठ प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। और आज आप हमारे बीच मृदा को ऊर्जावान कैसे करें इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका हार्दिक स्वागत है।
5: स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
4: सर, सबसे पहले तो PMKSK के बारे में बताएं।
5: बिल्कुल, PMKSK के बारे में जो सभी को जानकारी भी ज्यादातर लोगों को है, लेकिन फिर भी और स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग जानकारी ये रखते हैं कि चलो एक ये बोर्ड लगा है, प्रधानमंत्री जी की फोटो है और ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की फोटो को आप इस तरह से न देखें कि वो प्रधानमंत्री जी की सिर्फ फोटो लगाई गई है, उसका कुछ तात्पर्य है, उसमें कुछ आपका लाभ है, तभी वो लगाया गया है। और क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा तो उनकी ओर से ही आदेशित है तो कि भाई PMKSK सुविधाएं मिले और जो लोग खेती करते हैं, किसानी करते हैं, उनको इसका लाभ हो सके, ऐसी सोच के साथ ये कार्यक्रम जो स्टार्ट किया गया। तो इसके अंतर्गत जो साथियों, जो भी खाद की दुकानें हैं या जहां पर खेती के आदान उपलब्ध होते हैं, उनको PMKSK का नाम दिया गया है। अब ये कार्य हुआ कैसे, इसमें भारत सरकार ने सोचा, और उन्होंने जो उनका जो कि जहाँ से ये खाद आते हैं उससे संबंधित जो लोग हैं उनको कहा गया और उन्होंने इसके बारे में मंत्रणा करके जितनी भी उर्वरक कंपनियां हैं उनको ये सलाह दी कि वो ये पीएम केयर्स के हैं इनको चिन्हित करें और वहाँ पर जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराएं। सुविधाओं में जैसे कि जहाँ पर ऐसे क्षेत्र हैं कि आसपास जो खेती ज़्यादा है या जहाँ पर जो अधिक किसान आते हैं वहाँ पर टीवी की सुविधा भी कराई जाए, चेयर की सुविधा कराई जाए, तो वहाँ पर साहित्य की सुविधा हो जिससे कि लोग आए और खेती के कोई कार्यक्रम भी उनको देखने तो वो उनको देख सकें और उसको जान सकें। तो सभी खाद कंपनियाँ जो कि उर्वरक कंपनियाँ हैं भारतवर्ष में उनको अलग अलग अलॉट किया गया कि इस क्षेत्र में आपने करवाना है, इस क्षेत्र में आपने करवाना है, इस क्षेत्र में आपने करवाना है। तो सारी कंपनियों ने इस तरह से पूरे भारतवर्ष में जो भी जो जो खेती के आदान की दुकानें हैं उनको पीएम केएसके के रूप में जो तैयार किया। अब ये जो पीएम केएसके हैं यहाँ पर इन कंपनियों की ओर से ही साहित्य उपलब्ध होता है, उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो भी अन्य आदान वाली कंपनियां हैं जैसे कि बीज है, कीटनाशक हैं, दवाइयाँ हैं, वो भी जब अपने उत्पाद जो मतलब जो है उनकी विक्री करते हैं तो उनका साहित्य उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा जो उनके कॉल सेंटर्स हैं उनके फ़ोन उपलब्ध होते हैं। तो जो जो वहाँ पे उनके टेक्निकल लोग हैं जो विशेषज्ञ हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने उत्पाद के बारे में ही आपको कहेंगे क्योंकि वो खेती के विशेषज्ञ हैं और उन्हें खेती की जानकारी होती है। तो इसके अलावा भी अगर कोई आप सलाह लेना चाहते हैं खेती से संबंधित तो वहाँ पर वो आपको उपलब्ध होती है। तो ये पीएम केयर्स के जो खेती के आधार है उनके साथ साथ सलाह के रूप में और सलाह में जो लोग शामिल हैं, साहित्य में जो लोग शामिल हैं वो आदान वाली जो सारी कंपनियां हैं वो शामिल हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है क्योंकि उनका काम ही ये है कि भाई खेती की जो जानकारियां हैं उनको लोगों तक पहुँचाएँ, किसानों तक पहुँचाएँ, उनकी समस्याओं को जो सुने और उनका सही समाधान उन तक उपलब्ध कराएं। तो कृषि विज्ञान केंद्र मतलब जो एक तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान है, आपके यहाँ से कोई समस्या उसको लेना, उसका समाधान ढूंढना और फिर वो समाधान आप तक पहुँचाना, मतलब इसका एक अंग्रेजी में शब्द है लैब टू लैंड और लैंड टू लैब। तो ये उनका काम है और इसको अब जो पीएम केएस के हैं उनकी ओर से भी इस काम को किया जा रहा है। तो मेरा अनुरोध यही है कि आप जहाँ से आदान जो मतलब उठाते हैं वहाँ जाएं तो उनसे इन चीज़ों की मांग अवश्य किया करें। और एक और जो सुविधा है मिट्टी के जांच की, मिट्टी की जांच के बारे में आप इनसे पूछें, कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी मिट्टी की जांच होती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से भी होती है और खाद कंपनियाँ भी मिट्टी की जांच जो फ्री में जो करती हैं या कराती हैं। हर कंपनी की अपनी लैब है, चंबल फर्टिलाइजर की भी अपनी लैब है, हमारी दो लैब है, एक जो कोटा में है जो हमारी फैक्ट्री पे है, एक आगरा में है, एक हमारी सचल लैब है जो कि गांव-गांव घूम के और जो मतलब ये आपके सॉइल आपके सैंपल इनको टेस्ट करती है। तो वो रोजाना एक गांव में जाके वहां से मिट्टी के नमूने आते हैं, किसान लेके आते हैं, वहीं पर उनकी जांच करते हैं और उसी दिन उनको वो रिपोर्ट उपलब्ध करा देते हैं। हमारी जो अन्य लैब है जो कि कोटा और आगरा में है वहाँ पर जो ये है कि आप सैंपल भेजेंगे, वहाँ जांच होगी और वो रिपोर्ट आप तक पहुँचाई जाएगी। उसके माध्यम एक तो ये होता है कि हमारा आदमी जो आपसे सैंपल लेके गया है आप तक रिपोर्ट लेके आएगा, रिपोर्ट देगा और आपको समझाएगा कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है और इसके क्या मायने हैं और अब आपको क्या करना है। दूसरा तरीका आजकल तो आपने देखा होगा कि फ़ोन है, तो फ़ोन नंबर अगर आपका उसमें होता है तो आपके फ़ोन पर भी वो रिपोर्ट उपलब्ध हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इनमें कोई खर्चा नहीं लगता है। दूसरा ये कि जब भी आप कोई सवाल पूछते हैं या सवाल जो मतलब सलाह लेते हैं तो उसमें कभी भी आप हिचके नहीं, क्योंकि कोई आपके ऊपर थोप नहीं सकता कि आप मेरी ये चीज़ ले लीजिए अगर आपको पसंद नहीं है। तो जब आप बातचीत करते हैं तो बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती हैं और जो चीज़ आपने पहले से सोची है शायद हो सकता है उसमें कुछ सुधार भी होता है। तो सवाल ज़रूर पूछें, राय जरूर लें, अगर आप ऐसा करेंगे तो खेती की बहुत सारी जो आपको लगता है कि आपके सामने कठिनाइयां हैं उनका वो आसान होगी और आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये पीएम केएसके के बारे में है और हम अन्य अंकों में भी जब भी वार्ता होती है तो पीएम केएसके के बारे में बताते हैं आपको। कभी कोई चीज ऐड हो जाती है तो कभी कोई शायद छूट भी जाती होगी, लेकिन समग्र रूप में आप यही जानें कि वहां पर आपको खेती के आदान और खेती के आदान के उपयोग, खेती में नए जो चीज़ें आ रही हैं उनकी जानकारी, आपकी खेती से संबंधित कोई समस्या है तो उसका समाधान, ये सारी चीज़ें एक जगह पर आपको भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है।
4: सर, प्रधानमंत्री का उर्वरकों के उपयोग के बारे में जो मैसेज है, आजकल बड़ी उसकी चर्चा है,
5: जी जी,
4: उसके बारे में थोड़ा हमारे श्रोताओं।
5: बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊं विनय जी कि उर्वरकों का सही समय पर और जो है मतलब सही तरीके से और सही मात्रा में उपयोग अगर होगा तो ही उनका हमें अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर हम उनकी मात्रा बहुत अधिक इस्तेमाल करें, सही ढंग से उनको इस्तेमाल न करें और सही समय पर इस्तेमाल न करें तो उनके हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन हमारा खर्चा उतना ही होता है और पर्यावरण को नुकसान भी होता है। तो प्रधानमंत्री ने इसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए आह्वान किया है सभी किसानों का कि वो जो ये उर्वरक है इनका उतना ही प्रयोग करें जितनी ज़रूरत है, देखा दाखी न करें, उसने इतने डाले तो मैं इतने डाल दूंगा, और उनका सही ढंग चुने इससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। तो उनके संबोधन जो है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वो जरूर किसानों को सुनवाए।
6: मैं किसान भाई बहनों को भी कहूंगा कि आपको भी मेरी मदद करनी होगी, और वो मेरी मदद है इतना ही नहीं, मेरे किसान भाई बहन आपकी भी मदद है, और वो है ये धरती माता को बचाना। हम धरती माता को अगर नहीं बचाएंगे तो यूरिया की कितने ही थैले डाल दे, ये धरती माँ हमें कुछ नहीं देगी। और इसलिए जैसे शरीर में बीमारी हो जाए तो दवाई भी हिसाब से लेनी पड़ती है, दो गोली की जरूरत है चार गोली खा लें तो शरीर को फायदा नहीं नुकसान हो जाता है, वैसा ही ये धरती माँ को भी अगर हम जरूरत से ज्यादा, पड़ोस वाला ज्यादा बोरी डालता है इसलिए मैं भी बोरी डाल दूं, इस प्रकार से अगर करते रहेंगे तो ये धरती माँ हमसे रूठ जाएगी। यूरिया खिला खिला करके हमें धरती माता को मारने का कोई हक नहीं है, ये हमारी माँ है, हमें उस माँ को भी बचाना है।
4: सर, ऊर्जावान मृदा से क्या अर्थ?
5: हाँ, ऊर्जावान मृदा, ऊर्जा से अर्थ ये होता है कि ऐसी जो ताकत जो हमारे काम आ सके उसे हम ऊर्जा कहते हैं। ऊर्ध्वगामी मतलब उठाव हो जिसमें, तो ये ऊर्जा से हमारा तात्पर्य है। तो जब हमारी खेत की मिट्टी ऊर्जावान मतलब जिसमें उठाव है और जो एक तरह से क्या है कि अगर उठाव है तो हमारी जो भी फसल हम लेने जा रहे हैं या जो खेती के कार्य कर रहे हैं उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उसको हम ऊर्जावान खेती बोलते हैं या ऊर्जावान मिट्टी बोलते हैं, खेत की मिट्टी। अब वह ऊर्जावान जो हमारी खेत की मिट्टी है वो है कि नहीं है, ये हम अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जो भी खेती के कार्य या जो फसल उगा रहे हैं वो सारे कार्य हमारे सुगमता से हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। जैसे हमने 100 बीज डाले और वो सारे बीज अगर हमने चेक करके या अनुमान लगाए बोले कि वो उगते हैं तो वो सारे उगे अच्छे से, उसके बाद जो पौधे का विकास होना चाहिए वो हुआ या नहीं हुआ, अगर उसमें कहीं रुकावट है तो कहीं ना कहीं खेत की ऊर्जा में कोई कमी है। सिंचाई का पानी अगर हम जब लगा रहे हैं तो उसे अच्छे से नीचे जाना चाहिए, खेत अच्छे से सोखे, लंबे समय तक नमी रहे, ये एक ऊर्जावान खेती का संकेत है। दूसरा, उसमें जो भी हमने फसल ली है उसका विकास तो मैंने आपको कहा ही कहा, जो ऊपर हमें दिखाई देता है लेकिन जो उसकी नीचे जो जड़ें हैं उनका विकास भी अच्छे से हो, क्योंकि उनका विकास अच्छा होगा, लंबा होगा, ज़्यादा फैलेंगी तो वो ज़्यादा जगह से भोजन लेकर जो पौधे को देंगी। और ज़्यादा जगह से पोषण का अर्थ ये है कि पौधे को ज़्यादा जो अधिक मात्रा में जो चाहिए उतना पोषण उसको प्राप्त होगा, तो ये एक ऊर्जावान उसका आपका संकेत है। दूसरा, ऊर्जावान अगर जो है अपनी खेत की मिट्टी है तो उसमें मित्र जीवों की संख्या काफ़ी होगी, उसमें खूब आपको केंचुए भी देखेंगे, गिजाई भी दिखेगी और ऐसे जीव दिखेंगे जो कि हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप ये पक्का मान के चलिए जो जीव नुकसान नहीं पहुंचा रहे वो आपके लिए फ़ायदे के हैं। वो कहीं ना कहीं वो कुछ मिट्टी को खोदेंगे, उसको पोला करेंगे, हवा भरेगी, ऑक्सीजन आएगी, पानी इकट्ठा होगा उसमें, कुछ खाएंगे तो वो फिर उसको निकालते भी हैं, वो एक जो है मतलब जो खाद के रूप में काम आता है। जब उनका जीवन समाप्त होगा तो उनके अवशेष हैं वो उसमें एक जो मतलब जो पोषण के रूप में काम करेंगे। तो ये सारा जो चक्र है ये ऊर्जावान खेती का या मतलब जो खेत की मिट्टी है उसका एक संकेत है कि हमारा खेत ऊर्जावान है और वो अच्छे से काम कर रहा है। और आप ये देखिए कि जब भी संकट का समय आता है उस समय पर वो सारी ऐसी क्रियाएं उसमें होती हैं जो कि संकट को एक तरह से संभालने का काम करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमारा खेत के अपने खेत की मिट्टी है वो ऊर्जावान है।
4: मतलब ऊर्जावान मिट्टी जो है वो बढ़िया खेती का आधार है।
5: आधार है, बिल्कुल आपने बिल्कुल सत्य बोला विनय जी।
4: तो सर मृदा को ऊर्जावान बनाने के लिए क्या किया जाए?
5: देखिए जैसे
4: पाद हैं सर।
5: हाँ बिल्कुल, देखिए वैसे तो जितने भी प्राकृतिक तरीके हैं वो सारे अपनाने चाहिए ऊर्जावान खेती के लिए। जैविक खाद डालें अच्छे से और फसल चक्र अपनाए, पानी का निकास अच्छे से रखे, जीव जंतुओं का संतुलन वहाँ पर बना रहे, ये ऊर्जावान खेती के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की सघन खेती के समय में बहुत सारे ऐसे उत्पाद भी आ रहे हैं जो कि ऊर्जावान खेती के लिए सहायक जो होते हैं। सहायक से अर्थ ये है कि जब वो खेत की मिट्टी में हम उनका इस्तेमाल करते हैं तो वो उसमें पानी रोकने की क्षमता है, इसके अलावा हवा के आवागमन की स्थिति है उसको जो अच्छा करते हैं, क्योंकि जब वो जाता है तो उसमें जो खास तरह के फंगस होते हैं जो कि लाभदायक फंगस, एक फंगस से होता है जिससे रोग आते हैं, हानिकारक होता है, लेकिन ये लाभदायक, इसको माइकोराजा भी बोलते हैं। तो वो जब खेत के अंदर जाते हैं तो जो जो ऐसे जो आपके पोषक तत्व जो कि फसल के काम नहीं आ रहे हैं उनको वो सक्रिय करके जो फसल को जो उपलब्ध कराते हैं। दूसरा, जो भी फसल आपने उगाई है उसकी जड़ों का विकास अच्छे से होता है तो वो ज़्यादा दूर से जाके भी अपना भोजन लेके आ सकती है। पानी रोकने की जो जो क्षमता होनी चाहिए उसमें जो अच्छी अच्छी होती है। तो जब ये सब चीज़ें इकट्ठी होती हैं तो हमारा जो हमारे खेत की मिट्टी है वो ऊर्जावान बनती है, और ऊर्जावान जब होती है तो हमें अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्ट है कि फसल अच्छी हो और उससे हमें उत्पादन अच्छा मिले, क्वालिटी का उत्पादन मिले, तो ये सारी चीज़ें उसमें संग्रहित हो जाती हैं। तो इसमें जैसे मैंने बोला कि माइकोराजा एक नाम का मतलब जो ये टेक्निकल नाम है, हर कंपनी इसको अलग अलग नाम से बेचती है, हमारी कंपनी का जो उत्पाद आता है उसका नाम है सुपर राइजा। सुपर राइजा एक उत्पाद है, ये जो मतलब पैकेट में मिलता है, 4 किलो की भी पैकिंग है, ज़्यादा बढ़िया भी है, और ये ग्रेनुल जो फॉर्म में होता है। तो ये उत्पाद है, इसका इस्तेमाल भी खेत को ऊर्जावान बनाता है।
4: तो सर उत्तम सुपर राइजा के बारे में हमारे श्रोताओं को?
5: बिल्कुल बिल्कुल, उत्तम सुपर राइजा जैसे मैंने आपको कहा कि ये माइक्रो राइजा है और इसके अंदर फंगस होता है खास तरह का जो खेत में जाके और अपने जो सर से जब उसकी उसको नमी मिलती है या उसको उस तरह का माध्यम मिलता है तो ये फैलता है और फैल के फिर वो सारे कामों में वो हेल्प करता है जो कि मैंने अभी आपसे जो कहा है। तो ये हमने खास तौर से एक लंबे अनुसंधान के बाद ये उत्पाद जो उत्पन्न किया है, आज के समय में इसकी काफी बिक्री हो रही है और इसका किसान काफी लाभ ले रहे हैं, बड़े अच्छे परिणाम इसके मिले हैं देखने को, जैसा कि माइको राजा। और जो खास तौर से बात ये होती है बने जी कि इस तरह के जो उत्पाद है ना, इनमें जीवंत चीजें होती हैं, तो अगर इनकी टेक्निकली इनको ढंग से बनाया जाए और उनका जो भंडारण है या जो भी चीजें हैं अच्छे से किया जाए तो वो लंबे समय तक रहती हैं।

0: और वो सक्रिय हो जाती है जैसे ही हम उनको खेत में डालते हैं। अगर इनको ढंग से न बनाया जाए या भंडारण न किया जाए तो फिर उनमें वो कहीं ना कहीं कमी आती है। तो चंबल फर्टिलाइजर ने बहुत ध्यान रखा है सुपर उत्तम सुपरवाइजर के बारे में। एक संस्था है टेरी करके, हाँ, तो ये जो है एक सामाजिक संस्था है लेकिन टेक्निकल भी ये करते हैं। तो इनके द्वारा अनुसंधान के बाद ये तैयार किया गया है और काफ़ी अच्छा उत्पाद है, लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्तम सुपरवाइजर के बारे में ये जानकारी मैंने आपको दी।
1: हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि उत्तम सुपरवाइजर का उपयोग किस तरह से किया जाए।
0: हाँ, उत्तम सुपरवाइजर जैसे मैंने कहा कि इसको खेत की मिट्टी में देना है, तो खेत की मिट्टी में देना है तो इसका सबसे उपयुक्त तरीका जो होता है वो ये है कि जब खेत की तैयारी हम कर रहे हैं, खेत में नमी है, खेत की तैयारी से अर्थ मेरा ये होता है कि फसल से जब आप जो फसल लगाने जा रहे हैं उससे पहले की जस्ट आप जो फिर एक दो बार और चलाते फिर आप सोइंग कर देते, बिजाई कर देते, उस समय पर इसका आपने प्रयोग करना है। और प्रयोग करने के लिए आप एक काम कर सकते, जैसे कि जो मैंने कहा कि एक एकड़ के लिए इसकी 4 किलो की मात्रा रिकमेंडेड है। अब 4 किलो आपको लगा कि एक एकड़ में मैं कैसे बखेरूं, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इसको किसी खेत की जो मिट्टी है उसी में आप ऐड कर लें और फिर बखेरें, लेकिन खेत में नमी है तो आपको तकलीफ होगी। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है या गोबर की खाद है उसमें आप इसको मिलाएं, एक दिन रखें और फिर उसको खेत में आप बिखेर दें, उसका और ज़्यादा फायदा होगा। उसका फायदा ये होगा कि जो गोबर की खाद है या कंपोस्ट की खाद है उसमें भी सूक्ष्म जीव हैं, वो भी सक्रिय हो जाते हैं और फिर जाके खेत में ये आपने जो अच्छे से बखेर दिए, समान रूप से बखेरे और फिर हल चला दें और फिर आप पाटा लगा देते हैं, फिर एक आध दिन बाद जब आपको बिजाई करनी हो तो बिजाई करें। तो ये जैसे ही आपने ये जो प्रक्रिया पूरी करी, खेत में जाता है, फिर इसके अंदर जो माइक्रोराजा है वो पूरे खेत में फैलते हैं और एक जो ऊर्जावान माध्यम खेत के अंदर वो तैयार कर देते हैं। तो जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे उर्वरक अगर फसल द्वारा इस्तेमाल नहीं हुए तो वो फिक्स हो जाते हैं, फिर वो काम के नहीं रहते, तो उनको भी अनफिक्स करके काम में लेके आने के रूप के लिए भी ये सक्रिय रहता है और काम करता है। तो मतलब उनको सक्रिय करता है और उनको फिर जो फसल जो कि अब तक जो फसल को नहीं मिल पा रहे थे उनको सक्रिय करके फसल के लिए जो एक तरह से उपलब्ध कराता है। इसके अलावा पानी रोकने की क्षमता है वो, उसमें वृद्धि होती है, हवा का आवागमन है उसमें वृद्धि होती है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो जो पौधे की जड़ें हैं उनका विकास बहुत तीव्रता से और काफ़ी दूर तक होता है, नीचे तक भी जाती है और साइड में भी जाती है। अक्सर हम बोल देते हैं कि भाई नीचे तक चली गई, लेकिन वो साइड में भी उसके पोषण होता है। अगर वो जगह खाली रहेगी, वहाँ तक जड़ नहीं पहुँची, तो वहाँ जो पोषण है वो पौधे को उपलब्ध नहीं होता। तो ये इस तरह से माध्यम बना के जो पौधों की जो जड़ें हैं उनका विकास करता है, ज़्यादा पोषण लेती हैं, फिर वो ऊपर जो है आपका जो पौधा है उसमें संचारित होता है, तो उसका जो तना है, उसकी जो शाखाएं हैं, उसकी जो पत्तियां हैं, वहाँ तक वो पोषण पहुँचता है और फसल का अच्छे से विकास होता है। अच्छे से विकास होता है तो उसमें फूल भी अच्छे लगते हैं और फिर अंतोगत है जो हमें उत्पादन चाहिए उसकी जो मात्रा अधिक होती है और आपको लाभ होता है।
1: सर, उत्तम सुपरवाइजर के उपयोग से फसलों को क्या लाभ हो रहा है?
0: हाँ, फसलों को क्या लाभ, तो ये मैंने उपयोग मैंने कुछ थोड़ा सा आपको ये भी बता दिया क्या इससे लाभ होता है। उनकी जो जड़ों का विकास अच्छा होता है और फिर जब उनका विकास अच्छा होता है तो वो जो खेत के अंदर जो आपके पोषक तत्व हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ले पाती हैं और वो अपने पौधे को ट्रांसफ़र करती हैं। जब पौधे को ट्रांसफ़र करती हैं ऊपरी भाग को तो उसका तना अच्छा होता है। और एक चीज़ बता दूं, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाएँ होती हैं, ऐसे पौधे के अंदर भी भोजन वाहिकाएँ होती हैं, जाइलम फ्लोएम बोलते हैं उनको, उनका विकास अच्छा होता है, स्वस्थ रहती हैं, साइज बड़ा होता है। तो जब उनका साइज बड़ा होता है तो जो पौधे में भोजन लेने की 2 प्रक्रिया है, एक फोटोसिंथेसिस है और एक रूट जोन से होती है। तो जो ऊपर से आ रहा है उसको नीचे पहुंचाती है, नीचे से आ रहा है उसको ऊपर पहुंचाए जाल में, तो मतलब एक तरह सर्कल बन जाता है। जब ये सर्कल बनता है तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होता है और स्वस्थ पौधा जो एक तरह की ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसको स्ट्रेस बोल देते हैं, जो अनुकूल नहीं होती फसल के लिए, उनको सहने की उसमें ताकत होती है। जैसे लंबे समय तक शायद पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो वो सह लेगा, अगर लंबे समय तक टेम्परेचर ज़्यादा रहा तो वो सह लेगा, या जो पानी ज़्यादा हो गया उसको सह लेगा। मतलब जितनी भी स्ट्रेस की कंडीशन है, जो स्थितियां अनुकूल नहीं है, उनको सहने की ताकत पौधे में बढ़ जाती है। जिस जगह माइकोराइजा या उत्तम सुपरराइजा प्रयोग नहीं हो सकता है, उसके अगेंस्ट जहां आपने सुपरराइजा उपयोग किया है, अगर स्ट्रेस कंडीशन आती है तो जहां उपयोग किया है वो फसल ज़्यादा स्वस्थ और ताकतवर दिखेगी आपको, और वहाँ उत्पादन भी ज़्यादा मिलेगा, और जहाँ नहीं किया वहाँ पर ऐसा नहीं होगा, वहाँ फसल उसको सह नहीं पाएगी जो जो उसके अनुकूल नहीं है परिस्थितियाँ। तो इस तरह से ये जो आपकी जो हर फसल को लाभ करता है, विशेषता ये है कि किसी खास फसल के लिए इसको नहीं कह सकते। कोई भी फसल आप ले रहे हैं, चाहे फल है, अनाज है, सब्जी है, कोई भी है, हर एक में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ माध्यम जो खेत की मिट्टी है, खेत की मिट्टी में जो भी फसल लगा रहे हैं उस फसल में आप उत्तम जो सुपरनाइजा का प्रयोग करें और इसका जो लाभ लें।
1: सर, हमारे श्रोताओं को, किसान भाइयों को, वे क्या सावधानियां बरतनी चाहिए
0: जी,
1: जिनसे उत्तम सुपरनाइजा का उपयोग करते समय बरता जाए और अधिकतम लाभ लिया जाए?
0: हाँ बिल्कुल, देखिए अधिकतम लाभ लेने के लिए जो मैंने इसके उपयोग का सही तरीका आपको बताया कि खेत की तैयारी के समय आप डालें, और अधिकतम लाभ का फायदा लेने के लिए गोबर की सड़ी हुई खाद के साथ, जो कि करीब करीब 6-1 महीने की सड़ी हुई हो, वो आप निकाल लें, थोड़ा सा उसको हवा लगा लें और उसमें इसको ऐड करके ढक के रख दें, और जब आप ढक के रख देंगे, जो थोड़ा समय देंगे, तो जो इसके अंदर जो माइकोराइजा है वो पूरे में फैल जाएगा, तो जो 4 किलो है वो हो सकता है 50 किलो उसकी मात्रा हो जाए, तो वो जब फैलेगा पूरे खेत में तो वो अच्छे से होगा। तो ये सबसे पहली सावधानी ये रखिए कि इसको गोबर की खाद में अगर आप जो मिला के इसको फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको लाभ होगा, और खेत की तैयारी के समय आप इसको डालिए। कभी कभी ये होता है कि खेत की तैयारी के समय हम इसका इस्तेमाल जो नहीं कर पाए, तो लोग बहुत से उर्वरकों के साथ मिला के इसको डालते हैं, हालांकि ये तरीका सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब इसको डालेंगे तो लाभ इसका भी मिलेगा, लेकिन अधिकतम लाभ जो मैंने आपको जो शुरुआत की वो कही है उसी से ही मिलेगा। और सावधानी यही रखें कि इसको जब खेत में डालें तो नमी अच्छी हो, और अगर इसको आपने इस्तेमाल किया है उसके बाद हल्का पानी लगा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। शाम के वक़्त डालें, शाम के वक़्त, जिससे कि फिर सूरज का ताप कम हो जाता है, रात भर थोड़ी नमी रहती है, कभी कभी ओस भी पड़ती है, और ठंडे मौसम में वो उसको सही तापमान जो मिलता है उसका अच्छा प्रभाव होगा और वो अच्छे से फैल सकेगा। लेकिन अगर आप उच्च तापमान में इसका प्रयोग करेंगे तो उतने सार्थक परिणाम नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ मूलभूत सावधानियां हैं जिनको रख के इसके अधिकतम लाभ लिए जा सकते हैं।
1: सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और हमारे किसान भाइयों को बताया कि अपने मृदा को ऊर्जावान कैसे करें, और उसके लिए एक उपयुक्त उत्पाद भी आपने सुझाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी श्रोताओं नमस्कार। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बाय बाय।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: हाय नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो पर, जाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और आप सभी को पता है कि हम आप सभी के लिए शो लेकर आ गए हैं सोच बदलो, जो कि अक्सर आप आनंद को और प्राची को ही सुनते थे, लेकिन आज रीना, खुशी और प्राची भी आप सभी के साथ है। हम ढेर सारी बातें करने वाले हैं सोच बदलो शो में। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है सोच बदलो, और आज का सवाल है क्या आज के बच्चे पहले जैसे नहीं रहे या फिर उन बचपन बदल गया है। तो ये क्वेश्चन मैं सबसे पहले, यानी कि देखिए अब बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो मतलब जो हमारा बचपन था और आजकल के बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पैम्पर किया जाता है। उनको अगर मतलब थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना तो मम्मी पापा बोलते हैं यार धूल लग गई, इनको साफ करो जल्दी जल्दी, कीटाणु लग गए हैं। लेकिन हमारे टाइम में क्या होता था, हम कितने धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, लेकिन मम्मी फिर भी यही बोलती थी अरे और खेलो कोई दिक्कत नहीं। ये हमारी धरती माँ है और धरती माँ के गोद में तो हमें खेलना ही चाहिए। तो प्राची मैं तुमसे बोल पूछना चाहूंगी कि तुम क्या कहना चाहोगी।
3: बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि पहले जो बच्चे होते थे वो गली मोहल्लों में खेला करते थे। जैसे कि आपने बताया कि हम सबका बचपन ऐसे बीता है और हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें वो सारी चीजें मिली जो शायद आजकल के बच्चे मिस कर रहे हैं। पेड़ों पर चढ़ना, और फिर हम जो लोग हार जीत हमारी रहती थी खेल में, और फिर हम लोग मम्मी के पास जाते थे कि इसने मुझे मतलब मैं हार गया, तो मतलब मम्मी हमें समझाती थी हमारी मम्मी कि हार जीत तो होती ही रहती है खेलों में। तो वो सारी चीजें, नेचर के साथ जो हमारा लगाव था वो आजकल पूरी तरह से ऐसा लग रहा है कि मिस हो चुका है। एक तो हम देख रहे हैं कोविड टाइम आया, और भी बहुत सारी ऐसी पैंडेमिक होती ही रहती है। अब तो एक तरह से हर वक्त एक नया दौर आ जाता है, हर साल कोई नई चीज ऐसे आ जाती है जिससे जो है हमारे बच्चों के अंदर, इवन हम बड़ों के अंदर भी ये रहता है, मतलब वो हम सोचते हैं और अपने घरों में हम एक तरह से क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने बच्चों को। और नेचर से बच्चों का ही नहीं, हम सबका जो अटैचमेंट है वो बहुत कम होता जा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक कह सकते हैं हम चिंता का विषय है। खुशी आपको क्या लगता है?
4: थैंक यू सो मच प्राची, आपने मुझे भी इन्वॉल्व किया। एंड आज के बच्चे, उनके पास तकनीक है, जानकारियां हैं, लेकिन क्या कहीं बचपन की वो सादगी, धैर्य और प्रकृति से जुड़ाव कम होता जा रहा है? दोस्तों देखिए, पहले के टाइम में ऐसी कोई भी सोशल मीडिया, कोई ऐसी तकनीक नहीं थी, ना मोबाइल था, ना हमारे पास कोई इंटरनेट की ऐसी सर्विस थी। एंड पहले के टाइम में क्या होता था कि देखिए, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते थे बहुत ज्यादा, वो तो ऑलरेडी करते ही हैं, लेकिन पहले के बच्चों में धैर्य था, पेशेंस था, लेकिन आजकल के बच्चों में वो पेशेंस ही नहीं है। उनको अगर कोई चीज चाहिए तो मतलब चाहिए ही, उनको ये नहीं है कि उनको पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आज के बच्चों में पेशेंस नहीं, लेकिन पहले के बच्चों में बहुत ज्यादा पेशेंस होता था। अगर फैमिली बोलती थी कि शाम को तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आएंगे, तो बच्चा इंतजार करता था कि शाम को पापा आएंगे, चॉकलेट लेकर आएंगे, कितना खुश होते थे। और प्रकृति से जुड़ाव आजकल के बच्चों में कितना कम हो गया है। बस बच्चों को आजकल के क्या चाहिए, एक मोबाइल, एक रूम, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं लेना, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है कुछ नहीं। लेकिन पहले के टाइम में प्राची, हमारा और आपकी बचपन के टाइम की अगर हम बात करें, तो हम पहले कितना प्रकृति से जुड़ते थे। सुबह सुबह बाहर खेलने जाया करते थे, मॉर्निंग वॉक किया करते थे, एक्सरसाइज किया करते थे। एंड आजकल ये सब चीजें कितनी कम हो गई ना, एक्टिविटीज। बच्चे लेट नाइट सोते हैं आजकल के, और जब लेट नाइट सोएंगे तो फिर लेट नाइट उठेंगे। बाकी हम प्राची से भी जानते हैं, प्राची आप क्या कहना चाहते
3: हैं? बिल्कुल खुशी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को बस आजकल फोन चाहिए, और फोन ने जो उनके अंदर एक चीज उनके अंदर ये इवॉल्व हो गई है नई, कि उन्हें हर चीज एकदम चाहिए, एकदम क्विकली। उनके अंदर वेट और पेशेंस जैसी चीजें बहुत कम हो रही है। आप देख सकते हो जैसे कि डिलीवरी सर्विसेज जब से आ गई है, होम डिलीवरी सर्विसेज, तो बच्चों को क्या है कि अभी ऑर्डर किया है तो मुझे अभी 2 मिनट में पिज्जा चाहिए, मुझे 2 मिनट में ये सामान चाहिए, ये ब्रिंग इट से। तो आजकल हमारी जनरेशन के बच्चों में पेशेंस बहुत कम हो गया है। इवन यंग यंगस्टर्स में भी, और ये वो चीज है लाइफ में पेशेंस जो एक हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है हम ह्यूमन बींग्स की, जिसके बिना मुझे लगता है हम सब अधूरे हैं, और ये हमें अपने अंदर जरूर इनकल्केट करने की जरूरत है।
2: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन एक बात और है, पहले के बच्चों के पास शायद इतने खिलौने नहीं थे लेकिन कल्पनाएं बहुत थी, वो मिट्टी में खेलकर भी खुश हो जाते थे। और पता है जब आजकल ना हर चीज है आपके पास, जो भी आप चीज चाहो कि ये वाला खिलौना मेरे पास होना चाहिए तो वो आपको मिल जाता है। पहले के टाइम में ये सब चीजें नहीं होता था, हम मिट्टी से बर्तन बनाते थे, मिट्टी से खिलौने बनाते थे, तो उससे खेलते थे और उसमें ना एक अपनापन होता था। हम जैसे सारे बच्चे मोहल्ले के बच्चे ना एक साथ एक बैठ जाते थे और सब मिट्टी अपने अपने घर से लेके आते थे, उसको अच्छे से गूंथते थे, अच्छे से मतलब मिट्टी बनाने के बाद फिर उसके बर्तन बनाते, फिर उसका इंतजार करते थे सूखने के लिए।
3: आजकल आपको पता है बच्चों को ये नहीं पता होता आजकल हमें कि हमारी साइड में कौन रह रहे हैं, है ना, हमारे नेबरहुड में कौन कौन लोग रहते हैं, कुछ नहीं पता है हमें। बहुत अकेलेपन और एक फोन की डिजिटल दुनिया में हमको,
2: तो क्या होता था वो सूखने के बाद ना हम उसपे कलर करते थे बर्तन के ऊपर, खिलौने के ऊपर,
3: चीजें हमें इतनी अच्छी लगती थी।

0: खेलते थे, और जब भी मतलब कुछ ऐसा फेस्टिवल जैसे घर पे अभी मनाते हैं दिवाली वगैरह, तो हम वैसे बच्चों बच्चों में ही दिवाली वगैरह मनाते थे, मिट्टी के ही मिठाइयां बनाते थे, फिर उनको बांटते थे, घर घर भी जाते थे, मैंने कहा लो आज दिवाली, हैप्पी दिवाली, मिठाई ले लो, घर वाले बोलते थे।
1: अमेजिंग टाइम था। आज के बच्चे बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हैं।
0: हाँ, और जो साइकिल के जो टायर होती थी ना, उसको भी लेके मैं बहुत घूमती थी। हम सभी कहते थे कि साइकिल है हमारा।
1: चलाया प्राची ऐसा वाला,
0: और उससे ना बच्चों की एक्सरसाइज भी हो जाती थी और हाइट भी बहुत बढ़ती थी उस टाइम। आजकल के बच्चों की हाइट इतनी नहीं बढ़ती है,
1: नहीं बढ़ती, और प्रॉब्लम्स कितनी है, छोटे बच्चों के अंदर नई नई बीमारियां आ रही हैं।
0: वो एक्टिविटी नहीं करते ना, एक तो उनको घर से बाहर नहीं भेजते, नेचुरल हवा नहीं उनको मिल पाती है, बाहर जाते तो यही सोचते कि इसके साथ कुछ हो ना जाए, कहीं चोट ना लग जाए। मतलब एक अगर बच्चों को बाहर भी लेकर जा रहे हैं तो पार्क में लेकर जाते थे, इसके अलावा कहीं और नहीं। अगर बच्चा छत पे भी घूम रहा है तो अरे तुम छत पर मत जाओ यार, धूप बहुत है, मिट्टी लग जाएगी, चोट लग जाएगी। मतलब आजकल हम बच्चों को ना स्ट्रांग बनाने की जगह उनको फूल बना रहे हैं।
1: हाँ बिल्कुल रीना, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जैसा कि आपने बताया कि आजकल बच्चों के पास टाइम भी नहीं है ज्यादा, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हमें भी एक्नॉलेज करने की जरूरत है कि हमने उन्हें नेचर से बहुत अलग कर दिया है। तो और बल्कि अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारे आसपास का एनवायरमेंट, चीजें ऐसी होनी चाहिए कि हम उन्हें नेचर के साथ जुड़े, क्योंकि और बच्चे इंटरेस्ट लेते भी हैं। अगर हम उन्हें ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जिसमें नेचर इन्वॉल्व है, बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेते भी हैं। पर कहीं ना कहीं ये हमारा ही एटमॉस्फेयर और जैसी अब यू नो अब ब्रिंगिंग हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो चीज भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें एक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है कि हमारे बच्चे नेचर के साथ टाइम बिताए,
2: जुड़े नेचर से जुड़े।
3: दोस्तों एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद अभी हम लौट कर आते हैं।

दोस्तों, ये प्यारा सा खूबसूरत सा गाना अभी आपने सुना और इसके बाद हम आपसे फिर से कनेक्ट हो गए हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम में। कार्यक्रम का नाम है सोच बदलो। और दोस्तों, आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में एक सवाल हम सबके सामने खड़ा है, क्या हमारे बच्चे सच में बचपन जी रहे हैं? सुबह उठते ही मोबाइल फोन, फिर वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया और स्क्रीन की दुनिया। धीरे धीरे बच्चे प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, न उन्हें चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती है, न ही पेड़ों की ठंडी छाँव का एहसास होता है। लेकिन सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें जीवन दिया, अगर बच्चे उसी से दूर हो जाएं, तो उनका जीवन कितना अधूरा हो जाएगा। सबसे पहले बच्चों को रोज कुछ समय खुले वातावरण में बिताने के लिए प्रेरित करें, उन्हें पार्क में ले जाएं, पेड़ पौधों के बारे में बताएं, पक्षियों की आवाज सुनने दें, घर में एक छोटा सा पौधा लगवाएं और उसकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को दीजिए। जब वह पौधों को बढ़ते हुए देखेगा तो उसके अंदर प्रकृति के प्रति प्यार, अपनी प्रकृति के लिए प्यार अपने आप जागेगा। छुट्टियों में सिर्फ बच्चों को मॉल या मोबाइल नहीं, बल्कि किसी बगीचे, खेत, नदी या प्रकृति स्थल की सैर भी करवाएं। और सबसे जरूरी बात, स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करें, ग्रीन टाइम बढ़ाएं, क्योंकि प्रकृति सिर्फ सुंदरता नहीं सिखाती बल्कि धैर्य, संवेदनशीलता और जीवन का असली संतुलन भी सिखाती है। याद रखिए श्रोताओं, बच्चों को मोबाइल की दुनिया से जितना बाहर निकालोगे, वे प्रकृति की दुनिया से उतने ही जुड़ेंगे। और जो बच्चा प्रकृति के करीब होता है, वही मानसिक रूप से अधिक खुश, स्वस्थ और रचनात्मक बनता है। तो दोस्तों, अभी हम आपसे करेंगे और भी बातें, आप बने रहिए, सुनते रहिए अपने शहर का सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। अभी हम मिलते हैं आपको कुछ और म्यूजिकल

0: जी वेलकम बैक है एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद मैं आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई हूँ। और देखिए जैसे कि खुशी ने बताया है कि बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़ना चाहिए, फोन से दूर रखिए। जितना आप उनको प्रकृति के साथ जोड़ेंगे उतनी हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो और भी सुखमय रहेगी और प्रकृति के साथ कनेक्ट रहेगी। सोचिए अब क्या है, बच्चों को ना सुबह सुबह उठते ही उनको फोन पकड़ा देते या फिर बच्चे जिद करने लग जाते हैं कि हमें फोन चाहिए, हमें गेम खेलना है। अगर वो खाना भी खाते तो सिर्फ और सिर्फ कार्टून देख कर ही खाना खाते। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पूरी फैमिली वाले एक साथ बैठकर खाना खाते थे, कब टाइम निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब हर किसी के पास फोन है, अलग बैठा है, कोई इधर कोने में बैठा है और टाइम का तो मतलब पता ही नहीं चलता। इसीलिए आजकल के बच्चों को भी चश्मे बहुत जल्दी जड़ रहे हैं। एक तो खान पीन में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, ऊपर से हम प्रकृति से बहुत दूर हो गए हैं, सो चश्मे भी चढ़ने शुरू हो गए क्योंकि स्क्रीन जो टाइम है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं कि तुम पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि वो पढ़ रहा है। जब वो खेलेगा तभी तो उसका माइंड है वो रिफ्रेश होगा, फिर वो कुछ नई चीजों को सोचेगा। और प्रकृति के बारे में अगर उनको कनेक्ट करते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानेंगे। इनफैक्ट कुछ बच्चों से पूछ लो कि ये किस चीज का पौधा है तो वो बता नहीं पाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ये तोरी का बेल है या फिर किसी और फल का पेड़ है, बिल्कुल भी नहीं बता पाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को जितना हो सके पेड़ों के बारे में नॉलेज बढ़ाए, उनको बताए किस चीज का पेड़ है ताकि उनको भी पता रहे, अदरवाइज आजकल के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता रहता। खुशी
1: बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि बच्चे आजकल प्रकृति में समय कहाँ बिता, उनको क्या पता, बस उनको सोशल मीडिया से मतलब होता है एंड कार्टून से मतलब होता है कि कौन सा कार्टून कब आने वाला है, कौन सा गेम है। एक्चुअली इस तरह के गेम्स आजकल सोशल मीडिया पर बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि बच्चे जब गेम्स खेलते हैं ना तो उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें खाना खाना है या नहीं खाना है, जैसे
0: कोई आवाज लगा रहा है कोई आवाज नहीं लगा रहा है, बिल्कुल उनको सुनाई नहीं देता, बहरे हो जाते हैं।
1: तो बस यही है, हम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आज के हमारे कार्यक्रम में कि अपने बच्चों को आप ज्यादा से ज्यादा बाहर लेकर जाएं, प्रकृति से कनेक्ट करें, उनको पार्क में लेकर जाएं इवनिंग टाइम में मॉर्निंग टाइम में, उनके साथ आप भी समय बिताएं। एंड जब बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ घुलता मिलता है बातचीत करता है तो उनका मानसिक संतुलन भी स्ट्रांग होता है, वो हैप्पी फील करते हैं, उनको लगता है कि कोई तो है जो हमारी बातें सुनता है हमें समझता है।
0: और दूसरी बात ये कि बच्चों को जब तक वो 12th पास आउट ना कर ले आप उनको फोन मत दे दीजिए। एक बार आपने उनको फोन की लत लगा दी तो फिर आप उनसे छुटा नहीं सकते हैं, इसीलिए 12th के बाद फोन दीजिए। क्योंकि पहले के बच्चे भी तो हम सबने भी तो पढ़े हैं, यानी कि हम सच बताऊं मुझे भी जब मैं कॉलेज में सेकंड ईयर में जाने के बाद मुझे फोन मिला, ये देखो तुम।
1: अच्छा, मैंने ग्रेजुएशन किया है तब मुझे मोबाइल मिला है,
0: तो हमने भी तो पढ़े है बिना फोन के बिना ना, हमें भी तो नॉलेज है।
1: पर वो विदाउट फोन वाली दुनिया बहुत खूबसूरत है,
0: बहुत। एक तो सच बताऊं मैं अभी भी जैसे फोन 2-3 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ तो आंखों को बहुत रिलैक्स मिलता है,
1: सुकून मिलता है।
0: और जिस जब भी मैं फोन चलाना स्टार्ट कर देती हूँ फिर से पेन शुरू हो जाता है।
1: इसीलिए
0: श्रोताओं बच्चों को फोन मत दीजिए और यूं ही हमारे साथ कनेक्ट रहिए। अभी हम लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, फिर मिलेंगे।
1: आज से एक छोटी सी शुरुआत करें और अपने बच्चों को फिर से पेड़ों फूलों तितलियों और खुले आसमान के करीब लेकर जाएं। मैं आपकी दोस्त आरजे खुशी और आप सुन रहे हैं सोच बदलो। सोच बदलिए क्योंकि छोटी सी सोच का बदलाव ही बड़े बदलाव की शुरुआत बनता है। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: हेलो जी, कैसे हाल चाल है? आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को। ये है आपका फेवरेट स्टेशन ऑफ द नेशन, दिस इज एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां बातें होती हैं दिल से दिल तक। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं प्रोग्राम में, आप सभी का फेवरेट, जिसका नाम है हेलो डॉक्टर। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद होते हैं जिसपे हम कुछ न कुछ खास डिस्कस कर रहे होते हैं आपकी हेल्थ के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है, अगर हमारी बॉडी अच्छी है, तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही ब्यूटीफुल डॉक्टर मौजूद हैं, एंड शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट। कौन है ये? बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी बातें करती हैं, और बहुत ही अल्टीमेट सी यू नो वाइब आ रही है मुझे इनके साथ यू नो बात करते हुए। अभी वो सारी वाइब आपको फील होंगी रेडियो पे। वेल, आप सभी का भी वेलकम बैक है इस्तकबाल एक बार फिर से। एंड बिना किसी देरी के मैं अपनी बातों को यहीं पे ब्रेक दूंगा और मैम की तरफ आपको लेके चलूंगा। सो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। वेलकम टू हेलो डॉक्टर प्रोग्राम। हाउ आर यू? कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया हूँ, एंड आई एम ऑल्सो ऑब्लाइज्ड टू बी हियर ऑन योर शो।
0: थैंक यू वेरी मच मैम। और मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस को प्लीज थोड़ा अपने बारे में बताएं, आप करेंटली कहाँ वर्किंग हैं, आप क्या करती हैं?
1: जी, मैं डॉक्टर राशिका गुप्ता हूँ। मैंने मेरे यूजी पीजी एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है। देन आई हैव वर्क्ड इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली। देन उसके बाद कुछ फेलोशिप्स करी, एंड फाइनली नाउ आई एम वर्किंग इन एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल मुरादाबाद।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। सो देखा, मैंने कहा था मैम बहुत ही अल्टीमेट तरीके से बात करी उनकी, आपको अल्टीमेटली वो एक फील यू नो आएगी बातों में, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। तो लेकिन पहले मैम से पूछते हैं कि मैम आपको स्टेशन आके कैसा लगा, हमारे यहाँ की वाइब्स, यहाँ का यू नो एनवायरमेंट कुछ कहना चाहेंगे आप? हालांकि डॉक्टर फील्ड में है, वहाँ की एनवायरमेंट अलग होती है, वाइब अलग होती है।
1: डॉक्टर्स एंड यू आर नॉट सेपरेट, ठीक है? हमारे पेशेंट मतलब वी आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी।
0: एब्सोल्युटली।
1: तो इट इज ऑलवेज देयर, इट इज ऑलवेज अ टू वे कन्वर्सेशन। आप नहीं है तो हम नहीं है, तो इस चीज को सॉर्ट आउट करना चाहिए। एक जो वो मोनोपोली बन रही है कि डॉक्टर्स बात नहीं करते, सो आई वांट टू ब्रेक दैट मोनोपोली कि नहीं यार, आप हमारे लिए जरूरी है, आपकी हर कंप्लेन हमारे लिए जरूरी है, एंड आई शुड बी ऑलवेज अवेलेबल टू यू। थिंग्स आर देयर कि हम कभी कभी बिजी होते हैं, अपने शेड्यूल्स में बिजी होते हैं, हम नहीं ध्यान रख पाते, बट द थिंग इज जब आप मेरे सामने हो, मेरे ओपीडी में हो, तो द कंसल्टेशन शुड बी 100%। मतलब ऐसे कुछ वाइब्स नहीं आनी चाहिए कि मैं ये ना बोलूं, मैं बोलूं नहीं, आप मुझे सब चीज बताओ। जो 15 मिनट आपने ओपीडी का मेरा लिया है, दैट शुड बी कम्प्लीट।
0: दैट्स वेरी नाइस मैम, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच, क्योंकि मुझे लगता है कि अपनी जिम्मेदारी जब हम समझने लगते हैं तो चीजें और भी इजी हो जाती है हमारे लिए, है ना? सो गाइज, आई होप आपको डेफिनेटली मजा आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, और आज बहुत सारी बातें होंगी, और मैं मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे साथ कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जिनसे हम वो बातें पूछना चाहते हैं जो क्वेश्चन आप हमें भेजते हैं बेसिकली, और आज हमारे पास आप ही के क्वेश्चन हैं जो हम मैम से पूछने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैम, आई वॉन्ट टू आस्क यू, दिस इज माई फर्स्ट क्वेश्चन, ये किसी लिसनर का नहीं है, ये मेरे अंदर क्वेश्चन है कि जो गायनेकोलॉजिस्ट होती है वो कौन होती है, उनका क्या रोल होता है? बिकॉज मुझे लगता है कि हम पुरुषों को भी जानने का राइट है।
1: जी जी बिल्कुल, पुरुष जानेंगे तभी औरतें जानती
0: है।
1: एक्चुअली लोगों को ये लगता है गायनेकोलॉजिस्ट सिर्फ एक जच्चा बच्चा डॉक्टर होती है। हाँ, जिसे पुराने जमाने
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ठीक है? तो यानी कि डिलीवरी कराएगी या नॉर्मल कराएगी या सिजेरियन कराएगी, ठीक है? बट दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। देर आर लॉट ऑफ चीज, देर इज अ रेनबो डिसऑर्डर जिसके बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के लिए आप आ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 इरेगुलरिटीज, हार्मोन डिसऑर्डर्स, आजकल फीमेल्स में बढ़ गया है कि दे डोंट मैरी आफ्टर 35 ईयर्स, सो देर आर लॉट ऑफ हार्मोनल इश्यूज, ठीक है? देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक पीसीओडी इमर्जिंग, जिसको आजकल हम पीएमओएस कहते हैं, बट इट इज ऑल एंडोक्राइन रिलेटेड। तो गायनी आपकी एक ओवरऑल हेल्थ की पार्टनर होती है, तो सिर्फ डिलीवरी और बच्चा से हमारा मतलब नहीं है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू, क्योंकि वी आर फीमेल तो वी कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड बेटर, एंड डिलीवरी हमने भी वी हैव गॉन थ्रू दैट फेस, तो इट इज ऑलवेज रिलेटेबल।
0: ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम ये एक्सप्लेन करने के लिए। अब हमें और मेरे जैसे बहुत सारी यंगस्टर को, जेंसी को पता चल गया कि गायनेकोलॉजिस्ट होते क्या है, उनका क्या रोल होता है। सो मैम, हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल बहुत बिजी है, इनफैक्ट एवरीबडी, सब लोग बिजी है, सबको लाइफ में सुपर फास्ट जाना है, सब लोग बहुत भाग रहे हैं, बट ऐसे में ना हमारे घर की जो मम्मियां हैं, दीदी हैं, या हमारे घर की जो वुमेन्स हैं, वो अपनी हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देती है, अपनी हेल्थ पे बहुत कम टाइम दे पाती है, उन्हें हस्बैंड को देखना है, बच्चों को देखना है, एंड और भी बहुत सारी चीजें उन्हें संभाल करनी है बट उन्हें खुद को नहीं देखना है, बहुत कम टाइम में खुद को टाइम दे पाती है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? स्टार्टिंग में उन्हीं से करूंगा।
1: एक्चुअली मैं भी फीमेल हूँ, मेरी भी फैमिली है, सो इट इज लाइक दैट ओनली कि अगर बच्चे को फीवर आ रहा है और मुझे फीवर आया है, आई विल ओनली से कि चलो
0: बच्चे को दिखा लाते हैं।
1: आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स, अभी कल की कहानी बताती हूँ। देयर वर टू पीपल, ठीक है, हमारे स्टाफ की पेशेंट थी, मदर, बेटी ने अपना पर्चा बनाया फॉर इरेगुलर मेंसेस, ठीक है। अब द मदर वॉज देयर, तो बेटी ने अपना दिखा के उसके बाद बोली कि मैम मम्मा को भी प्रॉब्लम है, आप देख लो। तो आई वॉज लाइक कि बताइए क्या प्रॉब्लम है। शी डिनाइड, बोली नहीं मैम घर में मेरे सब बीमार है, मेरे फादर इन लॉ की डायलिसिस चल रही है, मेरे हस्बैंड को फीवर आ रहा है, बेटी को इरेगुलर मेंसेस है, मैं अब अफोर्ड नहीं कर सकती। अब प्रॉब्लम क्या थी कि उनके मेंसेस के बीच में उनको इरेगुलर पीरियड्स आ रहे, विच कुड बी इंडिकेशन ऑफ समथिंग वेरी बैड। तो इन्वेस्टिगेशन एट टाइम इज इम्पोर्टेंट ताकि हम इंटरवीन कर लें। तो आई टोल्ड हर कि आप पर्चा मत बनाओ, एक जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन होते हैं हम जो पैप स्मियर और अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता करते हैं, आप वो करा लो, डोंट गो फॉर मल्टीपल चीजें बट एक स्क्रीन करके, क्योंकि अगर आप अपना ध्यान रखेंगी तभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखेंगे। अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है, ठीक है, आपको पैर में दर्द, सर में दर्द हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपके बच्चे कह रहे हैं कि मम्मा चलो घूमने, तो यू विल फील वेरी मतलब इरिटेटेड कि नहीं यार नहीं जाना मुझे, आप घर पे भी चिल्लाओगे, हस्बैंड से भी लड़ोगे। तो योर हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ, अगर आप अपने आप में स्वस्थ नहीं है तो आप और लोगों की टेक केयर नहीं कर सकती, और ये 100% बात है, इसमें कोई इफ एंड बट बिल्कुल नहीं है।
0: Absolutely. तो जो लोग देख भी रहे हैं यहाँ पे गाइस, सुनने के साथ साथ लोग हमें देख भी रहे हैं, हम डिजिटली सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो जो लोग देख रहे हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्पेशली लेडीज को मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपना ध्यान जरूर रखें और बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि सिर्फ फैमिली के लिए सोचते रहना अच्छी बात है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन खुद के लिए भी ध्यान रखना बहुत जरूरी, जैसे कि मैम ने कहा। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पे, प्रोग्राम है हेलो डॉक्टर, और आज इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रही हैं एशियन हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राशिका गुप्ता जी, जिनसे हम ढेर सारी बातें कर रहे हैं। आज वुमेन्स को लेकर हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं। अच्छा मैम, मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी बीच। आजकल का लाइफ स्टाइल तो जैसे मैंने बताया बहुत बिजी है, ये आपको भी पता है, लेकिन महिलाओं को ऐसे कौन कौन से चेकअप हैं जो उन्हें बीच बीच में डेफिनेटली कराने चाहिए, एंड वो रेगुलरली जिसे कह सकते हैं हेल्थ चेकअप बहुत जरूरी होते हैं ना, बट आपके हिसाब से कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो चेकअप, उन्हें कब कब कराने चाहिए?
1: एक्चुअली रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ यू डायग्नोज एट अ अर्ली स्टेज द ट्रीटमेंट कैन बी मच मोर इजियर।
0: ठीक है
1: अब 20 से 30 साल की अगर आपकी उम्र है, 20 to 30 इयर्स, तो वी रिकमेंड कि 1 to 2 साल में आप अपना ईयरली चेकअप करा लें, जिसमें आपका थायराइड इंक्लूडेड है, आपके हार्मोन टेस्ट इंक्लूडेड है, शुगर, बीपी, ये सबका एक नॉर्मल रूटीन टेस्ट। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीनिंग की हम बात करते हैं जिसको हम कहते हैं पैप स्मियर, जो कि आज ओवरऑल ओवर इंडिया एक बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है, दैट इज पैप स्मियर। ठीक है, इसकी हम रिकमेंड करते हैं कि एवरी

0: female should undergo a pap smear 21 to 65 years of age. ठीक है, हर 3 साल पे कराना है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता, एक स्पैचुला से आपके सर्विक्स को बस ब्रश से रब किया जाता है और सैंपल ले लिया जाता है. इट इज अ ओपीडी प्रोसीजर, आप हमारे पास आएंगे और 5 मिनट में प्रोसीजर करके हम भेज देंगे. करता क्या है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्नोस करता है सर्वाइकल कैंसर के प्री कैंसरस न्यूज जो है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर इस वक्त ग्रोइंग स्टेज पे है. इवन इतना ज्यादा हो रहा है कि एक सरकार एक हेल्थ कैंपेन रन कर रही है जिसके बारे में आपने भी सुना होगा, विच इज की वैक्सीन HPV वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगवा रहे हैं. अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि आई गेट पेशेंट इन ओपीडी कि मैम वो जो सरकारी वैक्सीन है वो लगवा ले. पीपल मिसकंसेप्शन ये हो रहा है कि दिस कॉजेज इनफर्टिलिटी, दिस कॉजेज इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेल्स, बट ऐसा नहीं है. कोई इज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है, दैट डजंट मीन कि वो आपके बुरे के लिए.
1: करेक्ट करेक्ट.
0: गवर्नमेंट इज रनिंग कि
1: एब्सोल्युटली
0: अब पोलियो इराडिकेट हो गया हमारे. ठीक है, एक टाइम पे इतना सारा पोलियो का केस मिलता था, बट बिकॉज गवर्नमेंट इंटरवीन्ड तो उसके बाद उसके केसेस आने कम हो गए. अब गवर्नमेंट एक कोशिश कर रही है कि सर्वाइकल कैंसर और इतनी महंगी वैक्सीन जिसकी एक डोज लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की है वो फ्री ऑफ कॉस्ट.
1: फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल.
0: उसमें भी बहुत प्रॉब्लम है लोगों को. अब एक इसमें 2-3 तरह की वैक्सीन होती है, सर्वरेक्स, गार्डेसिल, ये सब वैक्सीन होती हैं. डोजिंग का भी है कि 9 to 15 इयर्स है तो 2 डोज वैक्सीन लगानी है 0 to 6 मंथ के इंटरवल पे. और एक और वैक्सीन है जो कि अगर आप एज ज्यादा है 15 साल से ऊपर है तो यू कैन गो फॉर 3 डोज वैक्सीन. ठीक है, और ये लगवानी चाहिए. इट इज अ वेरी गायनेकोलॉजिस्ट रिकमेंडेड वैक्सीन. आई गेट पेशेंट्स एंड आई एम ऑन दिस सोशल मीडिया, आई वॉन्ट टू से कि यार लगवा लो, ये अच्छा है. सब अपनी बच्चियों को लगवाएं और जो भी रिप्रोडक्टिव एज की फीमेल्स हैं टिल 45 इयर्स आप प्लीज इसे लगवाएं. दूसरी चीज एक मेमोग्राफी की स्क्रीनिंग, बिकॉज द ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग रेट. तो वो 40 साल के बाद मेमोग्राफी हम कहते हैं कि आप ईयरली, नहीं पॉसिबल है तो कम से कम 2 ईयरली बाय ईयरली आप मेमोग्राफी करा ले. प्लस सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि एक स्क्रीनिंग के तौर पे महिलाओं के लिए हेल्पफुल हो सकती.
1: ऑलराइट मैम, थैंक यू सो मच, आपने एक मैसेज भी कन्वे कर दिया. यू नो कई बार बहुत सारे पेरेंट्स अभी भी जो हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में भी लोग सुनते हैं, तो उनको भी ऐसा लगता है कि नहीं जो HPV वैक्सीन है या जो गवर्नमेंट फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज्यादा सही नहीं है. पर आई डोंट नो कि उनको ये मिथ्स या उनका कह सकते हैं कि मेंटालिटी अलग लेवल पे चल रहा है. आप एज ए डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे उनको?
0: I would say कि प्लीज लगवाइए. ठीक है, इट इज वेरी फ्रेंडली वैक्सीन, कुछ नहीं होता, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है. कोविड के बाद लोगों ने इतने वो डिल्यूजन्स बना लिए कि कोविड वैक्सीन से ही हो गया, कोविड वैक्सीन से ही. कोई भी वायरस की वैक्सीन इसलिए नहीं आती कि आपको हार्म करा जाए.
1: Absolutely.
0: नहीं तो सरकार को तो कोर्ट में सू कर दिया जाएगा.
1: करेक्ट मैम, बिल्कुल.
0: और पहले जब पैसे दे के लगाई जा रही थी तो लोग लगवा रहे थे, और जब हम फ्री में उसको लगवा रहे हैं तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सरकार का कोई स्कैम है. नो, इट इज नॉट अ स्कैम. इट शुड बी गिवन 9 से 14 साल की लड़कियों को. प्लीज सब लोगों से रिकमेंडेशन है, मेरी गुजारिश है कि प्लीज आप ये वैक्सीन जरूर लें.
1: एब्सोल्युटली, और हम भी आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज एवी का वैक्सीन आप जरूर कराएं. ये वैक्सीनेशन बिल्कुल फ्री है, इसे बिल्कुल भी अवॉइड ना करें. मैम थैंक यू वेरी मच. आगे बढ़ते हुए मैम, पीरियड्स को लेकर समाज में कई तरह के मिथ्स हैं, बहुत सारी यू नो अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स यू नो लोगों ने बनाई हुई है अपने दिमाग में, जहन में. अभी भी 2026 चल रहा है तब भी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों के दिमाग से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो अपने रिचुअल्स को कल्चर को फॉलो करते हैं वो लोग, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग अभी भी पीरियड्स को लेके बहुत ज्यादा मिथ्स अपने दिमाग में रखते हैं? यू नो पैड्स मत यूज करो, ये मत करो.
0: पीरियड्स के रिगार्डिंग इतने सारे मिसकंसेप्शन है. आप किचन में नहीं जा सकते, आप पूजा नहीं कर सकते.
1: Absolutely.
0: गंदा खून होता है. ठीक है, अब इफ आई वुड से ये सब नॉर्थ में है. इफ यू सी सनातन धर्म, दे सेलिब्रेट कि जब पीरियड्स आने लगते हैं फीमेल्स को तो एक पूजा स्थापित की जाती है, सब लोगों को बताया जाता है. इट्स सच अ ब्यूटीफुल रिचुअल. क्यों क्यों इसलिए किया जाता है, अब दिस फीमेल इज रेडी फॉर कंसेप्शन, है ना. जिसके पीरियड नहीं आ रहे उससे पूछिए कि उसके माँ बाप के लिए कितनी बड़ी ट्रेजेडी है. द यूट्रस इज नॉट देयर, यूट्रस इज नॉट वर्किंग, यूट्रस इज नॉट हैविंग बेबी, उस बच्ची की शादी कराना, मतलब होल लाइफ इज मिसमैच. तो जिसको आ रहे हैं इट इज अ वेरी गुड साइन. अब ये मिसकंसेप्शन मुझे लगता है जो बने हैं उसका रीजन ये रहा होगा कि पुराने जमाने में पूजाएं बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल से होती थी.
1: Correct.
0: मंदिर ऊपर हुआ करते थे.
1: Right.
0: तो लोग सीढ़ियां चढ़ के जाया करते थे.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: और घर के काम ऑब्वियसली सारे काम मैनुअल होते थे, तो बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता था. तो बस आराम देने को बड़े बूढ़ों ने कहा कि इसको 3 दिन का हम रेस्ट दे देते हैं. दैट डजंट मीन कि उसको सोसाइटी से निकाल दिया जाएगा, उसको उसको अछूत समझा जाएगा, ऐसा उन लोग का बिल्कुल भी कंसेप्शन नहीं था। इवन उसको गंदा ब्लड कहा जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ लोगों से कि अगर वो गंदा ब्लड है तो प्रेगनेंसी में देयर इज नो पीरियड ना, तो उस गंदे ब्लड से हमारा बेबी हो रहा है, हाउ कैन अ बेबी भी गंदा, नहीं हो सकता ना। सो अभी भी अब मुझे ऐसा लगता है, मैं बहुत लोगों को समझाती हूँ, बट जो पुरानी जनरेशन है यानी कि हमारी मम्मी दादी नानी, दे विल गो ऑन देयर पेस, उनको हम नहीं चेंज कर पाएंगे। द थिंग इज, जैसे मैंने अपने घर में किया है कि आई डोंट कंसीडर पीरियड एज अ टैबू, आई गो टू टेम्पल्स, आई डू एवरीथिंग एंड दिस माई डॉटर विल फॉलो, ठीक है मेरी बेटी भी ये सब करने वाली है, बट आई डोंट ट्राई टू चेंज माई मदर, ठीक है मम्मी जब होती हैं तो आई फॉलो देयर रिचुअल्स की, ठीक है व्हेन आई एम अलोन एट माई होम आई फॉलो माई रिचुअल। तो यही मेरा लोगों से है कि पुराने जनरेशन को अपन नहीं चेंज कर सकते, थिंग इज कि हम चेंज होंगे एंड हमारी नेक्स्ट जनरेशन चेंज होगी। जब इतना लास्ट पहले के जमाने में कोई मोबाइल का यूज नहीं करता था, बिल्कुल भी कोई मोबाइल का, आज कोई मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, तो थिंग्स आर चेंजिंग, व्हेन द ओल्ड पीपल आर अपडेटिंग व्हाई कांट वी अपडेट ना।
1: करेक्ट। अच्छा मैम, पीरियड से जुड़ी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लेडीज अक्सर उनका सामना करती हैं, इवन कुछ लेडीज उसको अवॉइड भी कर देते हैं।
0: Exactly.
1: तो उसके विषय में थोड़ा सा यू नो आप बताएं।
0: हाँ, बहुत सारी, जैसे कि पीरियड का कम आना इज डिजीज, पीरियड का बहुत ज्यादा आना इज अ डिजीज, आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हैं और उसमें बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है या गंदा डिस्चार्ज हो रहा है, दैट इज अ डिजीज, ठीक है। अब पीरियड आ रहे हैं लेकिन डिसमेनोरिया यानी कि आपको बहुत पेन के साथ हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ डिजीज। तो ये सब बीमारियां हैं। अब पीरियड नहीं आए, एक दो दो तीन महीने नहीं आए तो लोग ये सोचते हैं कि बंद होने वाला है, बट बंद होने की एक स्पेसिफिक एज होती है और एक स्पेसिफिक हार्मोनल प्रोफाइल होता है विच यू विल गो टू अ गायनेकोलॉजिस्ट, तब वो कराएगी। तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आपके अर्ली पीरियड भी बंद हो रहे हैं, मेरे पास तीन पेशेंट मेरे फॉलोअप में है जो कि 30s की एज में है, 30, 31, 32 एंड 3 साल से एमिनोरिक है यानी कि 3 साल से महीना नहीं आ रहा, हैड दे कम अर्ली आई वुड हैव इंटरप्टेड, बट अब क्योंकि वो क्रोनिकली हो गया है तो इट इज वेरी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू क्योर देम।
1: ओके वेरी नाइस मैम, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। सो आई होप जो भी वुमेन्स, जो भी लेडीज सुन रहे हैं इस शो को, आई एम श्योर उनको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल रहे होंगे। आज डॉक्टर राशिका गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एशियन हॉस्पिटल से हमारे बीच में हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम्स को जो है यहाँ पे सॉल्व कर रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोग हमें अक्सर भेजते रहते हैं उस सारे क्वेश्चंस के आंसर मैम यहाँ पे कर रही हैं। एंड मैम थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आप बहुत अच्छे से चीजों को यू नो एक्सप्लेन कर पा रहे हो और हमारे लिसनर्स भी डेफिनेटली कनेक्ट हो पा रहे होंगे इस चीज से कहीं ना कहीं।

0: विजिट करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: चाय काल तक भारत पर 151 रन की बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है।
1: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं, तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है। ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूं, जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है। खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
1: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है। और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है, बल्कि ये भी देखना है कि कौन सा बच्चा किस खेल के लिए फिट है। हमें उस हिसाब से ही उस बच्चे को ट्रेनिंग देनी होगी।
0: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है।
2: भारत का स्पोर्ट्स इकोसिस्टम केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडल्स तक सीमित नहीं है। फिट इंडिया से करोड़ों युवाओं को जोड़ने से लेकर संडे ऑन साइकिल जैसी पहलों तक आपने फिटनेस को लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स को नेशनल मूवमेंट बना दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और फेयर अपॉर्चुनिटी को मजबूत करने का प्रयास यह सुनिश्चित करता है कि प्रतिभा को अपना टैलेंट साबित करने का समान मंच मिले।
0: ये कार्यक्रम राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के तहत मेरा युवा भारत माय भारत ने आयोजित किया था। देश भर में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हर जिले के 2-2 कॉलेजों के युवाओं ने इसमें भाग लिया। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने देश में मजबूत खेल व्यवस्था और बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए 36,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। गुजरात में गांधीनगर के पालज स्थित IIT में आयोजित खेलो इंडिया संवाद से अलग मीडिया से बातचीत में डॉ मांडविया ने कहा कि इस राशि का इस्तेमाल खेल अकादमियों की स्थापना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल सुविधाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत को अपनी खेल परंपराओं को एक जीवंत खेल संस्कृति में विकसित करना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली के हिंदू कॉलेज में खेलो इंडिया संवाद में हिस्सा लिया। छात्रों को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश एक मजबूत खेल तंत्र विकसित करने के लिए लगातार काम कर रहा है।
3: इंटरनेशनल लेवल में हमारा मेडल्स बढ़ रहे हैं। पहले तो हम एक मुश्किल से 2 मेडल मिलते थे, अब तो हम हर कंपटीशन, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, चाहे ओलंपिक्स हो, एशियन गेम्स हो, अब तो मल्टीपल मेडल्स जीतते हैं इंडियन प्लेयर्स। ये तो बहुत फख्र की बात है।
0: कश्मीर के सभी 10 जिलों के हजारों छात्रों, खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल माध्यम से आयोजित खेलो इंडिया संवाद में भाग लिया। प्रतिभागियों ने युवा पीढ़ी को खेल अपनाने और खेल में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की। चंडीगढ़ के 51 शिक्षण संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों और राष्ट्रीय खेल सेवा स्वयं सेवकों ने आज खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पठानकोट स्थित आर्य महिला महाविद्यालय की छात्रा शिव्या ने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश हमेशा युवाओं को विकसित भारत के निर्माण के लिए समर्पित रूप से काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज आगामी ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अहमदाबाद के सर्किट हाउस एनेक्सी में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृहमंत्री गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और विद्यार्थियों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से टी सीरीज टैंकों के ओवरहॉलिंग प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। इस परियोजना से रक्षा उपकरणों के रखरखाव और उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। नेपाल में कल आई भीषण बाढ़ में करीब 160 लोगों की मौत हो गई। तिब्बत से आई इस बाढ़ ने कई कस्बों और गांवों को तबाह कर दिया। महत्वपूर्ण पुलों को बहा ले गई और कई पन बिजली परियोजनाओं को ठप कर दिया है। एक रिपोर्ट।
4: नेपाल में आई इस भीषण त्रासदी का कारण भूकंप के झटकों से ग्लेशियर फट जाने को माना जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों के विभिन्न हिस्सों से लगभग 100 लोगों को बचाया गया है। इस बीच काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से संबंधित जानकारी के लिए आपातकालीन नंबर जारी किए हैं। नंबर है +9779851316807 और +9779701075000। विश्व बैंक ने भी प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, राहत और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए नेपाल को आपातकालीन वित्तीय सहायता के रूप में 25 अरब नेपाली रुपए देने की पेशकश की है। इसके अलावा नेपाल में बाढ़ के कारण उत्तर प्रदेश और बिहार में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने बताया कि बाढ़ के कारण लापता हजारों लोगों में लगभग 300 भारतीय पर्यटक शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह से बात की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सभी भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रयास जारी हैं। डॉ जयशंकर ने आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के विदेश सचिव और काठमांडू और पेचिंग में भारत के राजदूतों के साथ नेपाल में बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, पर्यटन संचालकों और परियोजना अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार राहत सहायता प्रदान करने के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारतीय बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में मौजूद हैं और राहत अभियान में सक्रियता से जुटे हुए हैं। भारत ने नेपाल के लिए 37 टन से अधिक मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री, दवाइयां तथा खाद्य पैकेट की दूसरी खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत नेपाल के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है और राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने कहा है कि नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि दोनों राज्य सरकारों के समन्वय से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। बल के महानिरीक्षक नरेंद्र सिंह बुंदेला ने बताया कि दोनों राज्यों में एनडीआरएफ की 20 टीम तैनात की गई है, जिनमें से 9 बिहार में और 11 उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बल्कि एक टीम तैनात की गई है।
5: यूपी में कुशीनगर एरिया अफेक्ट होता है गोरखपुर के पास, तो एक टीम वहां पर डाइवर्ट कर दी गई थी। एक जो सीडब्ल्यूसी का भी इनपुट था कि उसका इम्पैक्ट वाल्मीकि नगर में बैरेज है गंडक रिवर पे, उसका जो पानी का डिस्चार्ज का फ्लो उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फील्ड में अभी तक फ्लड का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। स्टेट गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज एनडीआरएफ की जो रिक्वायर्ड तैनाती है वो कर दी है दोनों राज्यों में, और अभी तक हम इस स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं।
0: इस बीच मौसम विभाग ने शनिवार तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा, पश्चिम

बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार और रविवार को ओडिशा के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। सरकार ने आगामी महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए बफर स्टॉक से जरूरत के अनुसार इसकी आपूर्ति शुरू कर दी है। मंत्रालय ने बताया कि प्याज को 35 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि पहली कांदा एक्सप्रेस महाराष्ट्र के नासिक से रवाना हो चुकी है और लगभग 800 मीट्रिक टन प्याज लेकर आज देर शाम या कल सुबह तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इसके पहुंचने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपने सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जारी न करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि डीए अभी तक जारी नहीं होने के कारण 3 लाख से अधिक राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल कनाडा की विभिन्न वित्तीय कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। बैठक में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने और बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश के अवसर बढ़ाने पर चर्चा हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए वार्ता फिर शुरू करने की कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। एक निजी समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्हें बातचीत फिर से शुरू करने की कोई जल्दबाजी नहीं है। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका बड़ी बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने ईरान की आर्थिक मुश्किलों का भी उल्लेख किया। इस बीच कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी आज ईरान पहुंचेंगे। वे ईरानी अधिकारियों से मुलाकात कर तनाव कम करने और बातचीत के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में भारत मजबूत स्थिति में बना हुआ है। श्रीलंका ने चायकाल तक दूसरी पारी में 155 रन की बढ़त बना ली है। इससे पहले भारत ने श्रीलंका को उनकी पहली पारी में 290 रन पर ऑल आउट करके फॉलो ऑन दिया है। दो मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 143 अंक गिरकर 77,330 जबकि निफ्टी 36 अंक की गिरावट के साथ 24,171 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को पूरी तरह प्रतिबद्ध। नेपाल में बाढ़ से लगभग 160 लोगों की मौत, 300 भारतीय समेत 1,000 से ज्यादा लोग लापता। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की दूसरी खेप भेजी। नेपाल बाढ़ के मद्देनजर बिहार और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए NDRF की टीमें तैनात। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और कोलंबो में दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में श्रीलंका ने दूसरी पारी में चायकाल तक भारत पर 155 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार्क मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी। श्रोताओं, आपका फेवरेट शो लेकर हाजिर हूँ महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के संघर्ष की। और दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त RJ खुशी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री मुमताज जी की। यहाँ दोस्तों, एक ऐसी कलाकार जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत की और अपनी मेहनत के दम पर हिंदी सिनेमा के सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में जगह बनाई। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के अनसुने किस्से, संघर्ष, सफलता और यादगार फिल्मों की कहानी। बचपन और संघर्ष।
4: 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज का बचपन आसान नहीं। उनके माता पिता अलग हो गए थे, जिसके बाद परिवार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कम उम्र में ही उन्होंने फिल्मों में छोटे छोटे रोल करने शुरू किए। उस दौर में उन्हें अक्सर भीड़ वाले दृश्यों या छोटी गांव तक ही सीमित रखा जाता था। कई बार उन्हें यह कहकर भी ठुकरा दिया कि वह मुख्य अभिनेत्री बनने के काबिल नहीं है, लेकिन मुमताज ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर छोटे अवसर को पूरी मेहनत से निभाया।
3: दारा सिंह के साथ सफर। साथियों, जब बड़े बैनर उन्हें मौका नहीं दे रहे थे, तब अभिनेता और पहलवान दारा सिंह के साथ उन्होंने स्टंट फिल्मों में काम किया। इन फिल्मों ने उन्हें पहचान तो दिलाई, लेकिन उन्हें स्टंट फिल्मों की हीरोइन का टैग भी मिला। इसके बावजूद उन्होंने लगातार मेहनत जारी रखी। उन्हें विश्वास था कि एक दिन उनकी प्रतिभा को सही मंच मिलेगा।
4: 1969 में फिल्म दो रास्ते ने उनकी किस्मत बदल दी। इस फिल्म में उनके अभिनय को खूब सराहा गया। इसके बाद उन्हें लगातार सुपरहिट फिल्में दी। यादगार फिल्में दो रास्ते, खिलौना, सच्चा झूठा, तेरे मेरे सपने, बंधन, अपना देश, आपकी कसम, रोटी, कहानी। उनकी जोड़ी राजेश खन्ना जी के साथ दर्शकों को बेहद पसंद आई।
3: मुमताज जी की खास बातें, हमेशा मुस्कुराती रहने वाली अभिनेत्री, शानदार डांस और दमदार स्क्रीन प्रेजेंस, सादगी और आत्मविश्वास उनकी सबसे बड़ी पहचान रही। उन्होंने अपने समय के लगभग सभी बड़े सितारों के साथ काम किया। निजी जीवन।
4: 1974 में मुमताज ने व्यवसायी मौर्य माधवनी से विवाह किया। बाद में फिल्मों से दूरी बना ली। परिवार को प्राथमिकता देने का उनका फैसला भी लोगों ने खूब सराहा।
3: प्रेरणा। दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी प्रेरणा की। मुमताज जी की कहानी हमें सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास साथ हो तो मंजिल एक दिन जरूर मिलती है। साथियों, मुमताज जी का बचपन आसान नहीं था। परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजरा, इसलिए उन्होंने बहुत छोटी उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने लगभग 11 वर्ष की उम्र में लाजवंती, जो 1958 में आई थी, और सोने की चिड़िया जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में काम किया। शुरुआती दिनों में उन्हें छोटे छोटे रोल मिलते थे और कई बार जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम करना पड़ा।
4: साल 1963 की फिल्म गहरा दाग से उन्हें मुख्य भूमिका मिलने लगी। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक में वह बॉलीवुड की सबसे ज्यादा मांग वाली और कामयाब अभिनेत्री में शामिल हो गईं। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर लोगों को बहुत पसंद आई। दोनों ने दो रास्ते, अपना देश और रोटी जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में साथ की। फिल्म खिलौना 1971 के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला।
3: क्या बात ही परी, अभी आपने बहुत ही खूबसूरत सा जिक्र किया है फ्रॉम द मूवी दो रास्ते, और इस मूवी में एक गाना है जो कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गाना है, छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई।
4: जी जी खुशी जी, आपने काजल लगाया और ये दिन में रात हो गई।
3: अरे यार पता है आपको, मुमताज जी ने जो ड्रेस पहना था येलो कलर का, कितना ब्यूटीफुल था ना यार।
4: बहुत सुंदर। वो ड्रेस बनाने की मैंने भी कोशिश करी थी पर वो मेरे से बन ही नहीं पाई और मेरे ऊपर अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अब भाई हर कोई मुमताज जी जैसा खूबसूरत तो नहीं हो सकता।
3: एग्जैक्टली राइट। और क्या खूब लगते थे ना राजेश खन्ना जी और मुमताज जी,
4: उन दोनों की जोड़ी तो ब्लॉकबस्टर है पर्दे पे। और मेरे हिसाब से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उनको भी ये जोड़ी बहुत पसंद आने वाली।
3: बिल्कुल पसंद करेगी हमारी जनरेशन भी, क्योंकि ओल्ड इज गोल्ड।
4: यस बिल्कुल।
3: तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म का जिक्र हमने किया है और इस गाने की भी हमने अभी लाइनें आपको कुछ बोलकर सुनाई है, तो क्यों ना इस गाने को सुन लेते हैं। हमें पूरा यकीन है कि हमारी ऑडियंस को ये ट्रैक पसंद आएगा हमारी तरह। तो चलिए लौट कर आते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पर।
5: छुप गए।

0: श्रोताओं, इतना प्यारा गाना आपने सुना, मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि वापस आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, आना पड़ा, क्योंकि आप जो हमें इतना मिस करते हैं। तो फिर हम चले आए आपके पास, आप ही के अपने फेवरेट सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और आज हम जिक्र कर मुमताज जी का, एंड आज हम जानने वाले हैं उनकी हॉबीज के बारे में भी, उनकी क्या हॉबीज रही है, तो ये हमें बताने वाली है परी। तो परी बताएगा मुमताज जी क्या उनकी हॉबीज है।
1: मुमताज जी को सबसे ज्यादा डांस करना पसंद था, किताबें पढ़ना पसंद था, और उनको अपने परिवार के संग समय बिताना पसंद था। और वो तरह तरह की नई डिशेस बनाती थी, अपने परिवार वालों को खिलाती थी, और उनको खूब शौक था किताबों पढ़ने का और फिल्में देखने का। वो फिल्में देखने की बहुत शौकीन थी। तो भाई, अब हमने जब अभिनेत्री के बारे में जाना है कि वो उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में, तो उनकी थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में जानना भी हमें चाहिए। तो अब मैं खुशी मैम से पूछना चाहूंगी कि मैम आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, अब आप बताइए दर्शकों को कि आपकी हॉबीज क्या हैं।
0: अरे मेरी हॉबीज तो मुझे यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं फ्री होती हूँ तो मैं ट्रैवल करती हूँ अक्सर। नेक्स्ट उसके अलावा मुझे सिंगिंग करना बहुत पसंद है, और सिंगिंग के साथ साथ बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं अभी आपसे बातें कर रही हूँ, अपनी ऑडियंस से बातें कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड का कि उन्होंने इतनी प्यारी आवाज दी है, अपने मम्मी पापा जी का। ये मेरी हॉबीज है। बाकी परी, अभी आपने कुछ जिक्र किया था ना गानों का, जरा उनके गानों के बारे में भी बताइए। उनके सुपरहिट गानों के बारे में आपने बात जिक्र किया था, अभी आप मुझसे बता रही थी कुछ गानों का जिक्र कर रही थी, जरा हमारे श्रोताओं को भी बताइए यार कौन कौन से वो गाने हैं।
1: मुमताज जी के गाने हैं, कोई सहरी बाबू कोई लहरी बाबू,
0: आई रे पग बांध गया घुंगरू मैं छम छम नच दी फिरा,
1: गोरे रंग पे इतना
0: गोरे रंग पे ना इतना घुमाने कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा।
1: और ये वाला तो मेरा फेवरेट है,
0: आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आपको भी खबर हो गई ना कि हम दोनों लड़कियों की आवाज अच्छी नहीं है। तो दोस्तों अभी, और ऐसी ही हमारी बातें चटपटी बातों को आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो अभी मिलते हैं एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक के उस पार, आप कहीं मचाइए, बने रहिए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, जहाँ पर हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में, उनके जीवन शैली के बारे में। तो आज हम बात ही कर रहे हैं मुमताज जी के बारे में, और भी बातें हैं जो बहुत दिलचस्प बातें हैं अभी बाकी हैं, वो भी आकर हम करने वाले हैं, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार।

0: हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। महिला मंच शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री मुमताज जी के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का राज क्या है, हमारी श्रोताओं को भी तो पता होना चाहिए ना। दोस्तों, 70 के दशक की सबसे खूबसूरत और चुलबुली अभिनेत्री की बात होती है तो मुमताज जी का नाम सबसे पहले जहन में आता है। आज भी जब उनकी तस्वीर सामने आती है तो लोग यही कहते हैं, आखिर इतनी उम्र में भी ये इतनी फिट और ग्रेसफुल कैसे दिखती हैं? तो जानते हैं मुमताज जी की फिटनेस और खूबसूरती का असली राज। सबसे पहले बात करते हैं अनुशासन डिसिप्लिन की। मुमताज जी का मानना रहा है कि फिटनेस किसी एक दिन की मेहनत नहीं बल्कि रोज अच्छी आदतों का परिणाम है। वे हमेशा संतुलन भोजन पर जोर देती रही। ज्यादा तला भुना या बहुत अधिक मीठा खाने की बजाय वे घर का बना ताजा और हल्का भोजन पसंद करती थी। उनका मानना था कि शरीर को वही दीजिए जिसकी उसे जरूरत है, सिर्फ स्वाद के लिए नहीं। उनकी दिनचर्या में जाना उनका कहना था कि अगर आप रोज कुछ देर पैदल चलते हैं तो शरीर भी स्वस्थ रहता है और मन भी शांत रहता है। मुमताज जी ने कई मौकों पर ये भी कहा है कि खुश रहना और तनाव कम लेना खूबसूरती का बड़ा राज है। चेहरे की असली चमक महंगे मेकअप से नहीं बल्कि मन की शांति और मुस्कान से आ जाती है।
1: खुशी मैम, आपने उनकी सेहत का जिक्र किया है। अब मुझे उनका एक पॉडकास्ट याद आया जिसमें उन्होंने ये बोला था कि वो शाम को 4 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाती हैं और हल्का खाती हैं और समय पर खाना खाती हैं। और एक अच्छी बात और बताती हूँ, एक अंदर की बात और बताती हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके सेहतमंद रहने के लिए, मतलब सेहतमंद का राज ये है कि वो अक्षय कुमार के बताए हुए नियमों पर चलती हैं, उसका पालन करती हैं। मतलब जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो एक दूसरे से इंस्पायर्ड होके अपना फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं।
0: तो देखिए, जब इतने खूबसूरत अभिनेता अभिनेत्री अपनी फिटनेस का ख्याल रख रहे हैं तो दोस्तों हमें भी अपनी फिटनेस का ख्याल रखना चाहिए। हमें भी बाहर का जंक फूड अवॉइड करना चाहिए और अपने घर का बना हुआ फूड ही हमें लेना चाहिए।
1: और खाना समय पर आना चाहिए, जितनी भूख हो उतना खाएं, ज्यादा ना खाएं और वॉक करें और अपना सेहत पे ध्यान दें।
0: सुबह सुबह मेडिटेशन करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, क्योंकि देखो दोस्तों ये जो बॉडी हमारी है ना, ये भी एक मशीन है। आप इसको जितना चलाओगे ये उतना स्वस्थ रहेगी और आप जितना इसको आलसी बनाओगे ना तो ये उतनी ही बेकार हो जाएगी। और कहते भी है ना कि जो फिट है वो हिट है।
1: बिल्कुल सही बात। और आज अक्षय कुमार भी हिट हैं और मुमताज मैम भी फिट हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं कुछ और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिएगा जाने की अनुमति। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आया ना दोस्तों, तो हमें अपने सुझाव भी जरूर साझा कीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। बताइएगा जरूर आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, सुनते रहिएगा एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए।

0: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: मैं चाहता हूँ कि हम दोनों का बिजली का बिल एक ही एड्रेस में आए।
4: पहले कनेक्शन तय हो जाए।

0: नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हाजिर हूँ आपका अपना फेवरेट शो लेकर हेलो फरमाइश, जहाँ पर आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं। और दोस्तों कहते हैं ना कि कुछ गीत आवाज नहीं होते, वो गीत वो किसी की याद, किसी का इंतजार और किसी के चेहरे की मुस्कान होते हैं। और आज उन्हीं एहसासों को सुरों में सजाने का वक्त आ गया है। और बात करते हैं अपने कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, हेलो फरमाइश, हेलो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हाँ, नाम बताइए अपना।
1: जी
0: बताइएगा, रुकिए जी, कैसी हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छी, आपने कॉल उठा दी, थैंक यू।
0: मोस्ट वेलकम, बताइएगा आप कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छी हूँ जी, और आज मेरी कॉल लगी ना, मैं और ज्यादा अच्छी होगा।
0: अरे वाह, जब कॉल लग जाता है, घंटों इंतजार करना, कॉल लगाना, मेहनत करना और कॉल रिसीव होता है तो खुशी तो अलग ही हो जाती है, क्यों?
1: अलग हो जाती है। और जी पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास शायद मेरी दोस्त की कॉल लग जाए ना, तो मेरी खुशी ना दुगनी हो जाएगी और ज्यादा।
0: ओके, बताइएगा आप आज क्या सुनेंगे?
1: जी आज मैं सॉन्ग सुनना चाहती हूँ, तो है तो मैं हूँ।
0: ओके, और ये ट्रैक किनको डेडिकेट करना चाहते हैं आप?
1: ये ट्रैक स्पेशली मेरी दोस्त दर्शा फातिमा के लिए है।
0: ओके,
1: और भी कुछ मेरी सिस्टर है सुनने वाली।
0: हाँ जी,
1: जैसे की अफरोज फातिमा, फातिमा, नजमा आपकी, राबी आपकी और नरगिस आपकी है और लाइबा फातिमा।
0: ठीक है, सुनवाते हैं प्यारा से ट्रैक आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए डियर। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक, लौट कर आती हूँ मैं। तब तक आप भी मुझे कॉल लगाइएगा, हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुन गुनाते रहिए और ये प्यारा सा गाना एंजॉय कीजिएगा अभी।

0: गुड आफ्टरनून दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक अरिजीत सिंह साथ में अफसाना खान जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज। और साथियों कहते हैं ना कि जब लव खामोश हो तो दिल की बात हो जाती है, जब लव खामोश हो तो दिल की बात हो जाती है, जब कोई अपना पसंदीदा गीत सुनता है तो दूरियां भी कुछ पल के लिए पास आ जाती हैं। और अब आप भी अपने फोन के करीब आ जाइए, जल्दी से हमें कॉल लगाइए। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: जी मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलंदरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे मैडम जी।
0: जी बताइए कैसे हैं आप सब?
1: बहुत बढ़िया है मैडम जी, खेत में बैठे थे, कार्यक्रम भी सुन रहे थे।
0: ओके बताइए कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: मैडम जी बारिश नहीं हो रही है, धूप है, अभी भी गर्मी हो रही है। बारिश होना हमारे सोयाबीन इनको तो बारिश होना, मगर बारिश नहीं हो रही मैडम। जैसा जी जैसे हमारे सोयाबीन कपास के लिए वो जरूरी है, उससे कम बहुत है।
0: बारिश की नीड है अभी वहाँ पर, राइट?
1: नहीं मैडम जी बारिश नहीं बोले तो भी चलता, पहले गिर रही थी, लेकिन अभी तो ये 15 दिन में तो बारिश नहीं बोले तो भी चलता, थोड़ी थोड़ी गिर रही है।
0: ओके तो ये बताइएगा सर, कल रक्षाबंधन है, राखी फेस्टिवल है, आपने अपनी बहन के लिए क्या गिफ्ट खरीदा?
1: जी अभी कल जाते जाते रास्ते में ले लेंगे कुछ तो भी बहन के लिए, कल जाने का है ना, कल जाने का है, सुबह निकलेंगे हम यहाँ से 8 बजे तो 2-2.5 बजे पहुँच जाएंगे जीजी के वहाँ।
0: ओके
1: मिठाई लेके जाएंगे, नहीं तो वहाँ वो जो कुछ थोड़ा शगुन होता है तो शगुन दे देंगे।
0: अरे वाह,
1: पसंद रही थी।
0: हाँ जी ये भी है, तो बताइएगा आज कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं सर?
1: बजरंग की भाईजान की एक कव्वाली है, अदनान सामी की आवाज है, और तो जोली मेरे।
0: अच्छा ओके, अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में ना।
1: हाँ
0: तो ठीक है सर, सुनवा देते हैं मोहन जी आपको ये गाना, थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए फिर बन सुनते हैं ये प्यारी सी कव्वाली अदनान सामी जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में, फ्रॉम द मूवी बजरंगी भाईजान से। और जब ऊपर वाले से हम प्रार्थना करते हैं ना, तो वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनते हैं, देर से ही सही लेकिन सुनते जरूर हैं। चलिए सुनते हैं ये खूबसूरत सा गाना, कहते हैं ना कि प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं।

0: Resort and Spa Jim Corbett, Ramnagar, jahan banti hain dreamy weddings with private pool, jacuzzi rooms, grand banquet with 120 plus rooms, spa and much more.
1: Book now 92582-53081 and for more details WhatsApp 92582-53081.
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
5: कोई मिल गया
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने, बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। वक्त हुआ है 3:39 हो गए हैं एंड हमारे साथ हमारे अगले कॉलर भी कनेक्ट हो गए हैं, तो उनसे भी बातचीत कर ले रहे हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आप खुशी जी?
0: जी, आपको भी याद है आप सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी बोल रहा हूँ। कैसी हैं?
0: मैं ठीक हूँ सर, आप बताइएगा आप कैसे हैं और फैमिली में सब खैरियत से हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आपकी फैमिली में कैसे हैं सब लोग?
0: जी, आपकी दुआएं हैं सर, बहुत ही अच्छे हैं सब लोग।
1: जी, बस आपका ही प्रोग्राम सुन रहे थे और अच्छा लग रहा है। गीत भी सभी लिसनर की पसंद के बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो और भी अच्छा लग रहा है।
0: जी, अब बताइएगा सर, बाहर का मौसम कैसा है अभी?
1: इस टाइम बादल छाए हुए हैं।
0: अच्छा।
1: और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस टाइम।
0: ओके, तो बताइएगा आज आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं अपनी पसंद का?
1: जी, मोहम्मद रफी जी की आवाज में एक सॉन्ग है
0: जी,
1: सुबह नाई शाम नाई।
0: ओके,
1: इस तरह से ये सॉन्ग है, तो ये सॉन्ग प्ले कर दें आप।
0: ठीक है सर, ये ट्रैक प्ले कर देते हैं हम आपकी पसंद
1: का। मेरे साथ में इस गीत को सुनना चाहते हैं सैयद शारिक अली है, मेराज अंसारी है और बाबू अंसारी, ईदगाह मुरादाबाद से सफी अहमद अंसारी और जामा मस्जिद अगवानपुर से मोहम्मद आरिफ खान। और जो इस वक्त सभी लोग जो लाइव इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी के साथ सुनना चाहते हैं और आपके साथ।
0: ठीक है सर, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत। तो चलिए एवरीवन, आप भी जल्दी से कॉल लगाइए, बिना किसी देरी के मैं इंतजार कर रही हूँ।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। के साथ आपके दोस्त आरजे कृषि, और अभी आपने सुनाई मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज में प्यारा सा ट्रैक। बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: आदाब मैडम।
0: हाँ जी, आपको भी आदाब। क्या नाम है आपका?
1: मैडम मैं भोपाल एमपी से आरिफान मंसूरी बात कर रहा था। मैडम
0: जी, भोपाल से बात कर रहे हैं आप?
1: जी जी मैडम
0: जी, बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: बढ़िया है मैडम।
0: क्या करते हैं आप?
1: मैडम मैं टेलर हूँ, सिलाई का काम करता हूँ। अभी सिलाई कर रहा था और आपका प्रोग्राम सुन रहा था।
0: ओके वेरी गुड। तो भोपाल की रहने वाले हैं प्रॉपर?
1: नहीं मैम, भोपाल के पास एक गांव है, वहाँ के रहने वाले हैं, भोपाल में ही रहते हैं मगर अभी।
0: ओके सर, तो बताइएगा आज आपने इतनी दूर से कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: मैडम आप मैं लैला मजनू का गीत सुनवा दीजिए, इस रेस में पाजेब की झनकार के सत्ते।
0: जी सर, सुनवा देते हैं प्यारा सा गीत आपको। शुक्रिया आपने हमें कॉल किया।
1: मैडम हम कुछ दोस्तों के नाम लेते हैं।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: हमारे दोस्त हैं गजराज सिंह लोधी। क्या है, मैं तो एफएम बिलवाल से जुड़ा हुआ बहुत सालों से, हम बहुत सुनते हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि आप मुरादा सुनिए, और मैं दो तीन चारों से भी नया नया जुड़ा हूँ आपके स्टेशन से।
0: जी जी जी बिल्कुल सर, बताइए।
1: अब ये जो है परमानेंट जुड़ गए हैं आपसे, आपसे बात भी हो गई, अच्छा लगा
0: जी।
1: और भोपाल का मौसम मैडम अभी रिमझिम बारिश हो रही है यहाँ पे तो।
0: अच्छा, रिमझिम बारिश हो रही है?
1: जी जी जी।
0: अरे वाह, मौसम फिर तो बहुत सुहाना है।
1: बहुत सुहाना मौसम है मैडम
0: जी। और ये प्यारा से गीत आपको सुनवा देते हैं, ठीक है?
1: ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम,
0: मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन सुन लेते हैं प्यारा सा ट्रैक सर की पसंद का, और लौट कर आते हैं। तब तक आप भी कॉल लगाइए जल्दी से, हमारा मोबाइल नंबर है 98-378-96-896।
2: तराशा हुआ ये शोक बदन, इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। तुमसे हमसे बेहतर है ये पाजेब, इसी पाजेब में ढल जाने को जी चाहता है।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: Hi everyone, good afternoon. Once again, welcome back. आप सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6. मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी और समय हुआ है 3:45. तो आप किस सोच में गुम है? हाँ, जल्दी से कॉल लगाइए मुझे. हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896. ये हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है, आप कॉल लगा सकते हैं और अपना कोई भी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है कोई भी ट्रैक आप वो सुन सकते हैं, अपने सफर को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं. फिलहाल बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़ी है. हेलो फरमाइश.
1: हाय दी.
0: हेलो, क्या नाम है आपका?
1: मैं दरक्षा फातिमा बात कर रही हूँ. मैम आप कैसी हो?
0: मैं अच्छी हूँ दरक्षा, आप बताइए कैसे हैं?
1: अरे बहुत अच्छी हूँ मैम.
0: अच्छा ही रहना चाहिए सभी को, बताइए दरक्षा.
1: सभी को अच्छा रहना चाहिए.
0: हाँ, कैसा मौसम है अभी?
1: मैम मौसम तो बहुत अच्छा है. सुबह मतलब 5 बजे से सुबह तक बारिश हुई है.
0: सुबह 5 बजे से बारिश हुई है या
1: 11 बजे तक?
0: अच्छा, मॉर्निंग में 5 बजे से 11 बजे तक बारिश हुई है
1: जी.
0: ओके, और अभी फिलहाल करंटली कैसा वेदर है?
1: अभी मौसम बहुत अच्छा है मैम, धूप भी निकल रही है.
0: अच्छा, बादल है?
1: हाँ बादल है अभी.
0: ओके, तो बताइएगा आज कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: आज मैं अपनी बेस्टी फातिमा के लिए सुनना चाहती हूँ मरजावा मूवी का सॉन्ग.
0: हाँ बताइए कौन सा ट्रैक सुनना चाहती हैं फ्रॉम द मूवी मरजावा का?
1: बहुत आई कहीं याद है.
0: अच्छा, मगर इस बार तुम ही आना. तो देखो आपने इतने प्यार से इनवाइट किया है तो वो जरूर आएंगी.
1: हाँ मैम वो आएंगी पर मुझे बुला रही है वो, पहले उसके बाद आएंगी.
0: अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप चली जाइएगा.
1: हाँ मैम मैं जाने की सोच रही हूँ, अब जाना है मुझे अपने.
0: हाँ वेरी गुड, तो बताइएगा और किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: हाँ मैम मेरी बेस्टी रुपया फातिमा और मेरे सिस्टर है अफरोज फातिमा, नजम अप्पी, लाइबा काजमी और आप.
0: ठीक है, तो ये प्यारा से गाना आप एंजॉय कीजिएगा अपनी फैमिली के साथ एंड सभी फ्रेंड्स के साथ. ओके,
1: थैंक यू मैम,
0: मोस्ट वेलकम, बाय. तो चलिए एवरीवन सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी मरजावा, बहुत ही प्यारा ट्रैक है, सुन लेते हैं सब. उसके बाद मिलकर हम और भी नो मस्ती करने वाले हैं. देखते हैं अभी नेक्स्ट कॉलर कौन जुड़ेंगे, क्या उनकी फरमाइश होगी, वो जानने के लिए आप भी बेकरार रहते हैं ना. तो बस थोड़ा इंतजार और कीजिए.

0: क्या बात है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक अभी आपने सुना। और दोस्तों इस खूबसूरत गीत को गाया था जुबिन नौटियाल जी ने। अभी बात कर लेते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: राजेंद्र गंगवार, कसवा तहसील नवाबगंज, झुमका सिटी बरेली से आपसे वार्तालाप कर रहे हैं मैम जी।
0: जी सर बताएगा, काफी समय के बाद आज आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं।
1: हाँ जी मैम जी, जुड़े तो हैं लेकिन क्या किया जाए, हम तो डेली ट्राई करते हैं लेकिन कॉल नहीं लगती है, पता नहीं क्या सिस्टम है।
0: ओके
1: हाँ जी,
0: चलिए ये जो भी प्रॉब्लम है जल्दी से ठीक हो जाए। और बताएगा राजेंद्र सर, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: हमारे परिवार में सब लोग ठीक है मैम जी, और मौसम भी अच्छा है, खुशनुमा, और बारिश का मौसम हो रखा है फिर से दोबारा। सुबह से बारिश हुई थी और फिर से चालू होने वाली है हमें लगता है।
0: ओके, मतलब बादल तैयार हैं।
1: हाँ जी, और आप कैसे हैं मैम जी?
0: जी सर, हम भी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा आज आप क्या सुनना चाहते हैं?
1: हाँ जी, मूवी का नाम तो अभी बता रहा हूँ, रेशम की डोरी।
0: हाँ जी,
1: इसमें एक सॉन्ग है, बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। मैम जी यही सॉन्ग सुनवाती है, और कुछ दोस्तों को नाम भी लेंगे मैम जी।
0: जी जी बताइएगा।
1: हाँ जी, सबसे पहले तो हमारे यही राजू यादव जी हैं, और हमारे भूपेंद्र वर्मा जी हैं, और श्रीपाल गोयल जी हैं, दिनेश कौजा जी हैं, आरजेस पूनम जी हैं, और सोनू गौतम जी हैं, और जितने भी दायित्व होता सुनना है सभी को। और मैं भी कहते हैं हमारी खुशियों को अच्छे से जानती है बहने, हमारी कमियों को भी पहचानती है बहने, फिर भी हमें सबसे ज्यादा मानती है बहने।
0: सेम टू यू सर, आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, क्योंकि कल रक्षाबंधन का फेस्टिवल है लेकिन तैयारियां जोरों शोर से चल रही हैं और सभी को अपनी बहनों का इंतजार है कि कब दीदी घर आएंगी, है ना?
1: हाँ
0: जी, तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको सर। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: आपका भी धन्यवाद मैम जी,
0: नमस्कार आपको भी सर। तो चलिए एवरीवन सुनते हैं शानदार सा ट्रैक, एंड लौट कर मैं आने वाली हूँ वापस बस इस प्यारे से गाने के उस पर। आप भी मुझे जल्दी से कॉल लगाइए दोस्तों, इतना प्यारा सा ये शो चल रहा है और आप हैं कि बस बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, कॉल भी लगा लीजिएगा।

0: सिर दर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: स्किन एलर्जी, मस्त से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग, प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त आरजी खुशी। और अभी आपने सुना ये प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी रेशम की डोरी, जो 1974 में आई थी। और इस खूबसूरत गीत को गाया था सुमन कल्याणपुरी जी ने। बात करते हैं अभी अपने नेक्स्ट कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, क्या नाम है आपका?
1: मैं जय बात कर रहा हूँ
0: जी। बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, आप कैसे हैं मैम?
0: हाँ जी, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ सर। अपना संभल से आप बात कर रहे हैं जय, राइट?
1: जी,
0: क्या करते हैं आप?
1: मैं अकाउंट्स देखता
0: हूँ। ओके, और एफएम मुरादाबाद कब से सुन रहे हैं आप?
1: मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ।
0: ओके, कैसा लगता है हमारा शो बताइए जरा।
1: बढ़िया लगता है, अच्छा। मैम के नाम टाइम से सुन रहा
0: हूँ। ओके, तो बताइएगा कैसा मौसम है आपकी साइड?
1: हमारी साइड भी बढ़िया मौसम है, सुबह से बारिश हो रही थी।
0: ओके, तो अभी बारिश रुकी है?
1: हाँ, अभी रुकी हुई है
0: जी। बताइएगा आज आपने कॉल किया है, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: तो मैं एक फरमाइश करना चाहता था, सिद्धत मूवी का एक गाना है चिट्टा करके
0: जी,
1: तो मैं डेडिकेट करना चाहता था मुस्कान जी को।
0: ओके, तो सुनवाते हैं प्यारा सा ट्रैक आपको, ठीक है सर? थैंक यू कॉल करने के लिए। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मुस्कान जी को। सर ने ये गाना डेडिकेट किया है, नाम भी इतना प्यारा सा है और गाना भी अच्छा ही है, तो सुन लेते हैं। उसके बाद आपसे भी करेंगी बातचीत, जल्दी से आप कॉल लगाइएगा हमें।

गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना है प्यारा सा ट्रैक मनन भारद्वाज जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में। एंड अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, जानते हैं उनकी फरमाइश भी यहाँ पर। हेलो फरमाइश, हेलो।

बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए एवरीवन, सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक। लौट कर आती हूँ मैं, तब तक आप भी कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। मैं आपके साथ आपकी दोस्त आरजे खुशी।

0: हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। आरजे खुशी आपके साथ है और हमारे साथ एक लिसनर भी जुड़ी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, जय श्री राम।
0: जय श्री राम मैम, कैसे हैं आप?
1: जी मैं अच्छी हूँ, आप बताओ कैसी हैं?
0: जी मैं भी ठीक हूँ। अपना नाम बताइएगा। नीतू जी लाइन पार से बात कर रही हैं। बताइए मैम, कैसे हैं आपके परिवार में सब लोग?
1: परिवार में सब बढ़िया, आप बताइए। स्टूडियो में सब कैसे?
0: हाँ जी, स्टूडियो में सब बहुत ही अच्छे हैं। मैम आप बताइएगा, राखी की शॉपिंग हो गई है आपकी? अभी बाकी रह गई है।
1: राखी की शॉपिंग तो मैंने कर ली है।
0: अच्छा, तो कितने घंटे लगे आपको राखी खरीदने में?
1: कई घंटे लगे, मुझे तो बहुत टाइम लगता है मैम हकीकत में।
0: अच्छा ओके, तो मैम ये बताइए, सच सच बताइएगा, कितनी शॉप आपने चेंज की है कि नहीं इस दुकान पे मुझे अच्छी नहीं आ रही है, पसंद नहीं आ रही है, मैं दूसरी शॉप पर देखती हूँ?
1: बिल्कुल, मैंने मतलब कुछ भी नहीं, तो 6-7 दुकान मैंने देख ली।
0: ओके, चेंज की उसके बाद आपने राखी आपको फाइनली पसंद आई?
1: बिल्कुल।
0: बहुत ज्यादा सोचना होता है ना मैम।
1: मुझे बहुत टाइम लगता है।
0: हाँ, आप बहुत बारीकी से बहुत चीजों को डिसाइड करते हैं, तब आप सोचते हैं कि चलो। मुझे भी मैम, मेरे मन में भी ये जहन में ख्याल आता है कि शायद किसी और शॉप पर हम ट्राई करें, कुछ अच्छा मिल जाए।
1: हाँ ऐसे ही लगता रहता है मन में।
0: तो बताइएगा मैम, आज क्या सुनेंगे आप?
1: आज सुनना है बस राखी से जुड़ा ये गाना सुनवा दीजिए।
0: अच्छा
1: राखी का
0: त्योहार,
1: राखी से गाना
0: सुन लेते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुनवाते हैं प्यारा सा गीत आपको। तो तैयारी हो गई है आपकी, आपकी मम्मी के घर जाने की तैयारी हो गई है?
1: तैयारी हो गई है।
0: कितने दिन से तैयारी कर रही थी आप?
1: नहीं देखो, कितने दिन से तो नहीं, बस इतना ही लंबा टूर नहीं है हमारा।
0: अच्छा पास में ही है। ओके, तो कितना टाइम लगता है जाने में?
1: बस आधा पौन घंटा।
0: ओके
1: लगता है।
0: लेकिन मैम बहुत खुशी होती है ना मम्मी के घर जाने की?
1: हाँ लेकिन हाथ को हार भी है और खुशी थोड़ी डबल हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, सब लोग घर पर मिलते हैं, सारी बहनें आती हैं, भाई एक साथ होते हैं।
1: हाँ यही डबल खुशी होती है
0: जी। तो ये प्यारा से गाना आपको सुनवा देते हैं मैम।
1: जी
0: थैंक यू कॉल करने के लिए मैम।
1: थैंक यू,
0: हैप्पी रक्षाबंधन आपको। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं मैम की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक और आप भी मुझे कॉल कीजिएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये खूबसूरत सा गाना एंजॉय कीजिएगा।

0: You're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: करो।
1: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
2: कोई मिल गया,
3: कोई मिल गया।
1: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। मैं हूं आपके साथ आपके अपने खुशी। शो का नाम है हेलो फरमाइश और ये फोन इन कार्यक्रम है। आप भी जल्दी से कॉल कीजिएगा, हमें इंतजार है आपके कॉल का। और सुनिएगा अपना फेवरेट ट्रैक। बात कर लेते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम मैम शंकर इस्लाम
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं आप बताइएगा? बताइएगा कैसे हैं आप सब?
1: ठीक है मैम,
0: ठीक ही रहना चाहिए सर। बताइए आज क्या फरमाइश है आपकी?
1: गाना सुन रहा है लतीफ में जिसकी जो लिखा था वो तेरी मैं दिल
0: का। ओके, और ये ट्रैक किन के साथ सुनना चाहते हैं आप?
1: वसीम अकरम है, मोहम्मद सालिम है, मोहम्मद सामिल है।
0: ओके, तो सभी के साथ सुनवाते हैं ये प्यारा सा गाना आपको, ठीक है सर?
1: सही है
0: जी। तो चलिए विवान, आप भी मुझे जल्दी से कॉल कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 9837896896। रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। और हाँ, फोन लगाना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा।

0: देखिए दोस्तों, 4:31 हो गए हैं और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अभी भी आपके पास आधा घंटा है, जल्दी से कॉल लगाइएगा। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हेलो, हाँ जी, क्या नाम है आपका?
1: हेलो,
0: आपको आवाज आ रही है सर?
1: हाँ जी आ रही है। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, अपना नाम बताइएगा।
1: जितेंद्र बोल रहे यार
0: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं
1: आप?
0: ओके, तो बताइएगा सर, आज आपने कॉल किया है हेलो फरमाइश में, कौन सा गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: फरिश्ते फिल्म का गाना था।
0: अच्छा, फरिश्ते मूवी का गाना सुनना है?
1: वो गाना के बोले जान गई मान गई टाइप कुछ बोले।
0: अच्छा ठीक है, सुनवा देते हैं आपको ये गीत। ठीक है जी, तो चलिए श्रोताओं सुन लेते हैं सर की पसंद का ये प्यारा सा ट्रैक, भाई बहन का प्यार, फ्रॉम द मूवी फरिश्ते से ये गाना सुनना चाहते हैं। और मैं लौट कर वापस आने वाली हूँ, बस इस प्यारे से गाने के उस पर आप ही मुझे जल्दी से कॉल लगाइए।

0: जी दोस्तों, संसार में भाई बहन का जो प्यार होता है वो सबसे अनमोल होता है, सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। और ये अभी आपने ट्रैक सुना फ्रॉम द मूवी फरिश्ते से, जो 1991 में आई थी, और इस खूबसूरत गीत को गाया था मोहम्मद अजीज, साथ में अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल जी ने। बात करते हैं अभी अपने अगले कॉलर से। हेलो फरमाइश।
1: हेलो
0: जी, आपको भी आदाब, अपना नाम बताइएगा। जी बताइएगा, कैसे हैं आप? सब
1: बढ़िया है, आपकी दुआएं। आप बताइए, आपके सब लोग कैसे हैं?
0: हाँ जी, सभी बहुत ही अच्छे हैं। आप बताइएगा, आज कॉल किया है आपने, क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: तो हफ्ते जीवन में एक गलती हो रहा है,
0: जी
1: ये हमारे साथ में डॉक्टर सैयद सारू के अली है, डॉक्टर खाने से।
0: हाँ जी,
1: इरशाद हुसैन अंसारी है।
0: ओके,
1: रफाव साहब है रामपुर से, अगर मेरी बात सुन रहे हैं रफाव साहब रामपुर से, मुझे कॉल कर ले, मैं उनको मैसेज देना चाहूंगा, मुझे उनका इंतजार है।
0: ठीक है सर,
1: मेरे पास से निकल गया है।
0: जी, तो वो आपको सुन रहे होंगे तो कॉल आपको जरूर करेंगे, और आपने हमें कॉल किया उसके लिए शुक्रिया आपका सर। मोस्ट वेलकम सर। तो चलिए एवरीवन, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और करेंगे आपसे भी बातचीत। आप भी कॉल

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 705-07-0552।
3: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: ये खूबसूरत गीतों का सिलसिला आप एवरी डे इंजॉय कर सकते हैं मंडे टू सैटरडे। एंड ये लाइव फोनिंग कार्यक्रम होता है, 2 घंटे तक चलता है, 3 से 5, और आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारा ऑफिशियल नंबर है 9837896896। और अभी बात करते हैं अपने अगले फरमाइशकर्ता जी के साथ, कौन कहाँ से कनेक्ट हुए हैं उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार मैम
0: जी, आपको भी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताइएगा आप सर।
1: जी कामेंद्र बोल रहा हूँ, डिडोरा मोरादाबाद से।
0: कामेंद्र जी बताइए, कैसे हैं आप सर?
1: जी हम बढ़िया मैम, आप बताइए।
0: मैं भी ठीक हूँ सर। बताइएगा आज क्या सुनना चाहते हैं आप?
1: जी आज मैम रक्षाबंधन का कोई भी गाना सुनवा दीजिए आप।
0: अच्छा, रक्षाबंधन का कोई भी ट्रैक प्ले करें। ठीक है सर, सुनवा देते हैं ये गाना आपको। थैंक यू कॉल करने के लिए।
1: थैंक यू।
0: तो चलिए व्यूअर, कामेंद्र जी की पसंद पर ये प्यारा सा ट्रैक सुनते हैं, और उन्होंने इतने प्यार से हमें थैंक यू बोला है तो हम मोस्ट वेलकम बोल देते हैं सर को, और सुनते हैं एक प्यारा सा ट्रैक।

हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का वेलकम है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर। और अभी आपने सुना ये ब्यूटीफुल ट्रैक एंड इस खूबसूरत गीत को गाया था आशा भोसले और साथ में किशोर कुमार जी ने। तो अभी बात करते हैं अपने अगले कॉलर से, कौन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या उनकी फरमाइश है, वो हम उन्हीं से जान लेते हैं। हेलो फरमाइश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फौजिया, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी बताइएगा, क्या फरमाइश है आपकी? ओके, तो ये ट्रैक हम आपको सुनाते हैं मैम, ठीक है? ओके, तो चलिए दोस्तों सुन लेते हैं ये प्यारा सा ट्रैक और मुझे दीजिएगा जाने की अनुमति। मैं मिलूंगी आपसे कल सुबह, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, यूं ही मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और वंस अगेन इन एडवांस हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल माय डियर लिसनर्स। एंड आप भी इस फेस्टिवल को अच्छे से अपनों के साथ सेलिब्रेट कीजिएगा, मुस्कुराइए, खुश रहिए और ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी दीजिए अपने बहन भाइयों को, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है ना बड़ा ही प्यारा होता है ना। चलो मैं चलती हूँ, आप बस इसी खुश रहिए हमेशा।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
4: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार, तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
6: हमारी एम्बेसी वहाँ के सरकार से बातचीत कर रही है कि किस प्रकार से वहाँ से निकाला जाए। 21 भारतीय नागरिक जो तमिलनाडु से हैं, उनको रेस्क्यू कर लिया गया है और ये लोग वहाँ से निकलने के बाद काठमांडू आएंगे और काठमांडू से फिर भारत की यात्रा करेंगे।
7: चीन में फंसे भारतीय नागरिकों के बारे में श्री जायसवाल ने बताया कि पेचिंग में भारतीय दूतावास उनकी सुरक्षित निकासी के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जी युजोव से

निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादिर जवारोप के निमंत्रण पर 21 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन SCO के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष SCO की स्थापना की 25वीं वर्षगांठ भी है। भारत वर्ष 2017 में संगठन का पूर्ण सदस्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देशभर में ऐसा खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्राप्त हो। मेरा युवा भारत लेह ने EJM गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज लेह की NSS इकाई के सहयोग से खेलो इंडिया संवाद खेल की बात प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें 250 विद्यार्थियों और युवा शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विश्व के साथ देश का संबंध हमेशा राष्ट्रहित सर्वोपरि के हित के अनुरूप होना चाहिए। भारतीय विदेश सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि वे ये सुनिश्चित करें कि भारतीय दूतावास आवश्यकता के समय नागरिकों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल में जनभागीदारी का आह्वान किया है। दानवीर पहल के अंतर्गत व्यक्ति और संस्थाएं सत्यापित ग्राम पंचायतों को सीधे डेस्कटॉप कंप्यूटर दान कर सकते हैं। ये प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विवेकानंद केंद्र के अध्यक्ष A. बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण के कार्यों के लिए समर्पित था। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा। फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में श्रीलंका ने खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी में 9 विकेट पर 503 रन बनाए थे। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला 1-0 से अपने नाम कर ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अब पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

0: हेलो, दिस साइड आर्जेरीना एफएम मुरादाबाद 89.6। और श्रोताओं, आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूं मैं, यानी कि HPV टीकाकरण लगवाना, यानी कि टीका लगवाना हमारे लिए क्यों जरूरी है और ये आगे चलकर हमें किन किन बीमारियों से बचा सकता है। इसी टॉपिक पर हम बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। तो मैम से मैं जानना चाहूंगी, आप ही अपने बारे में बताइए।
1: बिल्कुल, हेलो रीना जी
0: मैम,
1: और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी हूँ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, जिला महिला अस्पताल मुरादाबाद।
0: तो मैम, आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि HPV टीकाकरण है वो लगवाना क्यों जरूरी है।
1: HPV टीकाकरण बहुत जरूरी है क्योंकि ये बहुत सारे कैंसर्स होते हैं, जैसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, और जो प्राइवेट पार्ट है जननांग में कुछ वार्ड्स भी होते हैं, कैंसर के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, इन सबसे बचाव करता है। और इसका जो एफिकेसी है वो 90% तक है। अगर ये सही उम्र में लगवा लिए गए, सही डोज में, सही उम्र में लगवा लिए गए, तो आगे चल के इससे बहुत बचाव हो सकता है। और इंडिया के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इंडिया में सर्वाइकल कैंसर से मृत्यु बहुत ज्यादा होती है, इसका बर्डन हमारे देश में बहुत ज्यादा है।
0: तो मैम, इसकी कोई एज लिमिट होती है?
1: वैक्सीनेशन के लिए 9 साल से 14 साल की उम्र की लड़कियां और लड़के,
0: मतलब लड़कों भी?
1: बिल्कुल, क्योंकि सिर्फ ये सर्विक्स का ही कैंसर नहीं कॉज करता है, ये प्राइवेट पार्ट्स में वार्ड्स, जेनिटल वार्ड्स और ओरोफेरिंजियल कैंसर्स हैं, जैसे मुंह का, गले का, बहुत तरीके के और भी कैंसर्स हैं जो कॉज करता है, और वो लड़कियों में भी हो सकते हैं और लड़कों में भी हो सकते हैं। ये सब चीजें बहुत आगे चल के एज में पता चलती हैं, लेकिन उसके होने की शुरुआत पहले से ही हो जाती है, इसलिए 9 साल से 14 साल की उम्र के बीच में ये लगवा लिया जाए। जब तक बच्चे स्कूल गोइंग एज ग्रुप में हैं, स्कूल वाले में हैं, उनकी शादियां नहीं हुई हैं, अभी कोई किसी तरीके के फिजिकल कॉन्टेक्ट्स नहीं हुए हैं, उसी उम्र में ये लगवा लिए जाए तो आगे चल के एक बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी से बचाव कर।
0: मैम, क्या 14 साल के बाद भी हम लगवा सकते हैं?
1: 14 साल के बाद भी लगवाए जा सकते हैं। जितनी उम्र बढ़ जाती है उतना उसका एफिकेसी थोड़ा सा कम हो जाता है, जब फिजिकल कॉन्टेक्ट हो जाते हैं उसके बाद एफिकेसी थोड़ी कम होने लगती है, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना जल्दी से जल्दी लगवा लें उतना ज्यादा बेटर इसका रहेगा इफेक्ट।
0: तो मैम, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि HPV टीका सही एज में लगवाना क्यों जरूरी है और इसका असर जो बच्चों के ऊपर पड़ने वाला है उसका असर क्या होगा?
1: देखिए, वैक्सीनेशन बिल्कुल सेफ है, 9 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन लगवाई जाती है, इसकी डोजेज होती है, कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं, अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट भी लगा रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी इसका अवेलेबल है, 4 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन हैं, 9 स्ट्रेन्स वाले वैक्सीन है जो उनसे बचाव करते हैं, जो ये सब बीमारियां कॉज करते हैं, अगर कुछ 2 डोज में लगवाई जाती है।
0: अच्छा, 2 डोज,
1: हाँ। और अभी जो गवर्नमेंट लगा रही है वो 14 साल की सभी बच्चियों को लगा रही है, वो 1 डोज भी इफेक्टिव है, ये देखा गया है रिसर्च में, वो सिंगल डोज भी इफेक्टिव है, तो वैक्सीनेशन सेफ है। थोड़ा बहुत इंजेक्शन से जो किसी को दर्द हो गया ये चीजें हो सकती हैं, लेकिन नॉर्मली वैक्सीनेशन से बहुत साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। आप ये देखें कि आगे चल के कितनी बड़ी जानलेवा बीमारी से बच रहे हैं, अगर सही उम्र में लगवा लिया गया तो 90% चांस खत्म हो जाएगा वो बीमारी होने का।
0: मैम, बहुत से घरों में भ्रांतियां भी है कि हम ये टीका नहीं लगवाएंगे, कभी लगवाने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो जाएगा, तो मैम कुछ ऐसा भी है क्या?
1: भ्रांतियां होती हैं लोगों को, जब भी कोई नई चीज लगती है लोग घबराते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ समय पहले कोविड आया था, उसके लिए भी बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया कि हमारे शरीर में कुछ असर ना हो जाए। तो देखिए, देश इतना आगे बढ़ गया है और विज्ञान जो है, टेक्नोलॉजी जो है, वो इतनी आगे बढ़ गई है, जितने भी वैक्सीन एडमिनिस्टर किए जाते हैं ये सब के ट्रायल्स होते हैं, बहुत फेजेस में ये वैक्सीन चेक की जाती है कि इनसे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, फिर बहुत सारे 4-5 स्टेजेस, फेज 1-2 बहुत सारे ऐसे ट्रायल्स होते हैं, वो जब सब फेजेस को वो वैक्सीन क्रॉस कर जाती है कि इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है, तभी वो मार्केट में अवेलेबल होती है। और गवर्नमेंट, आप सोचिए, गवर्नमेंट अगर कोई चीज लगा रही है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिना जांच पड़ताल के कोई चीज किसी को भी लगा दी जा रही है।
0: जी, बिल्कुल।
1: वैक्सीन बिल्कुल सेफ है और वैक्सीन सबको लगवानी चाहिए, इससे बिल्कुल मत डरिए। हाँ, कभी कभी कुछ ग्रुप्स में ये सोच होती है, वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को पता नहीं है, अभी नई चीजें उन लोगों को पता, जानकारी का माध्यम नहीं है, तो अपने करीबी आप गवर्नमेंट सेटअप्स में, प्राइवेट सेटअप्स में जहां भी जाना चाहें, अपने करीबी डॉक्टर्स से मिलिए, उनसे बात करिए, पूछिए, ये बिल्कुल सेफ है और आपके बच्चों को आगे आने वाले बहुत बड़े काल से ये बचाएंगे। शरीर में कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता है, किसी कोई सोचे कि हमारे कहीं ऐसा ना हो कि सर्वाइकल कैंसर, बच्चेदानी का जहां नाम आ जाता है लोग वैसे भी घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चल के इनके बच्चे ना हो सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है और आप ये समझे कि आप लोगों को बचाने के लिए लगाया जा रहा है।
0: मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या सिर्फ एक छोटा सा टीका आगे चलकर सर्वाइकल कैंसर जैसे गंभीर बीमारियों से हमें बचा सकता है?
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसमें स्ट्रेन्स हैं, सिर्फ कैंसर नहीं, बाकी भी जितने सिर्फ सर्वाइकल कैंसर ही नहीं, सर्वाइकल कई लोग असल में इससे भी, सर्वाइकल गले की हड्डी को भी कहते हैं ना, तो कई लोग उससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन सर्विक्स जो है वो बच्चेदानी के मुंह को भी कहा जाता है।
0: ओके,
1: तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है।
0: ओके, मुझे भी आज पता चला है।
1: अच्छा, तो ये बच्चे, ये वो गर्दन की हड्डी जो सर्वाइकल लोगों को गर्दन में दर्द हो जाता है, ये वो नहीं है, ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है। और बाकी ओरोफेरिंजियल कैंसर होते हैं जो मुंह में, तो क्योंकि एक ही कैंसर में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे लोगों को आगे चल के बहुत परेशानी होती है, इसलिए लगवाना चाहिए।
0: मैम गांव में यानी कि HPV टीके को लेकर अलग अलग भ्रांतियां होती है, जो जैसे कि मैंने आप सभी से पहले पूछा आपसे कि माता पिता चाहते कि ये टीके ना लगवाए, कभी ऐसा ना हो कि आगे चल कर कोई प्रॉब्लम हो जाए।
1: इसके लिए जो ANM दीदी लोग हैं, आशा लोग हैं, बहुत सारे लोग वहाँ जाते भी हैं, उन लोगों से अगर किसी को भी कोई डाउट है तो जाएं, उन लोगों से पूछे, जब वो लोग घर में आते हैं पूरा इन्फॉर्मेशन लें। अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है, आपके बच्चों को कोई बड़ी प्रॉब्लम में भी डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगवाएंगे तो होगा ही होगा, लेकिन इसको प्राथमिकता इसलिए दी जा रही है क्योंकि जब ये हो जाता है तब ये जिस स्टेज में पता चलता है, अगर ये हो गया किसी को तो ये जिस स्टेज में पता चलता है उस स्टेज में कैंसर बहुत आगे बढ़ चुका होता है। उस स्टेज में जब हमको पता चला तो कई बार तो सर्जरी संभव होती है, लेकिन उसके बाद भी रेडिएशन है, कीमोथेरेपी है, दवाइयां लगवाई जाती है, लेकिन कई बार ये इतनी आगे स्टेज में पहुंच चुका होता है, इसके सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। तो जब तक इंसान को पता चलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, तब तक ये उसके शरीर में पूरा फैल चुका होता है। एक बार खून में आ गया या एक बार इसने आसपास के अंगों को उसमें ले लिया, जैसे हमारी आंतें हैं और यूरिनरी ब्लैडर है, आप बहुत सारी चीजें, वो जैसे जैसे कैंसर बढ़ता है वो अपने आसपास के सारे टिश्यूज को ले लेता है। एक स्टेज में कैंसर ऐसे भी स्टेज में आ सकता है कि जब आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते, आप सर्जरी करके उसको निकाल नहीं सकते, सिर्फ आपको पता है कि ये मरीज जो है अब ये जाने वाला है, सिर्फ आप उसका दर्द कम करने के लिए उसको दवाई दे सकते हैं, लेकिन आप उसके जीवन को रोक नहीं पाएंगे। तो जब तक आपको ये, जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब हमें कोई परेशानी नहीं है तो हम क्यों लगवाएं,
0: कभी कभी ये भी लगता है उनको कि अभी तो यार बीमारी छोटा ही तो है, हम बाद में देखने,
1: लेकिन जब बाद में देख लेंगे वाली चीज है, उस स्टेज पे बहुत ज्यादा ये कैंसर बढ़ चुके होते हैं, तब पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। और उसमें दर्द भी होता है जब ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत तरीके के शरीर में चेंजेस आते हैं और परिवार का वो सदस्य फिर जीवित ही नहीं रह पाता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप अभी इसकी जानकारी लें और सही समय पे टीकाकरण करवाएं, जिससे आपके बच्चे आगे के लिए सुरक्षित रहे।
0: मैम एक छोटा सा मैसेज जो देना चाहें,
1: छोटा मैसेज, ये स्कूल्स में भी लगवाई गई है, स्कूल्स में भी मुझे पता चलता है कई बार कि माँ बाप जो है वो बच्चों को डर के मारे नहीं भेज रहे हैं। गवर्नमेंट ने बीच में इनिशिएटिव लिया था स्कूल्स में भी लगाने का, तो कई माँ बाप डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे थे, लेकिन आप लोग जाइए, सब जगह लगवाइए, गवर्नमेंट सेटअप्स में जाइए, 14 साल की बच्चियों को लग रहा है, सिंगल डोज में भी लग रहा है और भी इसके डोजेज हैं, आप लोग लगवाइए, पता करिए इस चीज के बारे में। बिना पता हुए अधूरी नॉलेज से अपने बच्चों का फ्यूचर खतरे में ना डालें, क्योंकि अभी बच्चे इस स्टेज में नहीं है, 9 से 14 साल के बच्चे बहुत ही कम उम्र के बच्चे ही हैं, उनको तो अभी दुनिया का पता नहीं है, कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में आ सकती है नहीं पता है, लेकिन आप लोग को पता है तो आप लोग की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आने वाले इस खतरे से बचाएं, उनको बताएं, आपस में आप लोग डिस्कस करिए, कंफ्यूजन है तो लोगों से बात करिए, डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन सही तरीके से लीजिए, ये नहीं कि आपने जिससे पूछा है उसको भी नहीं पता है
0: जी।
1: अपने करीबी डॉक्टर्स के पास जाइए, आशा है, आंगनवाड़ी है, ENM है, वो लोग आपको सही सेंटर्स पे लेके जाएंगे, वहां से सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और फिर ये डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जो इग्नोरेंस है, लापरवाही है, वो आगे चल के आपके बच्चे की जान को बहुत खतरे में डाल सकती है। तो आपके पास ये मौका है कि आप उस चीज से अपने बच्चों को बचाएं। सरकार भी इस चीज में पूरा ध्यान दे रही है, क्योंकि सब लोग यही चाहते हैं कि उस देश के नागरिक सुरक्षित रहें।
0: जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बोला सिंगल डोज, ठीक है, जो डबल डोज अगर लगवाते हैं तो गैप कितना होना चाहिए?
1: डबल डोज के भी अलग वैक्सीन का अलग टाइमिंग है, वो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, अलग स्ट्रेन की है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे।
0: तो चलिए श्रोताओं,
1: अभी जो सरकार दे रही है वो सिंगल डोज में भी बहुत इफेक्टिव मानी गई है, इसीलिए वो सिंगल डोज में भी लाए गए, क्योंकि कई बार लोग सेकेंड डोज के लिए नहीं आ सकते हैं, तो आप लगवाइए इसको।
0: अच्छा लगा,
1: थैंक यू रीना जी।
0: और मैम की आवाज भैया जितनी अच्छी है ना, वो इतनी बहुत प्यारी
1: आवाज आपकी भी बहुत अच्छी है, और आपका रेडियो हम लोग सब सुनते हैं, और आपकी आवाज जब लोगों के पास, श्रोताओं के पास पहुंचेगी, तो मुझे लगता है अगर उनमें हम लोगों के कुछ बताने से या आप लोगों के कुछ इनिशिएटिव लेने से हमारे देश के लोगों में कुछ पॉजिटिव चीज आए, लोग अपना सेहत इंप्रूव कर पाए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऑल द बेस्ट बेस्ट विशेस आप लोगों के आगे के एंडेवर्स के लिए।
0: थैंक यू सो मच मैम। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता जो भाई गलत धारणाएं थी उनको आज क्लियर हो गई होंगी कि भैया HPV टीकाकरण है ना, वो लगवाना बहुत जरूरी है। बाय मैम।
1: बाय बाय।

0: सच में यार प्यार तो मुझे भी आ गया है। इतना अच्छा गाना सुनते सुनते मैं भागा चला आया हूँ। मुझे पता लगा यार रीना तो अभी ऑफिस में नहीं है, वो तो आज घर गई है, छुट्टी पे है, बिकॉज कल रक्षाबंधन है। ऑफ कोर्स यार हर किसी को घर जाना तो मांगता है ना, और हमारी राखी भी हो ही जाएगी सेलिब्रेट। लेकिन अभी फिलहाल आपकी शाम को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए और यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए और तमाम सारी अपडेट शहर में क्या चल रहा है वो सब देने के लिए मैं आ गई हूँ आपके स्टेशन पे। काफी बढ़िया गाना है यार ये, काफी एकदम हैपनिंग सा गाना तो है ही, मतलब थोड़ा सा एकदम ढिंचैक वाला गाना, एकदम पुराने टाइम का जो ये वाइब है ना, ऑफ कोर्स आपको मिल रही है यहाँ पर, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं और आपका वेलकम करते हैं। आज की शाम 5:37 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 FM पे RJ आनंद को, जहाँ बातें होती हैं दिल से दिल तक। ढेर सारी बातें लेकर और बहुत सारी जानकारियां लेकर यहाँ पर मैं हूँ। आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़िए 9837896896 पर, ठीक है। हम इंतजार है आपके प्यारे प्यारे व्हाट्सएप मैसेजेस का, मैं अभी आता हूँ आपसे ढेर सारी बात करूँ।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

जैसे जैसे शाम होती है ना बॉस, मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे वैसे चीजें ना एकदम चेंज होने लगती हैं। सुबह होती है अलग वाइब होती है, शाम होती है अलग वाइब होने लगती है ना। तो जैसे जैसे शाम होती है ना, ये जैसे जैसे शाम का समय होता है वैसे वैसे चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, क्योंकि हम ऑफिस से आते हैं, घर जाने का टाइम होता है, छुट्टी होने का टाइम होता है, बहुत सारे लोग शॉपिंग पे निकलते हैं, कुछ लोग थैला उठाकर मंडी की तरफ भागते हैं कि चलो यार सब्जी लेकर आ जाते हैं ना शाम के लिए, तो मतलब सुबह तक की इनफैक्ट। तो बहुत सारी चीजें होती हैं शाम होते होते, अभी शाम के ऊपर भी बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल ही गाना।

0: लापता लेडीज का ये गाना सजनी रे। सच में यार इस गाने से तो मतलब एक अलग ही एक्सपेक्टेशन है भाई साहब। हेलो जी, हेलो, कैसे हालचाल है? वेरी गुड इवनिंग, आनंद के साथ हैं आप। ये है थर्सडे की शाम जहां बातें हो रही हैं दिल से दिल तक वाली। आई नो मैं आपको सुबह सवेरे मिलता हूं, आज भी मैं बहुत टाइम के बाद आपको मिला हूं। आई थिंक एक हफ्ते से भी ज्यादा दिन हो गए थे जब मैं आपको अभी मिला हूं, एंड अभी शाम को भी मिलना हो जाएगा। मेरे को पता भी नहीं था यार, मतलब सीरियसली नहीं पता था कि आज मेरे को आने को मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हुई। हो सकता है आप किसी और को भी मेरे साथ ज्वाइन कर लें अभी आज की शाम, मतलब किसी और को भी सुनने को मिल जाए आपको किसी और की आवाज हमारे साथ शो में। फिलहाल वक्त जरा मिला लेते हैं, 5:00 कितना हो रहा है भाजी, 41 मिनट, यानी 5:41। मैं अभी मुरादाबाद शहर में किसी काम से निकला था और मैंने देखा है भाई साहब, मतलब मौसम तो बहुत सुहाना हो रहा है, लेकिन शॉपिंग की जबरदस्त वाली बरसात हो रही है। मतलब मार्केट में आप जिस जहां पर भी जाओ आपको रश ही रश देखने को मिलने वाला है, बिकॉज कल रक्षाबंधन है, तो तमाम सारे जो लोग हैं अभी अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, बहुत सारी लेडीज अपने घर की तरफ अभी निकल रही हैं, और कुछ लोग अभी सिर्फ शॉपिंग के मूड में हैं। मैं देख रहा था कुछ लोग राखी खरीदते नजर आ रहे हैं, तो कुछ लोग मिठाइयों की शॉप पर भी हैं। आप क्या कर रहे हो, आपके क्या प्लान्स हैं रक्षाबंधन को लेकर, क्या आप शॉपिंग पे जा रहे हैं? तो जरा संभल के जाइए, सतर्क रहिए, क्योंकि देखिए ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना थोड़ी सी चीजें ऐसी मतलब यू नो अनहैपनिंग वाली चीजें हो जाती है, तो ऐसे में आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने अपना स्पेशली, और अपने पर्स को, अपने जो भी चीजें आप लेकर जा रहे हो उस चीज का बड़ा खास ख्याल रखिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भीड़ भाड़ वाले एरिया में हम जाते हैं तो सडन कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते, राइट? छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए, अगर आप टाउन हॉल की तरफ जा रहे हैं तो भाई खास करके प्लीज, है ना। बाकी आपके दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के लिए मेरे पास ढेर सारे अच्छे गाने हैं, आज की शाम को थोड़ा स्पेशल बनाता हूँ आपके साथ। एंड ऑफ कोर्स अब यहाँ पर आप हैं, मैं हूँ, तो गाने तो होंगे यार, है ना। अच्छे अच्छे गानों के साथ ही जो है यहाँ पर अच्छी अच्छी शुरुआत हो गई है, और अभी अभी बहुत सारी बातें हैं।
1: दोबारा सजना फेर ना ला दी लारा सजना मिट्टी दा बाण टेर मिला,
0: आने वाला गाना
1: हाय नी आपा फेर मिला,
0: भाई मैं कहीं नहीं जा रहा,
1: कदे ना कदे फेर मिला,
0: मैं अभी मिल रहा हूँ,
1: हाय नी आपा फेर मिला।
0: रेलवे स्टेशन पे एक बड़ी अच्छी चीज चल रही है, मुझे अभी अभी जस्ट अपडेट आई है, क्या चल रहा है बताऊंगा, लेकिन अगर कहीं पे आप भसड़ में है, आपको लग रहा है यार यहाँ पे थोड़ा सा जाम है, देखो स्टेशन रोड पे तो आप जब भी जाओ वहाँ पे तो आपको जाम मिलता ही मिलता है, सुबह में तो महा वाला जाम, शाम को उससे भी महाखंड वाला जाम, है ना। तो रेलवे स्टेशन की तरफ तो हमेशा ट्रैफिक मिलता ही आपको, बट इसके अलावा अगर कहीं और लग रहा है या कहीं और आपको लग रहा है कि यहाँ पे हल्का फुल्का जाम है, तो डेफिनेटली आप अपडेट करो, व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो 9837896896 पर। बाकी मुरादाबाद में क्या चल रहा है, आज पूरे दिन में क्या कुछ खास रहा है, डेफिनेटली बताऊंगा अभी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। आप आनंद के साथ सुन रहे हैं फिर मुरादाबाद 89.6, वॉल्यूम बढ़ाओ, आने वाला गाना आपकी शाम को बनाएगा और भी ऑसम। awesome.

0: You're a tune into FM Moradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार

0: करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

कसम से यार, जितनी प्यारी वाइब है ना इस गाने की, उतना ही प्यारा गाना भी है। वेलकम बैक यू वंस अगेन, वेरी गुड इवनिंग। आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6, जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है बॉस। अभी देखो, रीना तो नहीं है, वो छुट्टी मनाने अपने घर जा चुकी है। एग्जैक्टली, बिकॉज रक्षाबंधन का फेस्टिवल है और शी इज़ वेरी एक्साइटेड कि चलो यार, इतने दिन के बाद तो छुट्टी मिल रही है। और वैसे भी उसको कितनी डबल ड्यूटी करनी पड़ रही थी यार, मेरी वजह से भी। तो मतलब इतने दिन तो उसने संभाला, हैंड्स ऑफ ए बॉस, क्योंकि यहाँ पर बोलने से कुछ नहीं होता बॉस, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी होती है, ये मैं अच्छे से समझ सकता हूँ। एनीवेज, चलो थैंक यू तो हम बोलेंगे रीना को इन बिग शाउट आउट, एंड आई होप वो अपने घर पहुँच गई होगी। और कल जो भी लोग आज घर पहुँच रहे हैं उनको भी ऑल द वे बेस्ट यार। कल रक्षाबंधन को लेकर जो है बहुत ही कड़क इंतजाम हुए हैं मुरादाबाद में भी। आपको पता है 3 दिन तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से जो एक फ्री

0: इनिशिएटिव चला गया है कि 3 दिन तक जो है फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हैं, यानी कि आज कल एंड परसों, राइट। आज 27 है, कल 28 को राखी है एंड 29 तक जो है आराम से आप ट्रैवल करोगे फ्री में। तो उसके लिए जो बसों की फैसिलिटी है उस पर सारे लोगों की नज़र है एंड जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है और अपनी जो उत्तर प्रदेश सरकार का इतना प्यारा इनिशिएटिव है, तो इसका जो है लोग भरपूर फायदा उठा रहे हैं। और आज तमाम सारी बसों में जो है भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है, बिकॉज सारी लेडीज़ जो है मोस्टली अपने भाई के घर के लिए रवाना हो रही हैं और वो इस ये जो ट्रांसपोर्ट है जो अभी फैसिलिटी दी गई है हमारे मुख्यमंत्री जी की ओर से, इसका फ़ायदा भी उठा रही हैं। यार ऐसी बात नहीं, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा और मैं खुद अभी आ रहा हूँ एक्सप्लोर करके स्टेशन की ओर से, तो वहाँ पर भी मैं देख कर आया हूँ, मतलब काफ़ी अच्छी खासी चीज़ें जो है बढ़िया लेवल पे हो रही है। सो दिस इज अमेजिंग यार। ये मुरादाबाद में इनफैक्ट अलग अलग स्टेट में भी ये आई थिंक फैसिलिटी है। और कल राखी है, रक्षाबंधन का सिर्फ मतलब सुरक्षा नहीं भैया, सुरक्षाबंधन तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज हर एक फेस्टिवल का ना अपना एक मोटो होता है, उसके पीछे एक स्टोरी होती है और हमारे जो आजकल के बच्चे उन्हें स्टोरी से मतलब ही नहीं है बॉस। देखो कोई भी जब फेस्टिवल आता है ना तो उसके पीछे बहुत सारी कथाएं होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, और जो मुझे लगता है कि हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट्स को तो डेफिनेटली पता होनी चाहिए और बच्चों को भी उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ फेस्टिवल का मतलब ये नहीं कि हम बैठे हमने सेलिब्रेट किया, सेल्फी ली, अपलोड कर दी, इट्स नॉट अ फेस्टिवल वाइब। फेस्टिवल का मतलब ही यही है कि आप उसके पीछे की स्टोरी तो जानो यार, बिकॉज अगर हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं तो उस सेलिब्रेशन के पीछे रीजन क्या है, दैट इज द मेन पॉइंट है ना, क्यों मनाया जाता है रक्षाबंधन एंड इतनी सारी चीजें एक साथ हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रिचुअल्स होते हैं हर एक फेस्टिवल के, तो जो मनाते हैं उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, फैक्ट होते हैं, उनको पता करना बहुत जरूरी। मैं सीरियसली बोलूं मुझे बड़ा मजा आता है यार। फिलहाल आप जहां भी निकल रहे हो गाड़ी में ऑल द वे बेस्ट यार, आप मुझे सुन रहे हो अच्छी बात है, आप मुझे एक मैसेज तो करो 9837896896 पे। ये मेरे पास एक मैसेज आया यहां पर, इन्होंने लिखा है गुड इवनिंग आनंद, कैसे हो आप? मैं बहुत ही बढ़िया हूं। एंड इन्होंने लिखा है आजकल आप गायब हो रेडियो से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं गायब नहीं हूं, बस थोड़ी सी चीजों में लगा हुआ हूं, बट डेफिनेटली जल्दी वो चीजें हो जाएंगी फिर मैं आपके साथ डेली आ जाऊंगा। वैसे तो अभी भी आ रहा हूं, आज मॉर्निंग में भी आया, अभी देखो इवनिंग में भी आया, एंड आई थिंक कल भी मैं डेफिनेटली आपसे मिलूंगा ही इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। एंड आगे बढ़ते हैं, एक और व्हाट्सएप पहुंचा है, गुड इवनिंग आनंद, हाउ यू, कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया हूं जी। ये मैसेज मेरे पास आया है कनिका जी का, थैंक यू सो मच, गायत्री नगर से मैसेज कर रही हैं। यार गायत्री नगर वाले बड़ी मेहरबान होते हैं बॉस। अच्छा ओके, समझ गया हूँ, प्यार करती हैं, बहुत अच्छी बात है। देखिए हम सबके दोस्त हैं, सबके साथी, और हम एक दूसरे से प्रेम करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है, राइट। सुनंदा शर्मा बड़ी ट्रेंड कर रही है आजकल सोशल मीडिया हैंडल पे, काफी सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव वाली बातें करती है यार ये लड़की, और काफी वायरल भी होती हैं इनकी चीजें। अब इनके दिल की बात सुनते हैं।
1: पसंद नहीं है तू,
0: अच्छा जी
1: तेरा,
0: वैसे मैं हूँ नहीं,
1: मैं कर दी,
0: ये तो अच्छी बात है,
1: मैं कर दी।
0: चलो इसी को सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी 5:56 हो गए, यानी कि 5:56 राइट नाउ स्टूडियो की घड़ी में, मैंने टाइम आपको बताया, तारीख है 27 अगस्त। एंड अभी लौट के रहते हैं, बताता हूँ रेलवे स्टेशन पे क्या चल रहा है, बहुत ही अच्छा कैंपेन चल रहा है जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात करने वाला हूँ मुरादाबाद में, बिकॉज लोकल फॉर वोकल में क्या हो रहा है डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अलावा एक और खास चीज है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आजकल ना चैट जीपीटी AI का जमाना है एंड चैट जीपीटी पे ना लोगों ने हदें पार कर दी है भाई, क्या क्या नहीं पूछ रहे हैं चैट जीपीटी से। एक बड़ा यू नो अलग सा इंसिडेंट निकल के आया, उस पर बात करता हूँ। आप कहीं मत जाओ, ऐसे ही सुनते रहो FM मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का अपना रेडियो। हाँ जी, दिस इज योर शहर का यू नो फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो। कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं सेंटेंस, तो इफ यू डोंट माइंड। हाँ फिलहाल ये सुनते हैं, वॉल्यूम बढ़ाओ, कुछ कहना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
5: Koi mil gaya, koi mil gaya.
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
0: क्या बात है जी, गुनगुनाते रहिए। बिल्कुल भाई, गुनगुनाना जरूरी है। और अभी जरा टाइम देख लीजिए, 6:01 हो गए। आने वाला गाना
6: सब हल्ला मचेगा। ओए नाचो सारे, अपनी फेमस है रात वाली।
0: जरा से देर में इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए कोई और गाना है जो आपका इंतजार कर रहा है, इसको सुनते हैं और अभी लौट कर आते हैं, फिर आपसे कुछ और बातें करेंगे, है ना। आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9837896896 पे। आप मुझे टेक्स्ट मैसेज भी करो फटाफट से। गुड इवनिंग, आप सुन रहे हैं आनंद को, यह है आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन।

हाय हाय हाय हाय, इतना बढ़िया गाना, मतलब इसको सुन के ना मैं अलग ही जोनर, इसे कहते हैं ना अलग, यू नो मेमोरी मेरी क्रिएट हो जाती है भाई, एक अलग ही बढ़िया सा फील देने वाला गाना। ऑफ कोर्स आप भी फ्लैश बैक में डेफिनेटली चले ही गए होंगे यार, 6:06 हो रहे हैं। हाँ जी, कैसे हाल चाल है यार? वेरी गुड इवनिंग आनंद के साथ। आज की शाम आप जुनू एंजॉय कर रहे हैं, एक कप चाय आप एंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है आप चाय पी रहे होंगे। कुछ लोग सिर्फ कान लगा के रेडियो सुन रहे होंगे, कुछ लोग अभी थैला वैला उठा के मम्मी के साथ सब्जी लेने जा रहे होंगे, बिकॉज कल बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं। दीदी जी मुझे पता है, पर चाय जी भी टेंशन में नहीं यार, सुबह बनाए तो बनाए क्या यार, इतने सारे गेस्ट आने वाले हैं, कुछ तो बढ़िया से बना लो, राजमा चावल बना लो, छोले चावल बना लो, और भी शाही पनीर वगैरह ये तो डेली खाते रहते हैं जी, कुछ यूनिक सा बना रहे हो, चलो बहुत बढ़िया, मुझे बुला लेना जरूर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और अभी कल रक्षाबंधन है तो इस पे डेफिनेटली मैं थोड़ी सी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। फिलहाल मार्केट में क्या माहौल है आप भी मुझे बताओ यार जरा, अगर आप मार्केट में होकर आ रहे हो या अभी करंटली आप कहीं पर हो, आपको लग रहा है यार आनंद सच में बहुत भीड़ है इस वाले एरिया में, और यहाँ पर अगर आप शॉपिंग करने आओगे तो बड़ा मजा आने वाला है, यहाँ पे स्टाइलिश राखी है या कुछ यूनिक कलेक्शन है या फिर इस एरिया में बहुत अच्छी अच्छी वाइब आपको देखने को मिलेगी, सो यू हैव टू कम। उसके लिए आपको मुझे बताना पड़ेगा ना, प्लीज टेल अस, आप मुझे बताओ कहाँ मुरादाबाद में स्पेशल चीजें चल रही है, यू कैन टेल। बाकी अगर मैं आपसे बोलूँ यार, अगर आपका इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अगर 24 घंटे के लिए बंद हो जाए तो आपको कैसी फीलिंग आएगी यार, मतलब खलबली मच जाएगी बॉस अंदर अंदर है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा इंटरनेट कभी बंद नहीं हो सकता बॉस, हमें बताया हमारा इंटरनेट बंद हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम तो बिल्कुल ना हो यार। लेकिन अभी एक नई अपडेट करंट आई है जी हाँ, मतलब मेटा की तरफ से एक ट्रायल शुरू किया गया है, रात को 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अच्छा यार ये क्या मैटर है, इस पे डेफिनेटली बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ना एक बहुत ही अच्छा कैंपेन चल रहा है वहाँ अपने रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पर DRN मैम आई हुई हैं और वो ढेर सारी बातें बता रही हैं कि कैसे अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हो इस टाइम पे, स्पेशली फेस्टिविटी के टाइम पे, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने ध्यान में रखकर ट्रैवल करना है, एंड अगर उस बीच आपको कोई कुछ खाने पीने को देता है तो आपने अवॉइड करना है, कैसे अपनी डेस्टिनी को सेफ एंड कम्फर्टेबल बनाना है, तो तमाम सारी चीज़ें जो है चल रही हैं रेलवे स्टेशन पे, और तरह तरह के प्रोग्राम्स मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पे होते रहते हैं, एंड यहाँ के रेलवे की जो टीम है काफ़ी एक्टिव है नो डाउट, एंड बिग शाउट आउट यार, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, चाहे GRP पुलिस हो या वहाँ की पुलिस प्रशासन हो, मतलब मुरादाबाद रेलवे स्टेशन के पे साफ सफाई की अगर मैं बात करूँ तो वो भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें देखने को मिलती है, मतलब पूरा शहर एकदम चांदनी जिसे हम कह सकते हैं एकदम नहाए रहता है यार, मतलब मज़ा आता है देखने में, अच्छा लगता है कि ये मुरादाबाद रेलवे स्टेशन है, और वहाँ पर अभी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर आप आसपास में तो डेफिनेटली जाओ देख के आओ यार। बाकी इंस्टाग्राम फेसबुक का क्या मामला है इस पे चर्चा करेंगे, भी लौट कर आएंगे, अगर आप कहीं पर हैं आसपास में आपको लग रहा है यार यहाँ पर तो आनंद राखी को लेकर बड़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, या फिर ये वाली मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पर आपको काफ़ी रश मिलेगा या ज़्यादातर लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं, ये आप मुझे बताओ मैसेज करके, मुरादाबाद में कौन से लोकेशन पर बढ़िया राखी कलेक्शन मिलती है, क्या पता किसी की

और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: विजिट करो।
1: आवश्यक सूचना 400 केबी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केबी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

यार नशा अगर अच्छी चीजों का होता है ना तो जिंदगी जो है ना मजेदार हो जाती है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मतलब इतना अच्छा हो जाता है ना, फिर लाइफ को जीने का तरीका ही पूरा बदल जाता है, बता रहा हूँ आपको। वेलकम बैक है, हेलो जी, कैसे हाल चाल है? अभी मैंने जो आपको अपडेट दी थी ना कि रेलवे स्टेशन की तरफ एक प्रोग्राम चल रहा है, तो मेरे पास एक मैसेज आया, हेलो हाय गुड इवनिंग आनंद, बेसिकली चल क्या रहा है पूरा तो बता दे यार। तो देखो भाई, बात ऐसी है, ये राजीव खंडेलवाल ने मैसेज किया है। देखो राजीव जी, अभी मैं गया था किसी काम से स्टेशन, तो वहां मैंने देखा वहां पर जो है संरक्षा सुरक्षा बंधन अभियान की जो है वहां पर अभियान ये शुरू किया गया है स्टेशन पर, और वहां पर एक सेल्फी पॉइंट भी बना हुआ है, डेफिनेटली आप देख सकते हैं जाकर के। एंड यहां पर बहुत सारी जो है नई नई चीज़ें हुई हैं, स्काउट गाइड एंड बच्चों ने नुक्कड़ नाटक परफॉर्म किया, एंड वो कैसे अपनी यात्रा को यू नो कम्फर्टेबल बना सकते हैं उस पर यू नो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो और तमाम हेल्पलाइंस के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। आगे और भी ढेर सारे फेस्टिवल्स हैं, तो उसमें आप कैसे अपना ख्याल रखें, अगर आप यात्रा कर रहे हैं ट्रेन से तो कैसे आप सुगम और सफल अपनी यात्रा को बना सकते हैं। इनफैक्ट मुरादाबाद स्टेशन पर जो है चेक इन अभियान भी चल रहा है टिकट को लेकर, कि भैया देखिए बिना टिकट के आपको ट्रैवल नहीं करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप टिकट लेके ही ट्रैवल करें भले ही आपको अगले स्टेशन जाना हो। चलिए आगे बढ़ते हुए अभी आपको बताता हूँ इंस्टाग्राम फेसबुक के बारे में फटाफट से। तो ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अभी मेरे पास व्हाट्सएप भी आया, आनंद जी क्या इंस्टाग्राम बंद हो जाएगा? तो भाई इंस्टाग्राम बंद नहीं हो रहा है, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो, जो इंस्टाग्राम प्रेमी है या व्हाट्सएप फेसबुक के प्रेमी है, आपके लिए सारे साइट्स खुले हुए हैं। बस एक्चुअली प्रॉब्लम इज दैट कि अभी जो है ना मीटा ने एक ट्रायल शुरू किया गया है उनकी तरफ से, कि भैया रात को 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। अब ये क्या है पूरा मैटर, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है जी? तो पूरा मैटर आपने क्या कहना है, वॉल्यूम बढ़ा के ध्यान से सुनना। देखो भैया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बच्चों से लेकर बड़ा हर इंसान करता है ना। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से ही लोगों का स्क्रीन टाइम भी बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स आप जानते हैं, एंड बच्चे भी आधी रात को जाग कर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, नो डाउट, है ना, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। वहीं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर डिजिटल जो है बैड टाइम लगाया गया है, एक मतलब बेसिकली जिससे रात 12 बजे से सुबह 6 बजे के बीच जो है ये पूरा एक्सेस रोकने की तैयारी हो रही है। एंड साथ ही साथ जो स्कूल वाले बच्चे हैं, जो लोग स्टडी करते हैं, उनके लिए भी एक यू नो कहीं ना कहीं एक अच्छा क्लू होगा, उनके लिए एक अच्छा आइडिया भी होगा कि भाई देखिए अगर ये रात को बंद हो जाएगा तो उनके पास टाइम होगा कि भैया 12 बज गए, मतलब अब हमें सोना ही सोना, उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये मुझे लगता है कि ठीक चीज़ें भी है ना, बहुत ज़्यादा रात को 12 बजे के बाद चलाने की वजह से मुझे लगता नहीं किसी को रिक्वायरमेंट होती, बट कुछ लोग होते हैं भाई जो नाइट ड्यूटी करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, चलो भाई थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं सोशल मीडिया पर। बट 12 से 6 के बीच जो है इस पर जो है रोक रहेगी। साथ ही बताया जा रहा है कि भैया रात में स्कूल के समय में नोटिफिकेशन कम कर दिए जाएंगे, मेटा ने इसको लेकर ट्रायल शुरू कर दिया है। एंड सोशल मीडिया पर बच्चों की एक्टिविटी को कम करने के लिए, स्पेशली जो नाबालिग छोटे बच्चे होते हैं, जो लोग पोस्ट वगैरह लाइक करते हैं, है ना, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ नई चीज़ें होने वाली है। बाकी इन यूज़र्स के लिए जो है अभी यू नो ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि भैया इन पर अब मजबूती से और काम किया जाएगा, ताकि बच्चों को जो है ज़्यादा स्क्रीन टाइम ना मिल सके और वो समय से सो सकें, और जो उनका इंगेजमेंट है वो स्टडी की तरफ बढ़ाया जा सके। सोशल मीडिया पे तो भाई देखो हर कोई अपना इंगेजमेंट दे रहा है, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अगर यू नो मीटा कुछ नई चीज़ लेकर आ रहा है स्टूडेंट के लिए या हमारे आसपास के बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सही भी है, और अगर ये चीज़ हो जाएगी तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ यू नो चेंज हो सकता है सोसाइटी में। अभी मैं आपको चैटजीपीटी के बारे में एक बात बता रहा था ना, वो फटाफट बताऊंगा, लौट कर आऊंगा। तो हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप के, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास ये रणवीर जी का मैसेज पहुंचा है, गुड इवनिंग जी, कैसे हाल हैं आपके? मैं बढ़िया हूं जी। ये रणवीर जी यूपी मुरादाबाद से मैसेज करते हैं, यार मैं फर्स्ट क्लास हूं, आई होप आप भी अच्छे ही होंगे। आप लोग भी अपने मैसेज करो यार मुझे 9837896896 पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो डेफिनेटली आप बता सकते हो। अच्छा, मैं राखी के बारे में पूछ रहा था, तो मेरे पास एक बड़ा प्यारा मैसेज आया है, बट थोड़ा सा इंतजार, लौट कर आता हूँ, तो उसके बाद आपका ये मैसेज मैं 100% शामिल करूंगा यहाँ पर, है ना। बट अभी काम करते हैं कि अच्छा सा गाना प्ले कर देता हूँ आपके लिए, बहुत देर से आप वेट कर रहे हो गाने का, तो बिना किसी देरी के गाना आपके रेडियो पे निकाल दिया मैंने। एक बहुत ही बेहतरीन गाना है, करण औजला का गाना है, ऑफकोर्स यार करण भाई के गाने होते ही बड़े प्यारे हैं, सुन के मजा आ जाता है, राइट? एकदम वाइब फुल ऑन आने लगती है। लौट कर आते हैं फिर आपसे और बात करेंगे। आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 आनंद के साथ हैं आप। वक्त मिला लो, घड़ी घड़ी वक्त बता रही है, 6:23 हो रहे हैं, 6:23 राइट नाउ स्टेशन क्लॉक का टाइम। डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक।

0: अरे पापा सीट बेल्ट तो लगा लो।
1: अरे बेटा बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
0: पर पापा।
1: अरे बेटा बस में यू गया और यू आया।
2: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें, क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश FM मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए FM मुरादाबाद।
3: बसंती इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: आयुष्मान खुराना का गाना जिसको सुन के हर कोई एक अलग ही यू नो फीलिंग में जाने लगता है, उसके अंदर फीलिंग आने लगती है। इतना अच्छा गाना था ये, अंबरा बरसिया पानी, और इतना ज़्यादा पानी बरस रहा है आजकल की कहीं कहीं पे तो लोग इतने ज़्यादा बेचारे परेशान हैं कि मैं आपको क्या बताऊं यार, है ना। इतना भी नहीं बरसना चाहिए यार कि लोगों की लाइफ में तहलका मच जाए, लेकिन कोई बात नहीं भाई। देखो लाइफ में ना कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये ना अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देती है भाई साहब, ये लाइफ है भाई। हाय वेलकम बैक है वंस अगेन, 6:32 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ सुन रहे हैं FM मुरादाबाद। और अभी फिलहाल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ एड ब्रेक बजने चाहिए यहाँ पर। हाँ यार, एड ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ये शॉर्ट एड ब्रेक, उसके बाद वापस से हमारी एंट्री होगी, फिर हम आपके साथ और ढेर सारी बात करेंगे। लोग आजकल ChatGPT से कुछ भी पूछ रहे हैं भाई, रक्षाबंधन है, आई नो चीनी महंगी होगी, इसका मतलब ऐसे कौन पूछता है कि भाई को मिठाई की जगह क्या खिलाया जाए।
1: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का थ्रिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
2: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
3: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 20% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल रामपुर रोड मुरादाबाद।
4: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
5: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
0: कोई बात नहीं यार, नाचना जरूरी है, और अगर आप अकेले में नाच रहे हो तो फिर आप मेरी तरह हो भाई साहब। मैं सच बता रहा हूँ, मतलब कभी कभी जब अकेले में होता हूँ तो ऐसा फील करता हूँ शाहरुख खान मेरा ही चाचा है। वेलकम बैक है वंस अगेन, इतना बढ़िया डांस तो गोविंदा पाजी ने किया है यार, सच बता रहा हूँ। मैं उनका डांस देख के बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ, और मतलब मुझे लगता है कि डांस में अगर कोई मेरा आइडल है तो गोविंदा पाजी, मतलब क्या क्रेजी डांस होता है उनका, मतलब उनके लटके झटके अलग ही। लेकिन अभी जो भसड़ मची हुई ना गोविंदा पाजी की लाइफ में, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि जल्दी से उनकी लाइफ की टेंशन दूर हो जाए, और हर किसी की लाइफ की होनी चाहिए। देखो लाइफ में तो अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन हमें हर सिचुएशन में ना उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, अंदर जो एक मोटिवेशन ना उसको मेंटेन रखना चाहिए। चलो अभी मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है भाई साहब। आज सुबह मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तो मैंने

0: अचानक से एक पोस्ट देखी, एक लेडी ने, ये मतलब कर्नाटका का केस है, एक लेडी ने मतलब चैट जीपीटी से पूछा कि चीनी तो महंगी हो गई है, बताओ बहन मैं क्या करूँ, रक्षाबंधन पे घर जाना है, काजू कतली भी बहुत महंगी हो रही है, इतना तो रिटर्न आएगा नहीं, तो मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ जिससे मेरा भाई भी प्रसन्न हो जाए और मेरे बजट में भी काम हो जाए। अब भाई चैट जीपीटी है, वो अपना दिमाग चलाएगी, है ना। चैट जीपीटी ने बोला है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप बस अपने घर में एक ग्लास लो, उसमें बर्फ डालो, पानी डालो, थोड़ी सी चीनी डालो, थोड़ा नमक डालो और उसकी एक बढ़िया सी शिकंजी बनाओ, भाई आएगा उसको शिकंजी पिलाओ, राखी बांधो, माइंड फ्रेश, शिकंजी हो गई रेडी और कम मिठाई की जगह पर मतलब कम चीनी में ही मीठा और नमका दोनों हो जाएगा और भाई भी खुश हो जाएगा। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये, ठीक है अगर आपको कुछ दिमाग चलाना ही था तो कुछ अच्छा ही बताते, ये शिकंजी वाला आइडिया मतलब कुछ समझ में आ रहा है भाई आपको? मेरी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। ठीक है चीनी महंगी हो गई समझ आता है, अगर चीनी महंगी हो जाएगी तो क्या हम चाय पीनी बंद कर देंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता ना। चलो एक शख्स और है मेरे साथ, जरा उनकी ओपिनियन दर्ज करते हैं फटाफट। हाँ जी अखिल भाई कैसे हो आप? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम हियर विद यू। यार इधर आ जाओ या उधर, भैया कह रहे हैं इस वाले माइक पे बोलूंगा मैं, तो मगर चलो जी इस पे ही बोल लो, आपको दिक्कत नहीं।
1: बहुत ही बढ़िया हूँ।
0: आप पल्ली पार से बोल रहे हो, आपकी आवाज उल्ली पार साफ आ रही है। ये यहाँ की लैंग्वेज है ना, उल्ली पार पल्ली पार। है ना, पल्ली पार जा रहे हो, उल्ली पार जा रहे हो,
1: पल्ली पार जा रहे हो या उल्ली पार जा रहे
0: हो? हाँ फिलहाल पता नहीं, हम सामने बैठे हैं आपके, आप बताएं भैया जी कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप कैसे हो इस समय ये बताओ पहले।
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार, लाइफ में हमेशा अच्छा ही रहना चाहिए, जिंदगी में प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती है ना भैया।
1: और यही सोल्यूशन बैठ के और मतलब कहते हैं ना थोड़ा सा एकाग्र होके ऐसे ही सोल्यूशन निकलते हैं।
0: वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मैं कह रहा था अभी चीनी महंगी हो गई है, मैंने आपको, आपने सुना भी अभी चैट जीपीटी से लोग सोल्यूशन मांग रहे हैं कि रक्षाबंधन पे भाई इतना महंगा गिफ्ट तो देगा नहीं, इतनी महंगी मिठाई खिलाने का क्या फायदा।
1: सही कह रहे हैं।
0: तो आप बताओ कल तो आप जा रहे होंगे भाभी जी के साथ घर या फिर यहीं आ रहे हैं आपके ब्रदर इन लॉ?
1: ये तो हमारा ना एक्चुअली कहता है एट रैंडम डिसाइड होता है, अरे भैया तू आ रहा है या मैं?
0: हम आए। हाँ। अरे वाह बहुत बढ़िया, कहीं कहीं पे ना एक दिन पहले कुछ प्लानिंग नहीं होती, वो रैंडम होती है। वेरी नाइस। चीनी महंगी हो गई है, लोग इस तरह तरह तरह की फालतू बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है करनी चाहिए या जो रिचुअल्स है उसे ही फॉलो करना चाहिए?
1: सब लोग अपनी जेब के हिसाब से बात कर रहे हैं। वैसे ये बताओ तुम क्या करोगे कल? तुम भी
0: देखो भैया रक्षाबंधन हम सेलिब्रेट करेंगे और पहली बात तो मुझे अपनी बहन के घर जाना नहीं है, मेरी बहन मेरे साथ ही रहती है और हम तो कुछ अच्छा सा प्लान कर लेंगे, अपने घर में कुछ बढ़िया सी चीज बना लेंगे और बस उसी से राखी सेलिब्रेट कर लेंगे। असली मतलब तो यार देखो खुशी सेलिब्रेशन होता है, खुशी मतलब है ना, खाने पीने की चीजें तो चलो ठीक है वो तो होनी चाहिए, खुशियां डबल कर देता है ना, ये एक शगुन है मीठा खाना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मीठे से काम हो यार, भाई बहन का प्यार तो मतलब अटूट है, अगर आप कुछ नहीं भी खिलाओगे तो भी वो प्यार कम नहीं होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा, मीठा अगर महंगा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीठा नहीं खाओगे,
0: बिल्कुल
1: मीठा कम खा सकते हो मगर मीठे से ही शुरुआत करना।
0: बिल्कुल सही बात है। और दूसरी बात यह है मीठा होना हो वो अलग बात है लेकिन प्यार कम नहीं होना चाहिए, भाई बहन का एक पवित्र रिश्ता है। और आजकल मैं ये भी देख रहा हूँ कि लोगों को ना, लोगों ने कोई भी फेस्टिवल हो, मैं बात करूँ अगर राखी दिवाली की, तो उसको सिर्फ सेल्फी तक सीमित कर दिया है अखिल भाई। मतलब वो आते हैं सेल्फी लेते हैं, दो चार लोग बैठ के बातें करते हैं, मतलब जो उसके पीछे की एक्चुअल स्टोरी वो पता ही नहीं होती, मतलब आजकल के बच्चों को मुझे लगता है पता नहीं है शायद, अभी
1: मोबाइल तक ही सीमित हो गया आप कहना चाहते
0: हैं। करेक्ट, मतलब अब क्या हो रहा है ना कि अब रक्षाबंधन है, लोगों को लगेगा गिफ्ट्स मिठाई बस सिर्फ स्टेटस वो चाहिए, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्यों बनाया जाता है रक्षाबंधन, एक्चुअल स्टोरी क्या है वो आजकल कोई सुनना नहीं चाहता, सबको मोटा मोटा एंजॉय करना है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये बात तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ, मगर हाँ मगर आज भी कुछ हैं ऐसे रिश्ते जब रहते हैं भाई बहन आपने अपने आमने सामने रहते हैं तो वो पुरानी बातें और वो नटखट वाली हरकतें रहती हैं भाई चालू हमारे,
0: वो होना भी चाहिए तभी तो मजा आता है, कुछ अच्छी सी यू नो आपकी फैमिली बैठी है आपके यू नो पुरानी चीजें आप याद करो, जब आप बच्चों के सामने वो चीजें लाओगे तो उन्हें भी थोड़ा सा फील आएगा और वो उस चीज को रिलेट कर पाएंगे, है ना,
1: भी पता चलेगा कि पतंग उड़ाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
0: 100% और बहन का लंच बॉक्स चुराना, उसकी पेंसिल रबर चुराना, ये अपने आप में एक अलग वाइब थी, पता नहीं यार आजकल होता है या नहीं, पर मैंने भी किया है ऐसा वाला, और साथ में स्कूल जा रहे हैं तो बहुत सारी मेमोरी है और धीरे धीरे मुझे ऐसा लगता है कि उन सब चीजों को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे साथ है,
1: मगर छोड़ना नहीं है साहब, हमें यही तो करना है चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आ जाए।
0: exactly.
1: ये जो रिश्ते हैं ना जो बिल्कुल आपको जोड़ के रखते हैं आपस में, इन्हें नहीं छोड़ना,
0: इन्हें नहीं छोड़ना है। एग्जैक्टली exactly. फिलहाल आप भी अपनी कोई मेमोरी शेयर कर सकते हो राखी वाली, अभी ये गाना सुनते हुए आगे बढ़ते हैं, अभी मैं लौट कर आता हूँ फिर आपको कुछ और बातें बताता हूँ मुरादाबाद में और क्या चल रही चीज़ है। आपको पता है आज से फ्री बस सेवा शुरू हो गई, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, मुरादाबाद की लेडीज़ के लिए एक अच्छी फैसिलिटी है, भैया अपने घर जाना चाह रही हो तो पति का वेट मत करो, बैक पैक करो, सीधा बस स्टॉप जाओ, बस आपको मिलेगी, कोई चार्ज नहीं देना है, आराम से घर पहुंच जाओ।
1: देखो जो जाने में भी फ्री है और आने में भी फ्री है,
0: आने में फ्री है,
1: आने में भाई सब टिकट लग रहा
0: है, लेकिन दो दिन से ज्यादा अगर आप रुकोगी तो फिर आपको देना ही पड़ेगा। सिर्फ ये 29 तक ही चलने वाली है फैसिलिटी, यानी कि 27, 28 और 29, तीन दिन तक आप फ्री में घूम सकती हो, है ना। अब आपके पास एक ऑप्शन है कि बहुत दिन से दीदी के घर नहीं जा रही थी, मासी के घर नहीं जा रही थी, तो आप जा सकती हो।
1: मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि घूमते ही रहो।
0: हाँ यार, ये भी है, घर भी वापस आना है,
1: पता चला फिर पति ढूंढ रहा है पीछे से चल के, भाई साहब कौन सी वाली।
0: लेकिन यार पतियों के लिए तो फ्री नहीं है यार, ये भी तो दिक्कत है ना,
1: पति के लिए कोई फ्री नहीं होता।
0: अगर अगर हस्बैंड वाइफ साथ में जाते होंगे ससुराल, मतलब एक कहेंगे रिचुअल्स होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों आए, तो क्या पति पीछे से बाइक स्टार्ट करके आएगा, क्या क्या चक्कर क्या है, समझ नहीं आ रहा मेरे को ये वाला सीन। मतलब दोनों के लिए होना चाहिए था वैसे तो यार।
1: हाँ होना तो दोनों के लिए चाहिए था भाई, पति नहीं तो कहा है कि हाँ भाई चली जाओ, तुम मायके चली जाओ, मगर पति भी यार मैनेज कर लेता, बोले चलो यार जा तो ये
0: भाई साहब। अच्छा मेरी शादी नहीं हुई, चलो फिलहाल गाना

0: अशांति इनके सामने मत नाचना।
1: अरे भैया नाचना है तो एफएम मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। वो खफा हो गए भैया, खफा हो गए तो उन्हें मनाओ जाके, अगर नहीं मान रही तो रक्षाबंधन का पर्व आ रहा है, राखी ले जाओ। अब आप ये मत कहना आनंद जी आप कैसी बातें कर रहे हो, वो तो बहन है रिश्ते में हमारी, तो भैया बहन ही तो भाई को राखी बांधती है, भाई थोड़ी बांधता है बहन को राखी, यार कैसी बातें कर रहे हो। वेलकम बैक है, हेलो जी हेलो, 6:48 हो गए स्टेशन क्लॉक में, आनंद के साथ सुन रहे हैं आप एफएम मुरादाबाद 89.6। बातें हो रही हैं दिल से दिल तक, ढेर सारे मैसेज आ गए हैं आपके।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
0: हाँ जी, देखो यार भाई बहन की चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए अखिल भाई, लेकिन उनका जो एक दूसरे के प्रति प्यार है, जो समर्पण एक दूसरे के प्रति, वो कभी खत्म नहीं होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लड़ाई भी बहुत भयंकर तरीके से होती है भाई बहनों की, इसमें तो कोई अतिशोक्ति नहीं है। आपका क्या कहना है?
2: और वो लड़ाई इसलिए होती है ना क्योंकि पूरे हक की लड़ाई होती है।
0: अच्छा,
2: भाई जो है पूरे हक से अपनी बहन को लड़ता है, झगड़ता है कि हाँ भाई तू ऐसे क्यों नहीं है, और बहन सेम उसी तरफ कि हाँ भाई मेरे को सबसे पहले मेरी डिमांड पूरी होनी चाहिए, भाई की नहीं।
0: मतलब इतनी सारी गालियां भी पड़ी है बहन से, उसके बाद में लास्ट में सारी गाली के बाद एक प्यारी सी बात आती है, मेरा राजा भैया। और ये बात बोलते ही जो है भैया खुश हो जाते हैं, फिर बड़ी सी चॉकलेट और हग और सब लेकर आ जाते हैं।
2: सारा हुज़्न दिखाती ना बहन, वो अपने भाई की शादी में दिखा देती है।
0: ये बात तो सही है,
2: मैं हूँ भाई दूल्हे की बहन, जरा बच के रहना।
0: ये बात तो है, लेकिन यार ये रक्षाबंधन का पर्व भी ना मतलब एक अलग ही पर्व है। मतलब कोई भाई कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो जरूर आता है, और बहन कितनी भी दूर हो वो भी डेफिनेटली पहुंचने की कोशिश करती है। खैर सोशल मीडिया से इतना तो फायदा हो गया कि वर्चुअल भी चीजें हो जाती है।

0: बिल्कुल सही बात
1: है ना। थोड़ा सा अगर मान लो कोई बंदा फॉरेन में है, वो नहीं आ पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। रक्षाबंधन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी ना थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसको लेकर काफी सारे बदलाव किए गए हैं। भैया आपको बता दें, कल शुक्रवार को सुबह 5:57 से शुभ मुहूर्त शुरू होगा और बताया जा रहा है कि 9:48 यानी कि 9:48 तक ही ये राखी का पर्व रहने वाला है। यानी कि कल 28 की सुबह टुमोरो 9:48 तक ही जो है आपको टाइम मिल रहा है, उसके बाद जो है एक नया मंथ शुरू हो जाएगा, कहते हैं कोई और सा महीना शुरू हो जाएगा। तो
0: मतलब आपके पास सिर्फ 4 घंटे?
1: हाँ एग्जैक्टली, राखी बनाने के लिए सिर्फ 4 घंटे। आप जैसे लोग तो भैया रैंडम प्लान करते हैं, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि फिर क्या करोगे।
0: तो साहब रात के 12 बजे भी अगर मिल हो जाए अवेलेबिलिटी तो एकदम, हम तो 12 बजे भी राखी बनवा रहे।
1: अच्छा चलो, इस पर मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा भैया, कुछ बोलने के लिए बचा नहीं है मेरे पास। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हुए मैं आपको शुभ मुहूर्त की बात बता रहा हूँ भाई साहब। शुभ मुहूर्त जो है कल 28 अगस्त को रहने वाला है सुबह 5:57 से, यानी कि 5:57 से लेकर 9:48 तक रहेगा। अब हालांकि कुछ लोग कहेंगे ऐसा कुछ नहीं है, राखी है, राखी का पर्व है तो हम तो पूरे दिन मनाएंगे, रक्षाबंधन ने ऐसे थोड़ी कहा है कि बस सिर्फ 4 घंटे राखी बांधो, रक्षाबंधन का दिन तो पूरा दिन होता है। आपका क्या मानना है वैसे?
0: बिल्कुल सही बात कहते हैं सब, रक्षाबंधन का दिन तो पूरा दिन ही होता है।
1: लेकिन ये जो बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें निकाल देते हैं, फिर थोड़ा सा आदमी सोच में कहीं ना कहीं पड़ जाता है।
0: नहीं, अगर आपको मौका लग रहा है और आपके पास टाइम है उस समय कि आप इस घंटे आप हैं, अवेलेबल हैं, दोनों भाई बहन आसपास ही हैं, तो कर क्यों नहीं इस त्योहार को मना लिया जाए उसी टाइम के अंदर।
1: ये भी बात सही कह रहे हो आप। और देखो आज 27 अगस्त की सुबह है, आज जो है सावन की पूर्णिमा भी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना। और कल जो है ये फाइनली व्रत कंप्लीट होगा लोगों का, जिन्होंने सोमवार रखे थे सावन के, उनके लिए तो अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ ही साथ रक्षाबंधन का जो टाइम है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि भैया फिर आपको ऐसा ना लगे कि यार रक्षाबंधन पूरे दिन है क्या। मतलब आपको पता होना चाहिए मोटा मोटा। और हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि कोई भी पर्व जो है वो उदया तिथि के अनुसार मनाया जाता है। तो कल 28 टुमोरो फ्राइडे जो टाइम रहने वाला है वो 5:57 से 9:48 तक, अगर आप इस बीच राखी बांधते हैं तो ये आपके भाई के लिए अच्छा शुभ माना जा रहा है। ये वाला टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम निकल कर आया है, तो आप डेफिनेटली इस टाइम में अगर आप राखी करती है तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी तो यार सारी चीजें चली रही हैं। अच्छा कल चंद्र ग्रहण भी बताया जा रहा है रहने वाला है, लेकिन ये अपने इंडिया में नहीं है, तो इसका कोई भी असर जो है रक्षाबंधन से रिलेटेड नहीं पड़ रहा है। मतलब कुछ ज्योतिष हैं जो कह रहे हैं कि इसका कोई असर भारत में नहीं पड़ेगा। एंड अगर आप कल रक्षाबंधन इस समय में मनाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलो ये अपडेट मैंने आपको दे दी। अभी एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ, फटाफट से लौट कर आता हूँ। इतनी सारी रक्षाबंधन की बातें हो रही हैं, इतनी प्यारी प्यारी वाइब यहाँ पर आपको मिल रही है, तो एक बढ़िया सा गाना तो होना चाहिए।

हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस, ये गाना भी आप तक पहुंचेगा। और एक सवाल मैं लेकर आ रहा हूँ आपके पास, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। फटाफट मुझे व्हाट्सएप करके बताओ भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। अगर आपको पता है तो इमीडिएटली मैसेज करो, देखते हैं कौन देगा सही जवाब। थोड़ी सी आपकी नॉलेज चेक कर लेता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑफकोर्स आप इसको मुझे आंसर कर दोगे। एक बार रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, भारत का राष्ट्रीय जो फूल है वो कौन सा है, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अगर आपको पता है तो आप मुझे बताओ, मैसेज करो अपने नाम के साथ, अपने शहर के नाम के साथ, विच सिटी, कहां से हो आप, ये जानना मेरे लिए जरूरी है। मुरादाबाद से बाहर से भी हो तो, अगर आप मुझे ऐप में सुन रहे हो तो भी आप बता सकते हो व्हाट्सएप करके।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

देखो कल रक्षाबंधन है तो उसकी जो वाइब है, उसकी जो फील है वो हमें आज से मिल रही है। बाजारों में क्या रौनकें हैं, आप प्रकाश नगर चौराहे पे चले जाओ, आप टाउन हॉल की तरफ चले जाओ, आप ताली खाने पे चले जाओ, आप नवीन नगर की मार्केट में जाओ, हर तरफ राखियों से सजा बाजार और क्या रौनकें हैं, मतलब अलग ही माहौल है। अगर मैं बात करूँ मंझोले की तरफ तो वहाँ पर भी पूरी डेकोरेशन हो रखी है बहुत बढ़िया, चाहे मिठाइयों की शॉप हो या फिर गलियों की नुक्कड़ पर जो शॉप्स होती हैं राखियों की, पूरी मार्केट बहुत अच्छी सजी हुई है। तो अगर आप अभी राखी लेने के लिए निकल रहे हैं या आप आ रहे हैं राखी खरीद कर या आप मिठाइयाँ खरीदने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जाइए। रक्षाबंधन का पर्व है, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाकी ये रक्षाबंधन आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए, आपकी बहन की लाइफ में बहुत सारी रौनकें आए, आपके भाई की लाइफ में रौनकें आए। एफएम मुरादाबाद 89.6 की पूरी टीम की ओर से हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस। और अभी मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप दे दो। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, अगर उसका जवाब आप मुझे देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आज की शाम और भी अच्छी हो जाएगी। मेरा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? What is the national flower of India? Please tell us 9837896896 पे आप WhatsApp करके जल्दी से बता दो।

0: जिद करो।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।
2: होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, मुरादाबाद।
3: कॉल

0: मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अच्छा चलता हूं। दुआओं में याद रखना।
2: जाने के टाइम हो गया बॉस, समय और इजाजत नहीं दे रहा। बिल्कुल जी, टुमारो मेरी आपकी मुलाकात वापस होगी इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। प्रीतम का म्यूजिक, अरिजीत सिंह की आवाज, करण जौहर के निर्देशन में मेरी मूवी ए दिल है मुश्किल का ट्रैक।

टू ब्यूटीफुल में भट्टाचार्य ने क्या लिखा है यार, बड़ा अमेजिंग लिरिक्स है। इसी गाने को सुनते हुए मैं आपको बोलूंगा टाटा बाय बाय, लेकिन जाने से पहले मेरा जो आंसर है वो तो सुन लो यार। मैंने आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था आज की एग्जाम एंड सो मेनी आंसर्स, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। इतने प्यारे प्यारे मैसेज आपने किए हैं उसके लिए आप सभी का दिल से थैंक यू। और आज का मेरा क्वेश्चन था व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, और इस पे तमाम सारे मैसेज मेरे पास आए, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। बट कोई एक होता है हमारे रेडियो पर विनर, अभी हमारे साथ जुड़े हैं इरशाद हुसैन अंसारी, इन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है, लोटस द राइट आंसर, एब्सोल्युटली दिस इज राइट आंसर, लोटस बोले तो कमल इज द करेक्ट आंसर, थैंक यू सो मच इरशाद हुसैन जी, आप जुड़े हमारे साथ आज की शाम और आपने पार्टिसिपेट किया, सही जवाब भी दिया है, बाकी लोगों ने भी मैसेज किए हैं एंड बट आपका सही जवाब था, किसी ने गेंदा, किसी ने और पता नहीं कौन कौन से फ्लावर्स के नाम जो है मुझे बताए, वेल सब ने अपनी अपनी कोशिशें की उसके लिए शुक्रिया, लेकिन इरशाद हुसैन साहब आपके लिए ताली, थैंक यू, बाकी लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया आपके लिए भी ताली बाजी, थैंक यू सो मच। होगी मेरी आपकी मुलाकात कल सुबह सवेरे, रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, कहीं मत जाइए, ऐसे ही रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। और ये क्या लिख रहे हैं जरा इनका मैसेज पढ़ लेता हूँ, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी डॉक्टर सैयद शारी के लिए लिखते हैं, गुड इवनिंग आनंद जी, कैसे हैं आप, आपको सुनकर अच्छा लग रहा है, हैप्पी रक्षाबंधन, क्या बात है, थैंक यू सो मच। मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल सर जी गुड मॉर्निंग, अरे भाई गुड इवनिंग हो गई है पाजी, एंड बबली अंजान साथ में गीता कर्शप लक्ष्मी भाभी हेलो हेलो गुड इवनिंग हमारी तरफ से प्यारा सा गुड इवनिंग। ये शिफाली जी लिखती हैं गुड इवनिंग आनंद कैसे हालचाल है, लोटस द राइट आंसर, थैंक यू सो मच मैम, बट अभी विनर हमें मिल गए हैं, अच्छा चल कल मैं आपको मिलता हूँ सुबह, प्लीज यू कैन कैच मी लाइव कल मॉर्निंग में 8 से 10 उसी स्टेशन पे, मतलब वही अपना स्टेशन तो सेम ही है यार, मतलब अपना शो का नाम बता रहा हूँ वही सेम वाला शो बिंदास मॉर्निंग, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी 89.6, चैनल का नाम है एफएम मुरादाबाद 89.6, प्लीज ट्यून इन रहिए, ठीक है, डोंट गो एनीवेयर, आगे अच्छे गाने हैं, आगे अच्छी और भी बहुत सारी हैपनिंग चीजें आपको मिलेंगी, सो जुड़े रहिए ऐसे ही और सुनते रहिए, चलो बाय, टेक केयर, हैप्पी वीकेंड, एडवांस में रक्षाबंधन, अगर मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो संभल के निकलना बॉस, है ना, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, कोशिश करो अपनी गाड़ी को अवॉइड करो, बिकॉज अगर एक एक इंसान ये चीज सोचेगा ट्रैफिक कम होगा, शॉपिंग करने में तुम्हारे लिए थोड़ी सी चीजें इजी हो जाएंगी, कन्वीनियंट हो जाएगा, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है जो छोटी छोटी चीजें उनका हेल्प लो और निकल पड़ो, ठीक है, अभी के लिए बाय बाय, कल मिलता हूँ।

0: विजिट करो।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कोई मिल गया,
3: कोई मिल गया।
4: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

0: पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आए हैं खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।
1: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।

0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
0: Hey, you're tuning to FM Muradabad 89.6 FM.
4: मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, ERM 810।

0: 7:45 होने को है, आइए सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नईम अख्तर। मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई। और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज राजधानी के द्वारका स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल में H1N1 से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। श्री सिंह ने अस्पताल में बनाए गए विशेष H1N1 आइसोलेशन वार्ड का निरीक्षण करने के साथ मरीजों के इलाज और देखभाल के इंतजामों का भी जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में ऑक्सीजन, दवाइयों, फ्लूइड, स्वास्थ्य परीक्षण और दूसरे जरूरी मेडिकल सुविधाओं के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
2: हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के सारे डॉक्टर्स, सारा स्टाफ काम कर रहा है। उनसे इंश्योर किया कि आइसोलेशन रूम बने और आइसोलेशन रूम में हर चीज की सुविधा हो, जिसमें आप टेस्ट कर सकें, आप कोई इमरजेंसी हो आप फ्लूड दे सकें, सारी चीज की व्यवस्था रहे। साथ साथ 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहे, रात की इमरजेंसी के लिए भी अवेलेबल रहे। हमने ये इंश्योर किया है कि चाहे टेस्ट की बात हो चाहे दवाई की बात हो, हर चीज अवेलेबल रहे और हर चीज हर हमारे हॉस्पिटल में, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में अवेलेबल।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इंदिरा गांधी दिल्ली महिला तकनीकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबोधन प्रेरण कार्यक्रम 2026 के समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने और भविष्य में अन्वेषक और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने के लिए प्रेरित किया। श्री संधू ने विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अवसर तैयार करने के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को तकनीकी शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना न केवल उनके व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये राष्ट्रीय विकास में महिलाओं की भागीदारी को भी मजबूत करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं को आधुनिक तकनीकी शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार से जोड़ते हुए उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने पर विशेष बल दिया गया।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज बेटियां इंजीनियरिंग, तकनीकी, विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा सहित हर क्षेत्र में नेतृत्व कर रही हैं। उन्होंने कहा कि छात्राओं को केवल मौजूदा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि AI और नई तकनीकों की निर्माता बनकर भविष्य के समाधान तैयार करने चाहिए। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा नेत्र नारी नेतृत्व जैसी पहले आगे बढ़ाई गई हैं, जिसके तहत दिल्ली पुलिस के लिए 75 सर्वेलेंस ड्रोन विकसित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का प्रयास है कि राजधानी की हर बेटी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक बुनियादी ढांचे, कौशल विकास और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। इस अवसर पर मौजूद दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि सरकार लगभग 160 एकड़ में एजुकेशन सिटी विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही छात्र और युवा उद्यमियों को सहयोग देने के लिए 400 करोड़ रुपए की स्टार्टअप और उष्मयान नीति को मंजूरी दी गई है। श्री सूद ने छात्राओं से महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए समाधान विकसित करने का भी आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि दुनिया नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की प्रगति और क्षमता की सराहना कर रही है और इस क्षेत्र में निवेश के लिए उत्सुक है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 2 से 5 नवंबर तक नई दिल्ली में होने वाले भारत रिन्यूएबल एनर्जी समिट एंड एक्सपो 2026 में करीब 8 से 10 देश साझेदार देश शामिल होंगे। श्री जोशी ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने नवीकरणीय स्रोतों से 300 गीगावाट से अधिक ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य पार कर लिया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की गई हैं। साथ ही पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं।
4: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
1: सरकार ने आने वाले महीनों में प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और मौसमी कीमतों को कम करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खंडे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य स्थिरीकरण बफर स्टॉक का प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर NCCF, नेफेड और केंद्रीय भंडार के बिक्री केंद्रों तथा दिल्ली में मोबाइल वैन के माध्यम से बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि देश में प्याज के उत्पादन या उपलब्धता की कोई कमी नहीं है।
5: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
1: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अनुसार आने वाले महीनों में घरेलू मांग पूरी करने के लिए प्याज की उपलब्धता पर्याप्त है। वर्ष 2025-26 में प्याज का उत्पादन 307 लाख मीट्रिक टन से अधिक रहने का अनुमान है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजकुमार भाटिया के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान आदर्श नगर क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना, पर्यावरण संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित क्षेत्र के विस्तार से संबंधित विभिन्न विषयों की समीक्षा की गई। बैठक में दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम लिमिटेड DSIIDC के वरिष्ठ अधिकारी, जहांगीरपुरी स्थित राजस्थान उद्योग नगर से जुड़े प्रतिनिधि तथा वन एवं खाद्य और आपूर्ति विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। राजस्थान उद्योग नगर में DSIIDC द्वारा कराए जा रहे सड़क और वर्षा जल निकासी कार्यों की समीक्षा करते हुए श्री सिरसा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी बुनियादी ढांचे के कार्य टिकाऊ, दीर्घकालिक और तकनीकी मानकों के अनुरूप हों। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उचित वैज्ञानिक व्यवस्था के माध्यम से नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा श्री सिरसा ने औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित संबंधित विभागों को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान की प्रथाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दिल्ली के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि नई दिल्ली नगर परिषद के क्षेत्रों में लापरवाही के कारण जल जमाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात श्री सिंह ने परिषद की बैठक के दौरान कही। बैठक के दौरान श्री सिंह द्वारा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि दोबारा जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने पर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली नगर निगम की विशेष, तदर्थ और वैधानिक समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए आज सिविक सेंट्रल स्थित निगम सचिव कार्यालय में नामांकन दाखिल किए गए। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने निगम की समितियों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों पर नामांकन दाखिल करने वाले पार्षदों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ और 1 सितम्बर तक चलेगा। सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू हुई। हालांकि इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से बाहर ही रहे। इसके बाद विपक्ष के नेता और अन्य विधायकों ने विरोध दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत के लिए आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने को प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालयों से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में ऐसा खेल ढांचा विकसित किया जा रहा है जिसमें खिलाड़ियों की प्रतिभा को हर स्तर पर सहयोग मिले।
6: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों से जीवन बदलता है और देश का गौरव बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों में खेल प्रतिभा खोजने के लिए बड़े प्रतिभा खोज अभियान की घोषणा की थी।
6: लाल किले से मैंने 5 साल की उम्र से 15 साल की उम्र के खिलाड़ियों की पहचान करने के लिए एक बड़े टैलेंट हंट अभियान का ऐलान किया है और इसमें भी हमें केवल ये नहीं देखना है कि किस बच्चे की किस खेल में रुचि है।
1: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट और संडे ऑन साइकिल जैसे पहलों ने लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, expert@airnews हिंदी और इंस्टाग्राम पर airnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारी मौसम से पहले राजधानी दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब हो चुकी खाद्य सामग्री नष्ट की गई। श्री सिंह ने बताया कि खाद्य सुरक्षा टीमों ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत पनीर, खोया, घी, मिठाइयों और अन्य खाद्य उत्पादों के 37 नमूने एकत्र किए। उन्होंने बताया कि इन सभी नमूनों की गुणवत्ता जांच के लिए निर्धारित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में भेजा जाएगा और प्रयोगशाला के नतीजों तथा कानून के लागू प्रावधानों के आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से आए बच्चों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने मुख्यमंत्री को अपने हाथों से राखियां बांधी। दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर कल तक के लिए एक यातायात परामर्श जारी किया है। यातायात परामर्श जारी करते हुए पुलिस ने बताया कि इस दौरान आनंद विहार अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल, राष्ट्रीय राजमार्ग 9 और विकास मार्ग के आसपास पैदल चलने वालों और गाड़ियों की आवाजाही अधिक रहने की आशंका है। पुलिस ने यात्रियों को इन मार्गों पर यात्रा से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा लोगों को यात्रा की योजना पहले से बनाने को भी कहा है। पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने, मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने और भीड़ भाड़ से बचने के लिए वाहन चालक डायवर्जन संबंधी संकेतों के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विवेकानंद केंद्र के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे ए बालकृष्णन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने समाज के प्रति बालकृष्णन के उल्लेखनीय योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन के 5 दशक से अधिक स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और राष्ट्र सेवा को समर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका जीवन स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और सेवा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए समर्पित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। राजधानी दिल्ली में आज भी कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लिया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित और लक्षित बिक्री शुरू की। खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत लगभग 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई और दिल्ली यातायात पुलिस ने रक्षाबंधन पर यातायात परामर्श जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.
1: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
2: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
5: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
2: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
5: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम। पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेज 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
6: कॉल 7500153841।

0: हेलो जी, कैसे हालचाल हैं? आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हालचाल हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज की जो शाम है ना, बहुत ही झकास है यार, बहुत ही बिंदास है। ऑफकोर्स ये शाम जब आती है तो भाई कुछ ना कुछ स्पेशल लेकर आती है। जैसे सुबह हमारे लिए बहुत कुछ खास लेकर आती है ना, वैसे जाते जाते शाम हमें बहुत कुछ देकर जाती है, बहुत कुछ सिखा कर जाती है ना जी। और आज की शाम में कोई ज्ञान की बात नहीं करना है, मतलब आई नो दैट आप रात भी हो रही होगी और आपको लग रहा होगा शहर की लाइटें ऑन हो गई है, आपके घर की लाइटें भी ऑन हो गई है ना, कुछ खाने पीने की तैयारी चल रही है, चलो अच्छी बात है। लेकिन आपकी शाम को थोड़ा सा बेहतरीन बनाने, कुछ शायराना अंदाज में कुछ खूबसूरत सी बातें करने आपके बीच पहुंच गया हूं। एक बार फिर से मेरे स्टूडियो में कोई खास है जिनके साथ आज हम ढेर सारी गुफ्तगू करने वाले हैं इसी स्टेशन ऑफ द नेशन पे। ये है आपके शहर का अमेजिंग कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जी हाँ। और भैया देखो, बातचीत का जो सिलसिला है वो तो लगातार जारी रहेगा। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो मुझे बताओ यार, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से मिलता हूं। वहां पे आके आपके पास जो भी टैलेंट है, आप अच्छा लिखते हो, अच्छा बोलते हो, अच्छा गाते हो, अच्छी शायरी करते हो, जो भी व्हाटएवर, जिसमें भी आपकी रुचि हो, आप मुझे प्लीज बताएं। हो सकता है नेक्स्ट डे आप मेरे साथ स्टूडियो में हो और आप यहां बैठ के ढेर सारी अपने मन की बात हमारे मुरादाबाद की जनता से कर रहे हो, है ना? आपका मन कर रहा है ना, तो बस फटाक से मुझे डीएम कर दो। चलो आज की शाम को थोड़ा सा एकदम धुरंधर बनाते हैं। आज की शाम हमारे साथ एक सुल्तान मौजूद हैं, मुरादाबाद के सुल्तान जिन्हें हम कह सकते हैं। अब आपसे इनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। इनकी आवाज़ बहुत प्यारी है और ये लिखते बहुत प्यारा है और बहुत ही अच्छा सुनाते भी हैं। मेरा इनसे कैसे जो है बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ ये भी बताएंगे और ये कैसे स्टूडियो पहुंचे ये भी जानेंगे। चलिए काम करते हैं, पहले इनका वेलकम करते हैं। तो भाई बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका हमारे एफएम मुरादाबाद के स्टूडियो में। हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है भाई आपके?
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मुलाकात हुई अच्छी रही।
0: जी जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। ये पहली मुलाकात है, वो गाना याद आ गया मुझे, वो गाना जरूर सुनेंगे।

0: वेकेशन पे भी बहुत अच्छा होने वाला है, चिंता मत कर. मुझे भी अच्छा लग रहा है अजीम आपसे मिलके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत अच्छा लगा. और ऑडियंस आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनाने वाला है, लड़का यहाँ पर. अच्छा वैसे करते क्या हो, थोड़ा पहले अपने बारे में बताओ यार.
1: अन भाई मैंने अभी बीएससी कंप्लीट की है पीसीएम.
0: भाई लगता तो नहीं है यार, तेरी इससे देख के तो बड़ा छोटा सा बच्चा लग रहा है यार. ये मेरे को लग रहा था छोटे पैकेट में बड़ा धमाका. क्या किया है, क्या किया?
1: बीएससी कंप्लीट.
0: बीएससी कर लिए भाई, मुझे मारो. बहुत ही अच्छी बात है. अब आगे का क्या चल रहा है?
1: अब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ. अभी 8-9 तारीख में मेरा पेपर भी है यूपी पुलिस का.
0: क्या बात है. अरे वाह, ऑल द बेस्ट यार भाई, ऑल द वे बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए. तो मतलब प्रिपरेशन करते करते आप जो है जो अभी यहाँ पर सुनाने पहुंचे हो, ये वाला टैलेंट कैसे आया?
1: ये बस लिखने का शौक पड़ गया था. लिखता था, लिखने लगा. आगे वो बढ़ता रहा, लोगों के ओपन माइक्स करने चालू करे. चीजें मिली, अच्छा लगा लिखने पर. लोगों को सुनाई अपने आसपास के लोगों को, उन्होंने कहा बढ़िया लिखता है यार, कहीं अच्छी जगह जा. फिर आपसे मुलाकात हुई एक ओपन माइक, वहां से इंट्रक्शन हुआ.
0: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. मेरा जो भाई के साथ में पहला कॉन्वर्सेशन था वो एक ओपन माइक में था. मैं एक्चुअली मुरादाबाद की जनता को भी ये चीज बताना चाहता हूँ गाइज, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब भी मैं किसी ओपन माइक में जाता हूँ या किसी भी एक्टिविटी में जाता हूँ या फिर कोई भी सोशल प्रोग्राम्स में जाता हूँ जो आसपास में कराए जाते हैं, मेरा मकसद यही होता है कि वहां जाके कुछ अच्छे लोगों को ढूंढा जाए और उनको सही प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. अगर उनके अंदर कोई स्किल है, कोई अच्छा टैलेंट है, जैसे अजीम में बहुत अच्छा टैलेंट है, मैंने इसीलिए अजीम से कोऑर्डिनेट किया, संपर्क किया और उसको स्टूडियो पकड़ के मैं ले आया. शायद उसने भी ये सोचा नहीं होगा, इमेजिन नहीं किया होगा या अनएक्सपेक्टेड होगा उसके लिए. क्यों भाई?
1: सही बात है, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड.
0: हाँ अनएक्सपेक्टेड था. मैं समझ सकता हूँ भाई की आज जुबान भी लड़खड़ा रही है क्योंकि आज पहली बार वो स्टूडियो में आया है, राइट? इसी वजह से. बट कोई बात नहीं यार, काम डाउन, एक काम करते हैं, एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं और उसके बाद आपके साथ जो है सिलसिला जारी रखेंगे, ठीक है? कौन सा गाना है जो तुम्हारा फेवरेट है, जरा बताओ.
1: आनंद भाई मुझे जो गाना पसंद है वो है मैं शायर तो नहीं.
0: यार वो तो तू लग रहा है, झूठ क्यों बोल रहा है? शायर तो ये है, इतनी बड़ी चिट्ठी लेकर आया, मतलब पूरी डायरी लेकर आया ये बंदा. यार गाना बहुत अच्छा है. मैं शायर तो नहीं मगर हसी तुम्हें देखा तो शायरी आ गई. हम लोग इतने गा रहे हैं, आप रेडियो बंद मत करो, हम बिल्कुल नहीं गाने वाले, हमारी बिल्कुल अच्छी नहीं है, सॉरी यार. फिलहाल अब अजीम ने इस गाने की रिक्वेस्ट की है तो ये गाना जरूर सुनेंगे और आपको भी सुनाएंगे. बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही खूबसूरत कलाकार ने शैलेंद्र सिंह ने इस गीत को गाया है. तो ये गीत सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, इस गाने के बाद जल्दी से वापस आएंगे और अजीम से कुछ बेहतरीन सुनेंगे. आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6.

0: वेलकम बैक है वंस अगेन। बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आपने सुना नीलेंद्र जी की आवाज में। मैं शायर तो नहीं, लेकिन मेरे साथ जो बैठा है वो शायर है। मैं शायर नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। हाँ भाई, शायर आपका स्वागत है। मोहम्मद अजीम, वेलकम टू एफएम मुरादाबाद वंस अगेन एंड वेलकम टू आरजे आनंद के साथ ये जो कॉन्वर्सेशन वाला शो चल रहा है। फिलहाल ये बताओ, आप शायर हो या नहीं, ईमानदारी से बताना। है ना?
1: हाँ।
0: अरे बिल्कुल यार, मुझे पता है। चल फिर कुछ बढ़िया सा हो जाए यार, हमारे दोस्तों के लिए क्या सुनाओगे, सबसे पहले क्या पेश करोगे?
1: पेश मैं कहना चाहूंगा, सबको किसी ना किसी से दुख होता है एक तरीके से। मोहब्बत होती है, इजहार होता है,
0: प्यार होता है,
1: टूट जाता है दिल, किसी ना किसी तरीके से टूटता है।
0: बिल्कुल यार।
1: अब आपके पास एक लास्ट मौका ऐसा जरूर आता है जब वो सामने वाला पर्सन कहता है कि मेरी यादें सारी मिटा दो, फोटो मिटा दो। आप ब्लैकमेल तो नहीं करोगे मुझे मेरे फोटो से? आप फोटो भी डिलीट कर देते हो, सब डिलीट कर देते हो, बसता क्या है आपके पास? यादें, दुख।
0: करेक्ट।
1: तो आप उस दुख पे उससे क्या कहना चाहोगे? आप किसी से अपने आप से कहना चाहोगे तो शायरी अंदाज में, दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था। दुख पर जोर चलता भी तो कैसे मेरा, दिया जो उसने था, ना चला पाया मैं जोर उस पर। आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था, आखिर ये दुख भी तो उसी का दिया था। और वैसे भी मेरे पास इसके अलावा है ही क्या, मेरे पास इसके अलावा है ही क्या। ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है, ये दुखी है जिसने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर किया है। ये भी चला गया तो उसकी याद कौन दिलाएगा, उसकी याद कौन दिलाएगा। अब यही है। थैंक यू सो मच।
0: क्या बात है यार अजीम, बहुत अच्छा आपने बोला, उसकी याद कौन दिलाएगा। और जब जो इंसान चला जाता है, कहते हैं ना कुछ होना हो उसकी याद जरूर हमारे साथ होती है। आप सब कुछ बुला सकते हो लेकिन यादें कभी नहीं बुला सकते। कहते हैं ना लोग, कहते तो हैं अरे यार समय के साथ सब बदल जाते हैं, लेकिन यादें कभी नहीं बदलती यार,
1: कभी नहीं बदलती
0: है ना। इंसान की जिंदगी में सब कुछ वापस आ सकता है, लेकिन जो यादें हैं ना वो कभी, बस सिर्फ जो साथ में बिताई है वो मेमोरी जो है वो कभी वापस नहीं आ सकती, लेकिन वो लौट के सिर्फ यादें आ सकती हैं।
1: बस
0: करेक्ट। तो बहुत ही अच्छा अजीम ने सुनाया, और आई होप जनता आपको इनकी जो आवाज है वो पसंद आ रही होगी। मुझे तो बहुत आ रही है यार, आई लाइक इट योर वॉइस ब्रो, लोग मुझे बोलते हैं, लेकिन मैं सच बोलूंगी तेरी आवाज भी बहुत अच्छी है, वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है। चलो इसी बात पे कुछ और बढ़िया था आपने आते ही दिल तोड़ने वाली बात कर दी, मेरा तो टूटा ही नहीं है खैर अभी तक, और टूटना भी नहीं चाहिए वैसे तो। वेल कुछ बढ़िया सी कुछ और कुछ शायरी बढ़िया कुछ आप दोस्ती के ऊपर सुना सकते हो, प्यार के ऊपर तो आप सुना ही रहे हो, आज हम भी मिले हैं तो हम भी दोस्ती हैं, वी आर फ्रेंड ब्रो, तो कुछ
1: क्यों नहीं है दोस्ती के ऊपर।
0: हाँ श्योर यार, एक बढ़िया सी,
1: जस्ट इमेजिन आप मुझे मिले हो। हाँ, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा तो मोहब्बत इसमें भी आई है।
0: अरे यार तो ये मोहब्बत वाली तो मोहब्बत वाली पे छेड़ दे भाई,
1: बताता हूँ ना, बताता हूँ, सुनो अगर पसंद नहीं आए तो।
0: अरे नहीं बिल्कुल आएगी भाई, बिल्कुल।
1: मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ, कुछ दोस्तों को तो पा लिया। मोहब्बत चली गई तो क्या हुआ,
0: कुछ दोस्तों को तो पा लिया,
1: उसे पा ना सके तो क्या हुआ, दोस्तों को तो पा लिया।
0: क्या
1: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
0: तेरे साथ चाहता था प्यार से खाना खाना,
1: तू ना सही दोस्तों के साथ खा लिया।
0: ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल, क्या बात है। अजीम तुझे क्या लगता है, मतलब आज के जमाने के लड़के हैं हम भी, आजकल दोस्ती में वो प्योरिटी रह गई है क्या, जो शुद्धता एक पहले के लोगों में होती थी एक दूसरे के लिए, हाँ भाई हम खड़े हैं हमेशा आपके साथ में आपके सुख दुख में, आजकल दोस्ती में वो चीज है या सिर्फ सेल्फिशनेस ज्यादा हो गई है कि जब तक हमारा काम है तब तक दोस्ती है? इस चीज पे तुम क्या मानते हो, दोस्ती सच में है, दोस्ती में तवज्जो है आज भी वो? कुछ
1: कह सकते हैं,
0: कुछ कुछ है,
1: कैसे
0: पर वो कुछ कुछ वाले नहीं, हर किसी को नहीं टकराते ना यार।
1: हाँ हर किसी को नहीं टकराते
0: है ना, मजे की बात ये भी है।
1: हाँ।
0: और आजकल समय ऐसा हो गया है कि किसी से दोस्ती करने से पहले बड़ा सोचना पड़ता है यार,
1: बहुत ज्यादा।
0: वैसे तो हर कोई आपके लिए दोस्ती है, जब आप अच्छा काम करते हो तो आपको हर कोई दोस्त बना लेता है,
1: बनाना चाहता
0: है ना, हर कोई बनाना भी चाहता है, लेकिन हम किस पे ट्रस्ट करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
1: कर नहीं कर सकते किसी पे ट्रस्ट, इस टाइम नहीं कर सकते
0: है ना।
1: अब जस्ट इमेजिन हर कोई मैं हूँ, मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हर किसी के काम आता हूँ। आरजे भाई जैसे कि आपने मुझे कल भी बताया था, मैं कल अपने दोस्तों के लिए बहुत बहुत दूर चले जाता हूँ, बट मैंने अगर कुछ भी मांगा उनसे, कुछ भी रिक्वेस्ट की, वो नहीं सुनते। कहने का मतलब है दोस्त,
0: मतलब तो इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी तरफ से अच्छा वन साइड वाला फ्रेंडशिप रहता है, पक्का वाला, बट सामने से तुम्हें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती है बदले में, है ना, जो तुम एक्सपेक्ट करते हो। लेकिन जब ये चीज नहीं होती है तो कभी कभी लगता है फिर किस काम की फ्रेंडशिप,
1: फ्रेंड हो जाते हैं वो, वही होता है कि
0: फिर धीरे धीरे वो चीजें मतलब उस तरफ आने लगती है कि जो आप सोचते भी नहीं हो, और वहीं से चीजें खराब होती है यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुमने कहा 20% भी आज के समय में ऐसे लोग हैं जो दोस्ती अच्छी निभाते हैं, लेकिन वो अच्छे लोगों को ढूंढना भी हर किसी के उसकी बात नहीं है बॉस।
1: 100 में से 80% को खत्म करके 20% को ढूंढना तो मुश्किल हो जाता है,
0: मुश्किल हो, स्पेशली सोशल मीडिया के जमाने में तो खास कर यार, है ना। वेल इसी पे कुछ और सुनाना चाहोगे अजीम हमारे लिसनर्स को?
1: हाँ, अब आपकी मोहब्बत होगी कोई ना कोई तो, अब आपकी उसमें कहते हैं ना मोहब्बत कहती है मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना, तो उसपे मैंने शायरी लिखी थी उसकी मुस्कुराहट पे।
0: अच्छा, मेरी स्माइल पे तारीफ करो ना।
1: हाँ क्यों नहीं, हंसते लोग बहुत देखे।
0: हाँ भाई, हाँ भाई,
1: हंसते लोग बहुत देखे, ना देखी उस जैसी हंसी,
0: क्या बात है,
1: हंसते लोग बहुत देखे ना देखे, उस जैसी हंसी खूबसूरत तो वो बहुत है, पर उससे ज्यादा खूबसूरत है उसकी हंसी, वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका।
0: वाह,
1: वो आंखें वो लव वो उसके कान का झुमका है बहुत हंसी, पर उससे ज्यादा खूबसूरत है वो उसकी हंसी। अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, अब जलन होने लगी है मुझे उसके लबों से भी, आखिर वही तो उसको हंसने के बाद दोबारा चूमते हैं। थैंक यू सो मच।
0: क्या
1: so
0: बात
1: much.
0: है यार, वेरी वेरी अमेजिंग यार। ये जो शायर के अंदर का ब्लड प्रेशर बाहर आता है लास्ट में जाते जाते, ये क्यों होता है? ये मेरे को समझ नहीं आता कि शुरू से तो इनकी रफ्तार बड़ी धीरे होती है और जाते जाते मतलब पूरा हाँ बस मैं ही हूँ सबसे बड़ी मोहब्बत का शायराना, मतलब एकदम से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है यार। जैसे अभी तुम्हारा देखा मैंने, ये कोई इसके पीछे कोई खास रीजन है, ये शायरी का मजा बन जाता है।
1: शायरी का मजा बन जाता है। अब जस्ट इमेजिन में ये सी कहने लगता, अब तो जलन होने लगी है मुझे उसके।
0: भाई मत कर यार, मेरे को नींद आ जाएगी, बहुत सारा करना है। तो गाइज ये जो अमेजिंग सी कॉन्वर्सेशन है आप ऐसे ही सुनते रहेंगे, एंड मोहम्मद अजीम मेरे साथ मौजूद है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मैं तो भूल ही जाऊंगा, बड़ा लंबा चौड़ा नाम इस एरिया का। अमरोहा तुम्हारा आपके हिम्मत जाइए सुंदरी एफएम मुरादाबाद 89.6। ये हंसी की बातें कर रहा था, इश्क मोहब्बत की बातें कर रहा था। गाना है हसमत पगली प्यार हो जाएगा, सुना है? सुनो, साहब की आवाज है, बहुत प्यारा गाना है। उसी गाने को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, आपके हिम्मत जाइए सुंदरी आनंद को।

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन सोनू निगम साहब की आवाज, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक साथ में श्रेया घोषाल दे रही थी साथ, और यही गाना सुनते सुनते मैं आपका साथ दे रहा हूँ और मेरे स्टूडियो में मेरा साथ दे रहे हैं बहुत ही प्यारे से हमारे शानदार स्पेशल मित्र मेहमान, क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा, बस जो भी शब्दों से मैं इनको नवाजूंगा वो कम ही होगा। यस, आज की ब्यूटीफुल इस शाम को शानदार बना रहे मेरे साथ मोहम्मद अजीम मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया गाते हैं, इतनी अच्छी राइटिंग होने के बाद कभी ख्याल नहीं आया बॉलीवुड में जाके ट्राई करूं यार?
1: नहीं, बहुत ट्राई आता है, मन करता है साउथ में जाऊं।
0: साउथ में आइयो जी, साउथ लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, मैं बिल्कुल अच्छा मानता, लेकिन तुम साउथ में क्यों जाना चाहता जी, तुम्हारा हिंदी इतना अच्छा?
1: क्योंकि मुझे विलन्स रोल बहुत पसंद है।

0: मेरे को बाहर निकालो, तुम निकालो बाहर, मेरे को विलन लोग से बहुत डर लगता भाई।
1: सो यार देखो ये थी जोक्स पार्ट, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम वंस अगेन वेलकम है यार, गाना तो अच्छे अच्छे जो है आज सुनी रहे हैं आप अजीम और मैं भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अब अभी क्या तुम सुनाना चाहोगे, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा यार अजीम, आजकल ना सोशल मीडिया का वाला प्यार बड़ा अलग ही है। मतलब एक होता है कि एक प्यार होता था यार जब इंसान बिना देखे प्यार करता था उसकी आवाज से, उसको इमेजिन करता था। आजकल क्या होता है ना, प्यार बाद में होता है, पहले लोग देखना पसंद करते हैं कि पहले पिक्चर भेजो, मैं देखना चाहता हूँ पहले दिखते कैसे हो। एग्जैक्टली, तो ऐसा लगता है कि प्यार उसके दिल से नहीं उसकी खूबसूरती से हो रहा है एक्चुअली, जबकि प्यार दिल से होना चाहिए है ना। और जो दिल से प्यार होगा ना उसमें इमोशंस होगा, फीलिंग्स होंगी। देखो यार मैंने प्यार व्यार तो कभी किया नहीं है तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैं देखता हूँ लोगों को, मिलता हूँ, कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल है ऐसे जो एक्चुअली आज भी अपनी मोहब्बत के लिए रोते हैं, तो तब मुझे लगता है कि यार आज की दुनिया में 2026 में ऐसा भी प्यार है कि लोग इतना एक दूसरे के लिए तड़पते हैं। और जो ये तड़प है ना, जो बेकरारी है, वही इश्क है ना। और कुछ इश्क ऐसा भी है कि अभी हुआ जिसे हम कह सकते हैं लो ऑफ अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन, इट्स नॉट लव, इट्स अट्रैक्शन है ना। तो एक वो हो गया, लेकिन यार मैं वही कह रहा था कि दोनों प्यार अलग अलग है, लेकिन सोशल मीडिया वाला प्यार ऐसा है कि अभी प्यार हुआ उसके थोड़ी देर के बाद ब्लॉक भी हो गया है ना। तो इस प्यार में और पहले के प्यार में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन प्यार के ऊपर तुम्हारे पास कुछ है बढ़िया सा जो आज के जमाने का प्यार है स्पेशली, इस पे क्या कहना चाहोगे?
2: बहुत अच्छी शायरी है मेरे पास इसमें। जैसे होता है ना कि आप रंग रूप के लिए तो कर रहे हैं
1: भाई,
2: लेकिन आप अपनी मोहब्बत से वो तो आपके उसके पीछे हजार पागल हैं,
1: करेक्ट,
2: ठीक है ना, आपके पीछे पागल हैं, ओके, बट आप उससे आखिर बार क्या कहते हो जब आपके छोड़ के जाते हो? मेरे जैसी मोहब्बत किसी और से पालो तो बता देना, मेरे जैसा हक जताने वाला मिल जाए तो बता देना। यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, यूं तो हजार हैं तुमसे मोहब्बत जताने वाले, हमसा मोहब्बत करने वाला मिल जाए तो बता देना।
1: क्या बात है यार,
2: वंडरफुल
1: यार, यार हर बात पे थैंक यू बोलेगा तो मैं बाहर भाग जाऊंगा, फिर तुम इंटरव्यू कर लेना। खैर मजा आ रहा है, हर बात में थैंक यू बोलोगे तो मजा नहीं आएगा ब्रो, लेकिन यार थैंक्स अ लॉट, दिल से बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी नाइस, एंड आई एम श्योर आपको भी पसंद आ रहा होगा गाइस। और मोहब्बत के ऊपर तो यार बहुत सारी ना, प्यार के अंदर बहुत सारी चीजें चलती हैं, कभी कभी प्यार में ना भरोसा भी बहुत जरूरी होता है, कभी कभी नहीं हमेशा ट्रस्ट होना चाहिए प्यार में है ना, लेकिन आजकल के प्यार में ट्रस्ट कम हो गया है यार। आजकल प्यार में ना ट्रस्ट में देखता हूँ बहुत कम है, लोगों को अपने पार्टनर पे बिलीव ही
2: नहीं है,
1: वो थोड़ा सा भी बाहर जा रही है तो उन्हें डाउट्स हो जा रहा है, अब फ्रेंड्स किससे बात कर रही हूँ, कहाँ बात कर रही हूँ, कितनी देर कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब चीजें जो चलती है ना कहीं ये प्यार को कमजोर भी बनाती है,
2: सही बात
1: है ना। तो इसके ऊपर कुछ कहना चाहो?
2: ये है देखो, डाउट भी वही करता है अगर देखा जाए तो,
1: जो प्यार मोहब्बत करता है प्यार करता है,
2: अगर उसे मोहब्बत नहीं है तो वो,
1: ये बात मैं समझता हूँ, आई एग्री विद यू यार, मैं 100% बिलीव करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा कभी कभी ये चीज करना भी ना सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल देता है, है ना,
2: परेशान भी नहीं करना चाहिए सामने।
1: गॉट इट, अच्छी बात है, हम किसी की केयर कर रहे हैं उसके बारे में जानने का हमारा राइट है, हमारा हक है, है ना, लेकिन अभी मेरा हक है कि इस पे तुम मुझे कुछ सुनाओ, कुछ बेहतरीन सी लाइनें बोलो, कुछ अच्छा सा क्या लिखा है तुमने।
2: इस पे तो एक ही चीज कह सकता हूँ मैं, जैसे मोहब्बत चली गई, बिछड़ गया, अब मतलब जैसे होता है ना प्यार होती है आपके पास तो आप रोशनी में रहते हैं एक तरीके से 24 घंटे,
1: करेक्ट यार, बिल्कुल बिल्कुल,
2: आपको हर चीज अच्छी अच्छी लगने लगती है,
1: करेक्ट यार,
2: लेकिन उसके बाद क्या कहते थे आप, उसके बाद क्या कहोगे, कभी चमकता था कभी काता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, कभी चमकता था कभी चमकाता था अपने चारों ओर ये रोशनी का घेरा, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, तू क्या बिछड़ा यार मुझसे, अब बाहर की तो बाहर बात छोड़, मेरे यार मेरे अंदर ही है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, तेरे बाद ना रोशनी रही ना रोशनी का घेरा, तेरे बाद न रोशनी रही न रोशनी का घेरा, तेरे बाद बचा है तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा,
1: क्या बात है यार, क्या बात है, वाह जी वाह, सिर्फ बचा है अंधेरा ही अंधेरा, कल बिजली चली जाए अंधेरा ही अंधेरा हो। खैर मैं इनकी कॉन्वर्सेशन को बिल्कुल खराब नहीं करूंगा, बहुत अच्छा इन्होंने बोला। अच्छा यार जब नया नया प्यार होता है ना अजीम, तो लोगों के अंदर ना कि बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बड़ी अच्छी चमक होती है बंदे के अंदर, उस पार्टनर के अंदर, दोनों बड़े खुश होते हैं, नया नया जब प्यार होता है एक दूसरे का वेट करते हैं, मिलते हैं, तो जब नया नया किसी का हमारी लाइफ में किसी की एंट्री होती है तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे, जब नया नया प्यार एक दूसरे से, जब अट्रैक्शन होता है, प्यार होता है, मोहब्बत होती है,
2: तब तो मोहब्बत होती है, लड़का हर तरीके से शायरी अंदाज में भी तारीफ ही करता है।
1: हाँ तो वही तारीफ हम सुनना चाह रहे हैं हुजूर।
2: तो तारीफ है उसके बालों की।
1: अरे वाह,
2: अब जैसे लड़की के बाल हैं आपको, आप मिलते भी हो तो उसके बाल होते हैं ना भीगे भीगे बाल होते हैं, बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, उस पर मैंने एक शायरी लिखी है, तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है।
1: क्या बात है,
2: तारीफ करूं मैं उसकी लेकिन करूं कैसे, क्योंकि उसकी तो हर एक चीज कमाल है, लेकिन उन सब में से जो मुझे पसंद है उसके भीगे भीगे बाल हैं, गाल भी अच्छे हैं, पर कसम से यार लाजवाब उसकी चाल है, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें, उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें जी करता है मैं उनमें डूबा ही रहूं, लेकिन ये बात मैं उससे कैसे कहूं, ये बात मैं उससे कैसे कहूं, क्योंकि वो है इतनी कमाल है, उसकी उसकी तारीफ में तो मैं पूरी किताबें लिख दूं, उसकी तारीफ में तो मैं किताबें लिख दूं, क्योंकि वो है ही इतनी कमाल है, लेकिन यार मुझे जो उसमें सबसे ज्यादा पसंद
0: उसके भीगे,
2: है
0: वो उसके भीगे, भीगे बाल, बाल है। जी हाँ क्या बात है, कहूंगा मम्मी से बेटे समझ गया
2: मम्मी से नहीं गया
0: अरे नहीं नहीं इट्स अ जोक से पा रहे एनीवे ये तुमने खुद ने लिखा है ब्रो?
2: हाँ मैंने खुद ने,
0: क्या बात है, मतलब दिल की कलम से जो बात निकलती है उसे कहते हैं सच्ची होती है भाई वो, तो मतलब बता दे मुझे किसके भीगे भीगे बाल
2: है, कोई बहुत पसंद है लेकिन वो किसी और की पसंद है मैं कैसे बता सकता हूं
0: भाई मुझे। अच्छा ये यार हर किसी के साथ होता है। और अच्छा एक चीज और है यार अजीम, कहते हैं कि असली और सच्ची मोहब्बत वही होती है जो तुम्हें ना मिले, जो प्यार तुम्हारा मुकम्मल ना हो सच्चा होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों को कहते सुना है यार। हाँ, तो इस बात में कितनी सच्चाई है, मतलब कुछ लोग कहते हैं अगर आप जिससे प्यार करो वो आपके साथ मिल जाए तो पूरी जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। हाँ। बट कुछ लोग कहते हैं जिनको नहीं मिलता वो कहते हैं कि सच्चा प्यार ना मिले वही तो असली प्यार है,
2: मोहब्बत ही वही जो
0: बहुत वही तो मोहब्बत है जो प्यार मुकम्मल ना हो, है ना। तो इसपे क्या सुनाना चाहोगे हमारी मुरादाबाद की जनता को, कुछ है कुछ बढ़िया सा इसमें? कोई इंसान है जिसका प्यार उससे नहीं मिला है बट वो अपने आप को खुश रखने के लिए कह रहा है कि यार नहीं यही तो असली प्यार है, यही तो प्यार, जो प्यार मुकम्मल ना हो वही तो मोहब्बत है, जिसकी याद हमें जिंदगी भर रहे, जिसकी यादों में हम जिंदगी भर रहे तो प्यार है।
2: अच्छा मेरे पास इस पे एक है बढ़िया शायर। हाँ, लेकिन वो ऐसे है जैसे आपकी मोहब्बत की शादी भी तो हो जाती है ना।
0: हाँ यार
2: दूसरी की हो गई वो,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
2: लेकिन एक वो जो खुश है या दुखी है लड़की सामने वाली, आपकी मोहब्बत है, लड़का है लड़की जो भी है, तो आप उस लड़की की स्टोरी देखने के बाद कैसे बताओगे कि वो खुश है जबकि उसने सिर्फ पैर और पायल की फोटो लगा रखी है।
0: करेक्ट।
2: तो उस पे मैंने लिखी है शायरी। शादी हो गई थी उसकी 12/6/2025 को थी, देखा था मैंने उसका स्टेटस ब्लॉक नहीं किया, शायद जलाना चाहती थी। इस 12 तारीख को उसकी एनिवर्सरी भी है, देख रहे हैं मोहब्बत की एनिवर्सरी आने वाली है। तब मैंने उस पर लिखा था वो उसके पैरों पर लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, वो उसके पैरों में लगी मेहंदी, वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल, उसको देखकर खुश था दुखी था मैं शायद घायल। यार वो कितनी खुश थी, यार वो कितनी खुश थी, देखकर पता चलता है उसकी मेहंदी का रंग और वो उसके पैरों में बंधी पायल, उसके पैरों में बंधी पायल।
0: क्या बात है, क्या बात है यार, बहुत बहुत बढ़िया, तुमने पूरा ओपन माइक ही खोल दिया यार मेरे स्टूडियो में आज, मतलब सच में बहुत मजा आ रहा है। एंड अजीम आई होप तुम्हें भी अच्छा लग रहा होगा यार, अपने दिल की बात आप तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो आज, और ये जो लड़का डायरी लेकर आया ना इसमें बहुत सारी भरी पड़ी है इसके दिल की बात, आज मैं सारी सुनूंगा। तो दोस्तों आप कहीं मत जाइए, स्टे ट्यून्ड रहिए, एंड अभी एक गाना सुन लेते हैं कोई बढ़िया सा। इतनी सारी भीगे भीगे बालों की बातें कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो कुछ ऐसे ही तड़कता भड़कता सा गाना होना चाहिए क्या अजीम?
2: क्यों नहीं,
0: कोई गाना है तेरे दिमाग में अभी जो तू सुनना चाह रहा हो?
2: भीगे भीगे बालों पे एक गाना भी है यार,
0: बट वो मुझे याद नहीं आ रहा,
2: याद नहीं आ रहा।
0: यही तो प्रॉब्लम है कि जब हम कोई एक्चुअल में चीज को याद करते हैं ना उसी टाइम गायब होती है, वैसे हमारे जहन में घूमती रहती
2: है, रहता
0: है ना।
2: लेकिन अभी मेरे मन में आ रहा है लेकिन वो
0: दिमाग में नहीं, जुबान पे नहीं आ पा रहा है। भाई काम कर, तू अपना गाना याद कर, जब लौट कर आएंगे तो फिर तेरी पसंद का गाना सुनेंगे, फिलहाल तू एक मेरी पसंद का गाना सुन। दोस्तों आप भी सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का सामुदायिक रेडियो, अजीम के साथ आप ढेर सारी बातें सुन रहे हैं, उसके दिल की शायरी सुन रहे हैं और साथ में आनंद भी आपका साथ दे रहा है। तो स्टे ट्यून्ड रहिए, एक बढ़िया गाना सुन के जल्दी लौट।

0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं ना आरजू भाई।
1: बिल्कुल यार, सही कहा आपने। मेरा नाम आनंद है यार वैसे।
0: आरजे आनंद भाई,
1: आरजे भाई भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आनंद बोलोगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। आनंद नहीं आ रहा क्या?
0: आनंद बहुत ज्यादा आपके साथ तो आनंद आ रहा, तभी तो
1: मैंने ये नाम रखा यार। नहीं आएगा तो भी आनंद बोल के जाएगा।
0: बहुत खूबसूरत नाम है आपका।
1: चलिए
0: इससे ज्यादा खूबसूरत आपका नाम है।
1: क्या बात है। तो एक काम करते हैं, इसी खूबसूरती के साथ अब इसमें चांद को ऐड कर देते हैं। तुम अभी कुछ बोल रहे थे चांद के बारे में।
0: जैसे जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, उस पर मैंने शायरी लिखी है
1: जी।
0: जिससे मोहब्बत होती है लोग अक्सर उसे चांद कहते हैं, तुझसे मुझे मोहब्बत है पर मैं तुझे चांद नहीं कहूंगा।
1: क्या बात
0: पूछती है क्यों? अरे पगली, मुझे ये भी पसंद नहीं तू मेरे से एक इंच भी दूर रहे, और चांद तो मेरे से 384,400 किलोमीटर दूर है। फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूँ? फिर मैं तुझे चांद क्यों कहूँ? अगर तू चाहती है मैं तुझे कुछ कहूँ तो मैं तुझे अपनी रूह कहूंगा। पूछती है क्यों? पूछती है क्यों? अरे पगली, वो मेरे मरने पर ही मेरे जिस्म से अलग होगी, मेरे जिस्म से अलग होगी। थैंक यू।
1: क्या बात है यार, क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया। बड़ी गहराइयों के साथ लिखते हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्सर आधी रात में बैठ के लिखते हो क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग रात में ज्यादा लिखते हैं जो शायर होते हैं, ऐसा सुना है मैंने।
0: हाँ, रात को माइंड फ्रेश रहता है, यही बात आती है।
1: और ज्यादातर जो है आदमी की क्रिएटिविटी रात को ही निकलती है,
0: बहुत ज्यादा जागती है।
1: करेक्ट। बहुत अच्छा लगा अजीम, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, योर शायरी, जो भी आपने आज श्रोताओं तक पहुंचाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। एंड जाते जाते मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो आपको कैसा लगा यहाँ पर अपने दिल की बात कहकर मेरे लिसनर्स से?
0: बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। थैंक्स फॉर यू, नो आप मुझे थैंक यू कह रहे हैं, मुझे आपको थैंक यू कहने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनर्स, आपने मुझे सुना, अगर मैं पसंद आता हूँ तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं आप।
1: बिल्कुल, मैं आपको जरूर बताऊंगा, आपकी बहुत सारी गलतियां हैं, मैं जल्दी चिट्ठी भेजूंगा आपको सारी गलतियों। ये अजीम जी हमारे साथ थे आज स्टूडियो में, जिन्होंने बहुत सारी शेर व शायरी साथ करी। और जाते जाते एक शब्द तमाम लोगों के लिए आप पेश करना चाहते हो, जिसमें हर कोई शामिल हो, हर कोई इंक्लूड हो, कुछ ऐसी शायरी जो आप कहना चाहते हो, या किसी को किसी की मोहब्बत की याद आ रही है तो उसके लिए आप क्या कहोगे जाते जाते?
0: हाँ हाँ, है ना। हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा।
1: क्या बात है।
0: हद तो ये है मैं तुझे बेपनाह बेवजह चाहता रहा, तूने किसी और को चाहा ये भी एक हदी थी, तूने किसी और चाहा ये भी एक हदी थी, अब हद ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को न चाहूं। अब हद है ये है कि मैं मर जाऊं पर तेरे अलावा किसी और को ना चाहूं। तेरी जगह कितनों ने मांगी, तेरी जगह कितनों ने मांगी, पर अब हद ये है कि तू नहीं तो कोई हद नहीं।
1: क्या बात है। थैंक यू सो मच अजीम, आप आए, लवली टॉकिंग टू यू मेरे भाई। एंड आई एम रियली श्योर जितने लोगों ने भी सुना होगा उनको भी बहुत मजा आया होगा इस शेरो शायरी वाले प्रोग्राम में। एंड आई होप आप नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे और हमारे साथ फिर से एक बढ़िया कॉन्वर्सेशन करेंगे, राइट? और कुछ बढ़िया सुनाने आएंगे ना। और गाइज, आपका भी दिल से शुक्रिया कि आप इतनी मोहब्बत की और इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अजीम, मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपके एग्जाम्स जो आप देने वाले हो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके फ्यूचर के लिए ऑल द वे बेस्ट। एंड आई होप आप ऐसे ही रॉक मचाते रहो, और जो ये लिखने का सिलसिला है, जो लोगों तक अपनी बात रखने का सिलसिला है, जो आप अपने शेर व शायरी के माध्यम से रखते हैं, ये भी आप कंटिन्यू रखें, करते रहें, हमारा प्यार और जो सहयोग है वो हमेशा आपके लिए।
0: थैंक यू सो मच।
1: और जितना हमें लगेगा कि यार ये बंदे को और पकड़ पकड़ के बुलाना चाहिए स्टूडियो में अपने लिसनर्स के लिए, तो तुम्हें परेशान करते रहेंगे, बुलाते रहेंगे।
0: पक्का, मैं तो चाहता हूँ आप मुझे परेशान करें।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो गाइज, मैं इसको परेशान करके आता हूँ, आपसे लेता हूँ जाने की इजाजत, फिर होगी मेरी आपकी मुलाकात वेरी वेरी सून। आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6, आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बहुत सारी बातें हो गई यार, आई कांट बिलीव दिस कि कितनी जल्दी इतना सारा टाइम हो गया है। फिलहाल कुछ अच्छे गाने छोड़ के जा रहा हूँ, आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। टाटा बाय, ख्याल रखिए अपना। बाय बाय अजीम,
0: बाय बाय, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू, बाय बाय।

0: विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ के बाद 290 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। इनमें त्रिशूली एक जल विद्युत परियोजना के 63 कर्मचारी और कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बाढ़ के मद्देनजर लोगों की सहायता के लिए नई दिल्ली में 24 घंटे कार्यरत नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। नियंत्रण कक्ष से 9111230887818 और 9111230887819 पर संपर्क किया जा सकता है। व्हाट्सएप कॉल और संदेश के लिए 9199682919888 नंबर जारी किया गया है। काठमांडू में भारतीय दूतावास ने सहायता के लिए 9779851386907 9779701075007500 और 9779810326117 नंबर जारी किए हैं। इस बीच नेपाल में कल आई बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 359 हो गई है। नेपाल पुलिस के अनुसार आज 93 और शव बरामद किए गए। तिब्बत और नेपाल के अधिकारियों के अनुसार 30 देशों के 1300 से अधिक लोग लापता हैं। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक प्रभावित क्षेत्रों से 800 से अधिक लोगों को बचाया गया है। नेपाल में छोछेन खोला और पुरेपू सांगपू नदियों के संगम के पास बनी झील के टूटने का खतरा बढ़ गया है। चीन के जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार झील में अगले 3 दिन में 30 लाख घन मीटर अतिरिक्त पानी पहुंच सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज का सर्वेक्षण किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने नेपाल में आई बाढ़ के मद्देनजर स्थिति की समीक्षा की।
1: बिहार जल संसाधन विभाग के अनुसार गंडक बैराज पर जलस्तर में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। हालांकि नेपाल के देवघाट क्षेत्र में बारिश के कारण नदी के जलस्तर में मामूली बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि
2: नेपाल में एक तरह से आपदा आया, ये चिंता का विषय है, सबको चिंता भी करनी पड़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी लगातार बिहार की स्थिति को भी देख रहे हैं। अब धीरे धीरे चीजें समान हो रही है।
1: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बिहार में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं, जबकि अतिरिक्त बचाव दल की 4 टीमें तैयार रखी गई हैं। इधर पड़ोसी देश में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने समस्तीपुर रेल मंडल में अलर्ट जारी किया है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नेपाल में फंसे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षित निकालने और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए राहत

0: और बचाव अभियान तेज कर दिया है। नेपाल की सांसद और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की नेता विदुषी राणा ने आपदा के समय नेपाल के साथ खड़े रहने और हर संभव मदद का भरोसा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने बड़ी मात्रा में राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत को धन्यवाद दिया। संयुक्त राष्ट्र ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए 20 लाख अमरीकी डॉलर की शुरुआती सहायता दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद की 2 दिन की राजकीय यात्रा करेंगे। इस दौरान श्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
2: Discussions are expected. दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे जाएंगे। इसमें व्यापार और निवेश, महत्वपूर्ण खनिज, स्वास्थ्य, व्यापार, शिक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क शामिल है। ये बातचीत भारत और उज्बेकिस्तान के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक संबंधों को उजागर करेगी। स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल
0: रिलेशनशिप। ताशकंद से प्रधानमंत्री किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक जाएंगे। श्री मोदी राष्ट्रपति सादो जापारोव के निमंत्रण पर 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत विनिर्माण, नवाचार और निर्यात के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों से भारत की बढ़ती क्षमता का लाभ उठाकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की जरूरतें पूरी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सुधारों के जरिए हो रहे बदलाव और मजबूत आर्थिक वृद्धि से भारत कनाडा के बीच अधिक मजबूत और निवेश आधारित आर्थिक साझेदारी के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का रक्षा उत्पादन करीब 4 गुना बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है और रक्षा निर्यात बढ़कर करीब 39,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रक्षा मंत्री ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत के लिए 472 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजना की आधारशिला रखने के बाद ये बात कही। रक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार का वर्ष 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए की रक्षा निर्यात का लक्ष्य है।
3: आज का यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भरता की एक मजबूत कड़ी है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया के लीडिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स हब में अपनी मजबूत पहचान बनाए और इस नेशनल मिशन में जबलपुर जैसी फैसिलिटी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी एफिशिएंसी के साथ और सिंसियरिटी के साथ निर्वाह करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने टैंक मरम्मत परियोजना को आत्मनिर्भर भारत की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मानव कल्याण की प्रेरणा देते हैं। अहमदाबाद में आज गुजरात विद्यापीठ के 72वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा में शिक्षा, बहुविषयक अध्ययन और कौशल आधारित विकास को प्राथमिकता दी गई है, जो महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप हैं।
4: पूज्य बापू का विचार था कि स्वाधीनता तब तक अधूरी रहेगी जब तक हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारा श्रम और हमारा उद्देश्य राष्ट्रीय न हो, अपना न हो। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति से हम बंधे हुए नहीं हैं तो स्वतंत्रता का कोई मतलब ही नहीं है। और मन में स्वराज की परिकल्पना को अनेक प्रयोगों से जमीन पर उतारने का काम किया।
0: श्री शाह ने वर्ष 2047 तक सभी क्षेत्रों में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर बल दिया। अहमदाबाद में फार्मा इनोवा अवार्ड्स 2026 में श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
5: रजनीभाई ने शुरुआत की और आज ये परंपरा ढेर सारे लोगों में रिसर्च के फील्ड में काम करने के लिए न केवल अनुकूलता बनी, आर्थिक मदद भी हुई। एक प्रकार से ये अवार्ड उनको एक्नोलेज करता है सोसाइटी में और इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने में, ये बहुत बड़ी बात है जो रजनी भाई ने उस जमाने में सोची।
0: गृह मंत्री ने अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों पर उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता भी की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए @AIRNews हिंदी को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़े।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार 21वीं सदी के भारत की आधुनिक खेल व्यवस्था तैयार करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने आज खेलो इंडिया संवाद को संबोधित करते हुए कहा कि खेल विश्वविद्यालय से लेकर आधुनिक प्रशिक्षण केंद्रों तक देश भर में खिलाड़ियों को हर स्तर पर सहयोग प्रदान करने के लिए खेल तंत्र विकसित किया जा रहा है।
7: हमारी सरकार भारत में 21वीं सदी का आधुनिक स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से लेकर आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर्स तक देश में एक ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें प्रतिभा को पहचानने से लेकर उसे दुनिया के मंच तक पहुंचाने तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
0: केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने खेलों को विकसित भारत का हिस्सा बनाने के लिए सभी से सामूहिक प्रयास करने का आह्वान किया। खेल दिवस के अवसर पर आज IFLU विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की पहल से देश अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिक पदक जीत रहा है। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की नियंत्रित बिक्री शुरू कर दी है। उपभोक्ता कार्य विभाग की सचिव निधि खरे ने आज नई दिल्ली के कृषि भवन से प्याज की खुदरा बिक्री वाले वाहनों को रवाना किया। सरकार के मूल्य नियंत्रण बफर स्टॉक का प्याज 35 रूपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर बेचा जा रहा है। श्रीमती निधि खरे ने कहा कि सरकार हर वर्ष ये सुनिश्चित करती है कि कीमतों में बढ़ोतरी होने पर रियायती दर पर प्याज उपलब्ध हो।
8: हर वर्ष हम लोग कोशिश करते हैं कि प्याज में अगर कोई कीमतों की बढ़ोतरी होती है तो उसमें रिटेल इंटरवेंशन के माध्यम से सब्सिडाइज दर पर प्याज की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। प्याज की जो प्रोडक्शन है या अवेलेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है। एक्सपोर्ट को भी देखें तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले भी सामान्य है।
0: मौसम विभाग ने कल उड़ीसा और बिहार में मूसलाधार वर्षा के साथ बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कल छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज वर्षा होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कोलंबो में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। इसके साथ ही भारत ने यह श्रृंखला 1-0 से जीत ली है। श्रीलंका ने आज मैच के अंतिम दिन फॉलो ऑन खेलते हुए दूसरी पारी में खेल समाप्ति तक 9 विकेट पर 429 रन बनाए। इससे पहले श्रीलंका की पहली पारी 290 रन पर सिमट गई थी। भारत ने पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित की थी। हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने 5वां स्थान हासिल कर लिया है। आज खेले गए मुकाबले में भारत ने जर्मनी को 3-1 से हरा दिया। नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में भारत के लिए इश्का ने 1 और नवनीत कौर ने 2 गोल किए। जर्मनी के लिए एकमात्र गोल लिन क्रिंक्स ने किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नेपाल बाढ़ में फंसे भारतीय नागरिकों का पता लगाने और बचाने के प्रयास तेज। लगभग 1300 लापता लोगों में 290 भारतीय, मृतकों की संख्या 359 हुई। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में टी युद्धक टैंकों की मरम्मत परियोजना की आधारशिला रखी। इसे राष्ट्र की आत्मनिर्भरता की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सरकार ने प्याज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतों पर नियंत्रण के लिए बफर स्टॉक से प्याज की बिक्री शुरू की। और भारत तथा मेजबान श्रीलंका के बीच दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ। भारत ने श्रृंखला 1-0 से जीती। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
10: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन विलिस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
11: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: नमस्कार मुरादाबाद। तो साहब, हो गई है आपकी शॉपिंग या चल रही है अभी? क्योंकि मार्केट में तो है इतना रश कि गलती से भी अगर आप अपनी बाइक और स्कूटी इधर उधर ले गए ना, तो भाई साहब वहीं रास्ते में फंसना है। सबसे अच्छा ये है कि कहीं मिले पार्किंग बाहर की तरफ, तो आराम से लगाओ साहब और पैदल पैदल घूमो मार्केट में। और सुनो अपने पसंद के गाने। अगर गाड़ी में बैठे हैं ना और ट्रैफिक में फंसे पड़े हैं रोडवेज और स्टेशन के पास, तो बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए इधर उधर अपने सब साथियों को देखते हुए फटाफट 9837896896 पर मिलाएं और अपने मनपसंद का गाना प्ले करवाएं। चलिए हमारे साथ हमारे एक लिसनर हैं लाइन पे, उनसे आज शुरुआत करते हैं। नमस्कार, दिल से दिल तक अखिल संग, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर? अखिल भाई
0: बढ़िया सर, बढ़िया। और कैसे हैं आप? कैसा मौसम है आपकी तरफ?
1: मौसम सुबह से 6 बजे से बारिश हो रही थी। आप

0: बात सुनिए अखिल भाई, और तो वो तो इस टाइम मजा आ गए, मतलब बस में फ्री किराया फ्री लगेगा, अब तो जाएंगे और आएंगे भी।
1: हाँ साहब देखिए साहब, जब पूरे साल इतनी मेहनत और इतना सब कुछ होता है, ये तो कुछ भी नहीं है उन लोगों के लिए।
0: जी जी जी बहुत बढ़िया, वैसे आएंगे भी और जाएंगे भी। वैसे अपने मुरादाबाद में फ्री है ना इस टाइम पर?
1: हाँ जी यहाँ पूरे पूरे उत्तर प्रदेश में फ्री है, और मुरादाबाद के आप कहीं भी यूपी में किसी भी रोडवेज कहीं से भी आप जो भी आप आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा, महिलाओं से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। कल हाँ कल कल कल मध्य रात्रि तक ये रहेगा लागू।
0: कल तो आपकी बहनें भी आएंगी और आप भी जाओगे,
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: आप भी जाओगे सुबह क्या कल को?
1: हाँ जी अभी तो कल ही डिसाइड होगा कल कैसे क्या होना है।
0: बात सही है।
1: तो आप बताइए, आप कोई शायरी सुनाना चाहेंगे या पहले गाने की फरमाइश?
0: आप पहले शेर शायरी सुनाएंगे।
1: सुनाइए सुनाइए सुनाइए, जल्दी सुनाइए साहब।
0: ना शहर देखो ना बयान देखो, खुदा का खुलौता निशान देखो, आप खुल के देखो रेहान भाई को देखो।
1: ये शायरी करिए या अपनी तारीफ ही कर दी आपने?
0: मेरी बात सुनो, लंबी है मंजिल पास है किनारा, दोस्त की न्याया एसएमएस हमारा, भूल गए नंबर नामो हमारा, मिल गया दूसरा आपको प्यारा।
1: बहुत ही बढ़िया, जो भी सुन रहा होगा आसपास ढूंढ रहा होगा कहाँ है रियान भाई, कहाँ है रियान भाई।
0: जी जी जी जी बहुत बढ़िया, सारी बहुत अच्छे याद है।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो आप बताइए फटाफट आपकी क्या फरमाइश है?
0: फिल्म का नाम है रेशम की डोर, गाने का बोल रहे हैं वही बहनों के ऊपर,
1: बहना ने भाई को प्यार से हाथ पे कलाई पे।
0: हाँ बहना है।
1: चलिए साहब जरूर आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, धन्यवाद। तो श्रोताओं ये थे हमारे साथ रिहान जी, जो बिल्कुल एकदम मस्त बातें करते हैं और कहते हैं कि उनकी तरफ से पूरे FM मुरादाबाद 89.6 MHz की तरफ से सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उसी गाने से शुरुआत करते हैं, त्यौहार की फीलिंग आ रही है। चलिए आप भी इंजॉय कीजिए, और आपकी भी कोई अगर मन की फरमाइश है, कोई ऐसी दिल की जो बात निकली हुई है जो आनी चाहिए दिल से दिल तक में, और हमें 9837896896 पे बताएं और मुस्कुराएं।

0: आप भी निकल गए हैं सफर की तरफ, और कोई निकल जाता है अभी, चलिए पहुंच जाएंगे सुबह, या फिर कोई कर रहा होता अपने बैग की पैकिंग कि सुबह होते ही हम निकल जाएंगे अपने भाई की तरफ, अपने भाई को उस प्यार भरे रक्षाबंधन निभाने की तरफ। तो क्यों नहीं, अगर आपकी भी फरमाइश, कोई डेडिकेशन हो अपनी बहन की तरफ, अपने भाई के लिए कोई गाना डेडिकेट हो, तो ज़रूर हमें कॉल करें और 9837896896 पर हमें मैसेज भी कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं और लिसनर, चलिए उनसे भी कुछ बात करते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: माय नेम इज सबीना खान, मुरादाबाद से बोल रही हूँ मैं।
0: सबीना खान जी, कैसे हैं आप?
1: जी मैं ठीक हूँ, आप बताइए सर।
0: सब बढ़िया,
1: आप कैसे
0: हैं? सब बढ़िया सबीना जी, और क्या करती हैं आप?
1: मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, फिलहाल तो मैं तैयारी कर रही हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की।
0: बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: वो गाना है मतलब एक पुरानी फिल्म का।
0: हाँ हाँ बताइए।
1: देख सकता हूँ मैं कुछ भी होते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे होते हुए वाला,
0: देख सकता हूँ मैं।
1: हाँ ये सॉन्ग अच्छा लगता है काफी।
0: कुछ भी, हाँ
1: हाँ, रक्षाबंधन भी है तो उसके मौके पर ही।
0: जरूर जरूर जरूर। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगी आप ये गाना, या कोई शायरी भी सुनाना चाहेंगी?
1: शायरी तो मुझे नहीं आती, मतलब ये मैं अपने जो है भाई बहनों को डेडिकेट करना चाहूंगी ये सॉन्ग।
0: जरूर जरूर शबीना जी। तो श्रोताओं, हमारे साथ जुड़ी थी शबीना खान जी, जिन्होंने इतना बढ़िया गाना डेडिकेट करने के लिए कहा है अपने सिस्टर्स और ब्रदर्स को। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए, और ये गाना सच में ऐसा है कि गुनगुनाए बिना नहीं रह सकते, तो थोड़ा तो गुनगुनाना बनता है दोस्त। 9837896896 पे आपसे होंगी खूब सारी बातें, और आपकी होंगी खूब सारी दिल से दिल की फरमाइश।

क्या बात है। एक बार फिर से स्वागत है FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। बिल्कुल सही कहा, जब हम सफ़र कर रहे होते हैं ना, और त्यौहार हो रक्षाबंधन का, तो जैसे जैसे घर पहुंचने का समय आ रहा होता है, वो हमेशा ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा हो गया है, अभी ट्रैवल मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा, मुझे कैसे भी करके घर पहुँचना है। और हाँ, और जो इंतज़ार कर रहे हैं उनसे मिलना है, खूब सारी बातें करनी है, खूब सारी बातों पूछनी भी है कि कहीं क्या क्या हुआ था भाई मेरे पीछे। मैं अगर 1 महीने घर से बाहर रही या घर घर से बाहर रहा, तो क्या क्या हुआ उस बीच। तो होता है कुछ स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ भाग के स्टेशन पहुँच रहे हैं कि जल्दी पहुँचो, ट्रेन पहुँचने वाली होगी, भैया रिसीविंग जल्दी से करनी है। हमारे पास फरमाइश आई है नरेंद्र जी की और प्रभास सैनी जी की, इसे समझो ना रिश्ता था, इस गाने के लिए। तो ज़रूर हम ये प्ले करते हैं, और आपकी भी कोई फरमाइश है तो ज़रूर हमें 9837896896 पे कॉल करें या मैसेज करें। तब तक इस गाने का आनंद लें।

0: क्या बात है, अभी आप एंजॉय कर रहे थे, तूने जो ना कहा वो मैं सुनता रहा। और सच में ये ऐसे ही होता है, कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो बिना कहे सुन लिए जाते हैं, तो हमें तो सुनना ही पड़ता है साहब, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। जैसे कि कॉल पे आ गई है बात, बात करते हैं अपने नए लिसनर से, क्या कहते हैं। हेलो, दिल से दिल तक अखिल संग, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शमसुल इस्लाम।
0: शमसुल जी, इस समय कहाँ पर हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सर, खेड़ा डाना रामपुर में।
0: क्या बात है, कैसा मौसम हो रहा है रामपुर में?
1: मौसम सही है, बहुत अच्छा है मौसम।
0: और इस कौन सी फरमाइश है आपकी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: गाना सुनना है जहाँ की नहीं तुम्हारी आँखें।
0: क्या बात है, किसे डेडिकेट करना चाहेंगे इसे?
1: वसीम भाई को।
0: वसीम जी को, कोई शायरी भी बोलना चाहेंगे उनके लिए?
1: उनके लिए शायरी है, मरने के बाद भी है दोस्त हम तुम्हें सताएंगे, तुम पैदल चलोगे तो हम तुम्हारे कंधों पे जाएंगे।
0: क्या बात है, अच्छा हुआ आपने, बहुत ही बढ़िया, क्या बात कही है आपने। मैं तो सोचा था आप ये कहने वाले हैं कि तुम पैदल चलोगे तो हम पीछे पीछे साइकिल से आ जाएंगे। चलिए, बहुत ही बढ़िया शमशुल जी, और अच्छा लगा आपने मुझे, करते हैं आपके। तो साहब हमारे साथ शमशुल जी जुड़े हैं, जो कह रहे हैं कि इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, और ये गाना वो डेडिकेट करना चाहते हैं अपने दोस्त वसीम भाई को, तो ज़रूर उनकी फरमाइश पूरी करते हैं। आपकी तैयार है, ये हॉटलाइन सिर्फ आपके लिए है साहब, ज़रूर कॉल करें और अपनी फरमाइश का आनंद लें।

क्या बात है साहब, आप भी खो गए होंगे कहानी में। ऐसे ही होता है जब बैठे होते हैं ना गाड़ी में और इधर उधर हमें चलना होता है, तेज बिल्कुल पहुंचना होता है और जाम में फंस जाते हैं, तो गाने ही हैं जो अपने से लगते हैं। आपकी भी कोई फरमाइश होगी तो साहब हमारे पास ही आएगी और हम उसे बिल्कुल प्यार से प्ले करेंगे। हमारे पास आज जो मैसेजेस में फरमाइश आई है उनमें सबसे पहले फरमाइश है हमारी हमारे पूरे परिवार की तरफ से। अखिल सर जी, आपको प्यार भरा नमस्कार। जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधा एक रेशम की डोर से भाई बहन का ये प्यार है। क्या बात है, आपने कितनी अच्छी शायरी लिखी है। नेम नमन यादव, शंकर लाल यादव, ऋतु यादव, अमित यादव, निरांशी यादव, लाइन पर मुरादाबाद प्रकाश नगर 84 से। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इनके तो प्लीज़ ही नहीं ख़त्म होते। प्लीज़ हमारा एक प्ले कर दीजिएगा। हंसते हैं तो हंसती है बहन, क्या बात है। ज़रूर, और सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। तो ज़रूर ज़रूर आपकी तरफ से सभी हमारे लिसनर्स को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये गाना हम ज़रूर प्ले करेंगे। उसके अलावा हमारे रजनी, जिन्होंने भी हमारे पास फरमाइश भेजी है कि आप प्लीज़ मेरा गाना ज़रूर प्ले कर दीजिएगा, और साथ में उस्मान जी की फरमाइश आई है, तो हम सबकी आप सभी की फरमाइश पूरी करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं और ये पहचान लीजिएगा कि किसकी फरमाइश पहले पूरी हो रही है। तो ज़रूर हम फरमाइश के साथ ये सिलसिला चलता रहेगा, और आप कभी 9837896896 पे कॉल करिए और गाने का आनंद लीजिए साहब।

रजनी जी की फरमाइश पे ये गाना मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। एंजॉय कीजिए रजनी जी अपनी फेवरेट फरमाइश का और अपने फेवरेट सॉन्ग का।

0: कितनी कहते ना एकदम, कुछ गाने ऐसे होते हैं आप सुनते सुनते उसमें एकदम खो जाते हैं। उन्हीं में से एक गाने की फरमाइश रजनी जी ने की थी आज कुछ खास के लिए, तो ज़रूर आपको मुझे लगता है पूरी फरमाइश हो गई है और आपको अच्छा लगा होगा रजनी जी। चलिए हमारी दूसरी जो फरमाइश आई थी वो आई थी उस्मान जी की तरफ से, तो उनकी भी फरमाइश पूरी करते हैं। अगर हाँ आपकी भी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर हमें बताएं 9837896896 पे।
1: का जानू मैं सजनिया का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया,

जी हाँ, आप भी खो गए ना ये गाना सुनते सुनते। सच कहूँ तो सच में होता है साहब, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई गाना सुनते सुनते हम खुद में खुद खो जाते हैं, इधर उधर नजरें मिला के खुद ही खुद सो जाते हैं। तो चलिए करते हैं खूब सारी बातें, और बातों के साथ साथ मैसेजेस भी हैं। मैसेजेस में हमारे पास जो अभी फरमाइश आई है वो उदयपाल जी की फरमाइश आई है। उन्होंने कहा है कि प्लीज़ एक गाना हमारा भी प्ले कर दीजिए, ये तो सच है कि भगवान है हम साथ साथ हैं मूवी से। तो ज़रूर उदयपाल जी, आपके एक गाना हम प्ले करते हैं, और भी हमारे पास फरमाइश है, हम बैक टू बैक आज उन्हें प्ले करेंगे जिससे आप अपना उस गाने का आनंद ले सकें, और हाँ ये भी कह सकें कि हाँ जी मेरी तो फरमाइश प्ले हुई है। 9837896896 पर।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।
4: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM।

नमस्ते अखिल जी, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। ये है मैसेज किया है हमें दलजीत कोहली, रीना कोहली, देव कोहली, सरगम कोहली, माधव कोहली, कपूर कंपनी मुरादाबाद से। उन्होंने खूब सारी दी है रक्षाबंधन की, खूब बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और उन्हीं की फरमाइश पे ये गाना प्ले हो रहा है, तो आनंद लीजिए आप दिलजीत जी और इस गाने को सुनिए।

सही कहते हैं ना, ये गाना भी एकदम जो है प्यार के रिश्तों के ऊपर है। और ऐसे ही हमारे लिसनर का मैसेज आया है कि मेरी बहन दूसरे शहर में रहती है, हर राखी पर उसकी बहुत याद आती है, इस बार वीडियो कॉल पर राखी बंधेगी। तो सही कहा आपने, मगर टेक्नोलॉजी ने दूरी ज़रूर हमारी कम कर दी है, लेकिन प्यार की ज़रूरत आज भी उतनी है। एक शायरी उसी के लिए, दूर होकर भी दिल के पास रहते हैं, कुछ रिश्ते ज़िंदगी भर खास रहते हैं, राखी का धागा भले हाथ में हो, भाई बहन हमेशा दिल में साथ रहते हैं। तो सर इसी के साथ हम लेंगे विदाई। और कहते हैं ना, आज हमने शो में खूब सारी मैसेजेस की बात, खूब सारी फरमाइशें पूरी करी, मगर एक रिमाइंडर भी है कि ज़िंदगी में कितने भी बिजी हो जाएं, कुछ रिश्तों के लिए समय ज़रूर निकालने चाहिए। चलने से पहले इन्हीं रिश्तों के ऊपर एक शायरी और, ना महंगे गिफ्ट की ज़रूरत है, ना बड़े बड़े वादों की बात है, भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा है जहाँ छोटी सी लड़ाई में भी प्यार की शुरुआत है। तो आज अपने भाई को कॉल कीजिए, अपनी बहन को मैसेज कीजिए, और अगर बहुत दिनों से बात नहीं हुई है तो बस इतना कह दीजिए, तू परेशान बहुत करता है लेकिन तू ही मेरी दुनिया थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत कर देता है। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप आज सुन रहे थे दिल से दिल तक अखिल संग। राखी स्पेशल रहा है आज हमारे साथ, सब कुछ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखिए। और साहब कल जब पतंग उड़ाए ना तो बहुत ध्यान से, छत गीली हो तो माला गीला मत होने दीजिएगा, उंगली बिल्कुल मत कटने दीजिएगा, भले ही सामने वाली चार पतंगे एक्स्ट्रा कट जाएं, मगर ध्यान से रख के बहुत ही बढ़िया करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाइएगा। और मिलते हैं कल अगले शो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आपका अपना ख्याल।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मथुरा में कन्हैया जी का दिव्य महाअभिषेक, बांके बिहारी मंदिर की विश्व प्रसिद्ध मंगला आरती और द्वारकाधीश इस्कॉन तथा प्रेम मंदिर की अलौकिक झांकियां देखने देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु खींचे चले आते हैं।
3: ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पौराणिक कुंडों के जीर्णोद्धार, परिक्रमा पथ के चौड़ीकरण और यमुना घाटों के सौंदर्यकरण से लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा को नई पहचान दी है।
2: तो आप भी इस जन्माष्टमी 4 सितंबर को ब्रज तीर्थ आइए और कृष्ण भक्ति में रम जाइए।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं।
1: मैं 15-20 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। सब 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान है मैं उनको समझाऊंगा बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें। फसल बीमा।

0: शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशाह जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर नैनीताल में, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद प्राइवेट पूल, जकूजी रूम्स, ग्रैंड बैंक्वेट विद 120 प्लस रूम्स, स्पा एंड मच मोर।
1: बुक नाउ 9258253081 एंड फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप 9258253081।

पूरे परिवार की सेहत की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि जिज्ञासा हॉस्पिटल लेकर आया है खास हेल्थ कार्ड। सिर्फ 999 सालाना में पाए 14 डॉक्टरों के पैनल पर 28 निशुल्क परामर्श, जांच पर 15% की छूट और अस्पताल में भर्ती होने पर 30% की छूट। आज ही हेल्थ कार्ड खरीदें और अपने पूरे परिवार की सेहत का ख्याल रखें। संपर्क करें इंसिग्निया मार्केटिंग सॉल्यूशन, कॉल 7302444629। विजिट करें जिज्ञासा हॉस्पिटल, रामपुर रोड, मुरादाबाद।

शादी के लिए ढूंढ रहे हैं एक ऐसी जगह जहां हो नेचर का थ्रिल और लग्जरी का चिल, तो स्वागत है देवशांत जंगल रिसोर्ट एंड स्पा जिम कॉर्बेट रामनगर, जहां बनती है ड्रीमी वेडिंग्स विद